मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किए जाएंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट

वंदना कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं कविता पौडवाल की गाई ये भक्ति रचना।

कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना हमने ली है अनूप जलोटा की आवाज में, आइए सुने।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना हमने ली है विपिन सचदेवा की आवाज़ में।

0: अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज का चिंतन सुनिए प्रेम सिंह गोदारा से, विषय है अडोल मन।
1: मन को अडोल करने के लिए लंबे समय से अनेक आलंबनों का सहारा लिया जाता रहा है, जैसे किसी मूर्ति का ध्यान करके, किसी मंत्र या नाम को जप करके, किसी रंग रूप आकृति का ध्यान करके, ऐ जपा जाप, खेचरी मुद्रा, अनहदनाद, ज्योतिर्मय स्वरूप विधियों का ध्यान करके। लेकिन अपनी सांस, अपने मन को शुद्ध रूप में अडोल करने का सबसे अच्छा आलंबन है, क्योंकि सांस क्षण प्रतिक्षण हमारे साथ है। मन को अडोल करने के लिए वर्तमान में रहना बहुत ही जरूरी है, और सांस से ज्यादा वर्तमान और कुछ नहीं है। हमारा सांस हमें बाहर से भीतर अपने मन की तलसपरसी गहराइयों तक ले जाने के लिए एक पुल का काम करता है। सांस का हमारे शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब भी कोई अच्छी बुरी मनचाही अनचाही बात होती है तो सांस अपनी स्वाभाविक गति खो देता है, थोड़ा तेज या धीमा सा हो जाता है। लेकिन अपने मन को जो क्षण प्रतिक्षण या तो भूतकाल में जीना चाहता है या भविष्य काल में जीना चाहता है, उसे अपने सांस के सहारे हमें किस प्रकार वर्तमान में स्थित करना है, इसके लिए प्रतिदिन सूर्योदय से आधा घंटा पहले से लेकर के सूर्योदय से आधा घंटा बाद तक, यानी एक घंटे रोजाना एक ही स्थान पर अपने शरीर को जरा सा भी हिलाए डुलाए बिना कमर को सीधा रखें, गर्दन व चेहरे को शून्य मुद्रा यानी रिलैक्स रखते हुए बैठे रहें। किसी भी अंग में तनाव या खिंचाव न रखें। इन सभी बातों को जांचने के बाद अपना सारा का सारा ध्यान अपनी सांस के आवागमन पर लगाए रखें। जैसे ही सांस अंदर जाए तो यह साफ साफ मालूम पड़ता रहे कि इस क्षण की यही सच्चाई है कि मेरी सांस भीतर जा रही है। अंदर जाती जाती सांस थोड़ी धीमी होकर के क्षण भर के लिए भीतर रुकेगी, और जब सांस भीतर रुकी हुई हो तो हमें पूरा बोध होना चाहिए कि इस समय मेरी सांस भीतर रुकी हुई है। इसी प्रकार जैसे सांस बाहर की तरफ आने लगे तो इसकी भी हमें क्षण प्रतिक्षण जानकारी बनी रहनी चाहिए। भीतर की तरह बाहर भी सांस क्षण भर के लिए रुकेगी। जब सांस बाहर रुकी हुई हो तो भीतर की तरह बाहर भी सांस क्षण भर के लिए रुक

0: जब सांस बाहर रुकी हुई हो तो हमें स्पष्ट ज्ञान हो कि सांस बाहर के मोड़ पर रुकी हुई है। भीतर बाहर सांस के दोनों मोड़ पर बड़ी सूक्ष्मता के साथ ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार अपने ही सांस की क्षण प्रतिक्षण पहरेदारी होती रहे, प्रत्येक सांस की साफ साफ एवं लगातार जानकारी बनी रहे। इस तरह के अभ्यास से हमारा मन तीक्ष्ण होता जाएगा, एकाग्र होता जाएगा। हमें जानबूझ करके अपने मन में कोई विचार नहीं लाना है। अगर अपने आप कोई विचार आ जाए तो उसका साथ नहीं देना है। हमें अपना ध्यान सांस के आवागमन पर ही लगाए रखना है। यह मन जंगली है, इसे पालतू बनाना है, अपने वश में करना है तो हमें बड़े ही धीरज का परिचय देना होगा। जरा सा भी उतावलापन नहीं आने पाए। यहां पर एक बात बड़े ही ध्यान देने की है, यह कामना करना कि मेरा मन टिक जाए, इधर उधर ना भटके, ऐसी कामना ही अपने आप में बहुत बड़ी बाधा है। गीता में लिखा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अर्थात अपना सारा का सारा ध्यान काम करने के ढंग पर लगाए रखें, परिणाम कुदरत और प्रकृति पर छोड़ दें। ध्यान में सहजता हो, इच्छा है वो बाधा है। जैसे कोई आदमी किसी का नाम भूल जाए, कोशिश करने पर भी नहीं आता, उसे छोड़ दे तो वह नाम अपने आप याद आ जाता है। जो क्षण बीत गया वो दुनिया की सारी संपदा दे करके भी हम वापस नहीं पा सकते, और जो क्षण आने वाला है, जो कैसा होगा हमें जिसका पता नहीं है, वो जब तक वर्तमान नहीं बन जाता, हम उसमें कैसे जिएंगे? जीना तो हमें वर्तमान में है, लेकिन हम एक ऐसा मन लिए हुए चल रहे हैं जो क्षण प्रतिक्षण या तो भूतकाल में जीना चाहता है या फिर भविष्यकाल में जीना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जीवन जीना नहीं आया, हमें जीवन जीने की कला नहीं आई। साधना ध्यान हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है, हमें अपने मन का मालिक भी बनाता है, सही अर्थों में गुलामी से मुक्ति दिलाता है। दुनिया में सब कुछ पा लेने का भी कोई सार नहीं, यदि स्वयं को नहीं पाया, स्वयं के मालिक नहीं बने।
1: अभी आपने चिंतन सुना प्रेम सिंह गोदारा से। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। खेतिया रवास्ते कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा, पशुओं के लिए संतुलित आहार। खेत खलिहान में दोपहर 12:50 पर किसान भाई जानकारी सुनेंगे, भिंडी की फसल में सामयिक कार्य। चौपाल में संध्या 7:30 पर जानकारी के विषय रहेंगे, फसलों में जैव उर्वरकों का महत्व, दुधारू पशुओं का परजीवी कीटों से बचाव, बाजार भाव में मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी, गीत भी सुनवाए जाएंगे। लोक भजन का समय रहेगा 7:15, मरुमंगल में 9:00।

0: बजकर 10 मिनट पर 10 मिनट पर कलाकार होंगे बैरागनाथ। गौरबंद कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर। मानस गान आप सुना करते हैं प्रातः 7:20 पर। भाग संख्या होगी 325। सुप्रभात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:30 पर। भजन आप सुन सकते हैं 8:45 पर। फिल्म संगीत में युगल गीत आप सुनेंगे 9:30 पर। 10:00 कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा आज के फनकार। दिन में 11:00 कार्यक्रम अनुरोध गीत प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम फेसबुक कमेंट्स पर आधारित होगा। एक ही शीर्षक से कार्यक्रम होगा 12:05 पर। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम सुनवाया जाएगा फिल्म संगीत। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर। घरांगन कार्यक्रम महिलाएं सुनेंगी दिन में 1:05 पर। युवा साथी युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे 5:00। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6:55 हो रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। लोकसभया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयकं पारितम्। अनेन विधेयकेन भारतस्य प्रधान न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 इत्यतः 37 पर्यन्तं वर्धिष्यते। अस्य वर्षस्य मई मासे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुहु अस्मिन् विषये अध्यादेशं प्रसारितवती आसीत्। केन्द्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः एतत् संशोधन विधेयकं लोकसभायां प्रस्तुतवान्। असौ अवदत् यत् एतत् न्यायव्यवस्थायां प्रवर्तमान परिष्कार प्रक्रिया दिशि महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। विपक्षदलानां विरोध कारणात् लोकसभायाः कार्यम् अशेषे अपि दिने बहुवारं स्थगितं जातम्। कार्यारम्भानन्तरं लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 23 राष्ट्रमण्डल क्रीडासु उत्कृष्ट प्रदर्शनं कृतवतां क्रीडकानाम् अभिनन्दनम् अकरोत्। तदनन्तरं प्रश्नकालस्य आरम्भे विपक्षसदस्यैः छात्रान्दोलनेषु कथितस्य आरक्षकबलप्रयोगस्य विषयः उत्थापितः। अस्मिन्नेव समये सांख्यिकी कार्य क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंहः भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयकं प्रस्तुतवान्। तथा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस इत्येतत् विधेयकं प्रस्तुतवती। विधानसभायाः उपनिर्वाचनेषु जनसुराज दलस्य नेता प्रशांत किशोरः बिहार राज्यस्य बांकीपुर आसने विजयं प्राप्तवान्। तत्रैव गुजरात राज्यस्य मंजलपुर आसने भाजपा दलेन स्वस्थानं पुनः प्राप्तं। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस दलेन विजयं अवाप्तम्। बिहारे प्रशांत किशोरः भाजपा दलस्य प्रत्याशिनं नीरज कुमारं 24,300,000 मतैः पराजितवान्। असौ 1,50,164,000 मतानि प्राप्तवान्। गुजराते भाजपा दलस्य प्रत्याशी सतीश पटेलः कांग्रेस दलस्य भीका भाई रबारी इत्येनं 30,000 मतैः पराजितवान्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी घनश्याम सिंहः भाजपा दलस्य आशुतोष तिवारी इत्येनं 6,000 मतैः पराजित्य पुनरपि विजयं प्राप्तवान्। एतेभ्यः त्रयेभ्यः विधानसभासनेभ्यः मतदानं विगतमासस्य 30 एव सम्पन्नमासीत्। तेलंगानायाः हैदराबादस्थले अद्य ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयोपवेशनं प्रारप्स्यते। अस्य

0: दिवसीयोपवेशनस्य आयोजनं स्थैर्याय नवोन्मेषाय सहयोगाय निरन्तरतायै च निर्माणम् इति विषयमाधारीकृत्य क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः वरिष्ठनीति निर्मातारः व्यावहारिक विशेषज्ञाः सहैव भ्रष्टाचार विरोधि विधि प्रवर्तन अभिकरणानां प्रतिनिधयः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति इति सम्भाव्यते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः नवदिल्ल्याम् उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमन्त्रिणा बख्तियार सैदोव इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। उभाभ्यां मन्त्रिभ्यां भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सहभागितायाः विस्तृत समीक्षा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अवदत् यत् भारतीय क्रीडकैः ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 26,000 राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थस्थाने स्थापयित्वा गौरवपूर्णम् इतिहासं विरचितम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस ली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का महत्वपूर्ण अंग बताया। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्यसमूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मोज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को

लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्य ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमरीका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क ये आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 128,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिलों चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाहाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर में 380 गांव जलमग्न हैं। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा

रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले तीन से चार दिन तक तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: governors and representatives of anti-corruption and law enforcement agencies. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। खेती आवासीय कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय है पशुओं के लिए संतुलित आहार।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आपनों जी को जीवन है वो आपने पशुधन गए इर्द गिर्द घूमते रहे। दूध होगी, दही होगी, राबड़ी होगी, छाछ होगी, ऐ सब को जिको मुख्य स्रोत है वो अपनो पशुधन ही तो है। तो अपने भी पशुधन ने स्वस्थ राखण खातर, अच्छो बिंगो दूध को उत्पादन बनाए राखण खातर आपा भी ने के हिसाब संतुलित आहार देश का आज आपा ई बात पे चर्चा करांगा। पशुओं को जिको स्वास्थ्य है और उत्पादन है वो मुख्य आपा जिको भी बिना आहार देवा बिंगी मात्रा पर और बिंगी गुणवत्ता पर निर्भर करें। बैलों का दूध उत्पादन पे कुल लागत को लगभग 70% खर्चो आवे। इन खातर दूध उत्पादन को जिको भी लाभ है या हानि है वह अपने पशुधन ने जिकी भी आपा खुराक खुआ बैंग ऊपर निर्भर करें। कई किसान भाई अपना हिस्सा है जिका पशुओं ने आमतौर पर एक ही तरीका को चारो देवे ज्यों के वह अपना जिका पशुधन ने संतुलित आहार मिल को नहीं पावे और जिको अपनो पशु है बिंगो स्वास्थ्य तो खराब हो वह सागे सागे बिंगो दूध को उत्पादन है वो भी गिर जाए। किसान भाइयों आपा देखन भी लाग रहे हैं आजकल की शहरीकरण गए और बढ़ती हुई आबादी के कारण जिको अपने चारा के अधीन क्षेत्रफल है बाजिकियां भी धीरे धीरे घटने लाग रही है। तो इन वास्ते आज अपने वास्ते आज चीज बहुत जरूरी है कि आपा अपने पशुओं ने संतुलित आहार जरूर देवा। संतुलित आहार में भाई लोग आपा बात करें तो इसो आहार है जो अपना जिका पशु के शरीर है, पशु का जिका भी शरीर का काम धंधा है, जिका देखा अपना जीवन निर्वाह हो गया, दूध उत्पादन हो गया या और भी जिकी जरूरी आवश्यकता है बैंग खातर आवश्यक पोषक तत्व हो गया जिया कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा, खनिज और विटामिन आदि जिका है वह उचित मात्रा में बिना पूरा करें वो आपा संतुलित आहार कह देवाए। नहीं एक हुआ भाई लोगों का जीवन निर्वाह खातर जिको आहार हुआ है वो आहार हुआ है जिका कि अपने नाम ही समझ मान लाग रहे है कि भाई सिर्फ बिना चालन फिरन खातर और जीवन खातर जिको आप आहार देवा वो जीवन निर्वाह आहार हो जाए। उत्पादन आहार वो है भाई लोगों का जिका कि बिंग दूध उत्पादन बढ़ाने खातर या और भी आपा की भी प्रकार को अगर आपा कोई पशु उत्पादन ले लाग रहे हैं तो बिना बढ़ाने खातर अलग आपा दे देवा जिको वो उत्पादन आहार हो गयो। एक भाई लोगों कह दे आपा प्रजनन आहार जब अपनो पशु है जिको वो ब्याह नाल होवे तो भी टाइम पे बिना जिको अलग आहार दियो जावे वो प्रजनन आहार आपा बिना कह दे। अब भाई लोगों कुछ आपा आवश्यक पोषक तत्व है बंग ऊपर जब आपा बात करा तो जिमें सबों पहले आपा देखा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भाई लोगों मुख्य है तो आपा देखा तो अनाज में और जिको चारो है भी में ही आपा ने मिले हैं। इन मुख्य काम के हुए जिको अपने पशुओं ने वो ऊर्जा प्रदान करे और सागे सागे जिको प्रोटीन और वसा है भी ने भी पचान में मदद करे। वसा ने देखा भाई लोगों आपा तो वसा के अपने जिको पशुओं में ऊर्जा प्रदान करने खातर सारू जरूरी है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ढाई गुना ज्यादा ऊर्जा पशुओं ने वसा दे देवे। प्रोटीन पे भाई लोगों आप बात करें तो अपने जिकी पशुधन की कोशिका है बिना बनाने खातर प्रोटीन को मुख्य योगदान है। प्रोटीन की बात करें तो अपने दाला में बंग छिलका में दाल वाली जिकी फसल है बंग चारो तेल वाली जिकी फसल है बंगी खड़ी में पायो जाए। दूध उत्पादन बढ़ाने खातर और बीमारियों बचाने खातर प्रोटीन भी बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज और लवणों के ऊपर जब आप बात करें तो अपने पशुओं ने मुख्य रूप 15 खनिज तत्वों की जरूरत होवे। इमुक्की तो यह है जिका आपा ने ज्यादा मात्रा में पशु ने देना हुआ है जिन्हें आपा मुख्य खनिज लवण भी कह देवा जिया कैल्शियम हो गयो, पोटेशियम हो गयो, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर और कई ऐसा खनिज तत्व है जिका आपा थोड़ी मात्रा में बाना दे देवा तो बाना आपा गौण खनिज लवण भी कह देवा जिया आयरन हो गयो, कॉपर हो गयो, मैग्नीज हो गयो, जिंक हो गयो, कोबाल्ट हो गयो, आयोडीन हो गयो और सिलिकन। खनिज तत्व जिका हुआ है वह अपने पशु के शरीर खातर बहुत ही जरूरी हुआ है। पशुओं की हड्डी और दांत है जिका वह खनिज तत्वों में बनेडा हुआ है और जिकी खून की कोशिका हुआ है बा में आंगो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। जिका खनिज तत्व हुआ है वह अपने पशु की दूध की मात्रा के सागे सागे बिंग दूध की गुणवत्ता ने भी बढ़ावे। अब भाई लोग अपने पशुओं ने जितना पोषक तत्व की जरूरत हुआ है ज्यादा महत्वपूर्ण आप बात करें तो पानी की जरूरत हुआ है। यदि अपने पशु के शरीर में वसा 10% कम हो जाए और प्रोटीन 50% टाइम भी कम हो जाए तो भी आपने पशु है जिको वो जिंदा रह सके। लेकिन अगर आपने पशु के शरीर में पानी है जिको वो 10% भी

0: कम हो जाए तो आपना जी को पशु है बिंगी मौत हो सके। पशुआ ने जी की पानी की जरूरत हो बाबा के शरीर के हिसाब हूँ और जी हिसाब को वो चारों खान लाग रहे हैं जितो बिंगो दूध उत्पादन है और के हिसाब को मौसम है बैंग ऊपर निर्भर करें। पशु की जी की आम आवश्यकता हो बिंग अलावा 1 किलो दूध उत्पादन खातर गाय या भैंस ने 4-5 किलो पानी रोज की जरूरत हो। पानी है जी को वो शरीर में कई काम करे हैं जी। शरीर की कोशिका है बाने मजबूत बनावे है बामे लचीलोपन लेगा वे सागे सागे जितनी भी रासायनिक क्रिया है बा सारी पानी के सागे ही हुए हैं। अब आप बात करा कि आपनों जी को पशु आहार है तो बिंग के विशेषता होनी चाहिए जी को आप अपने पशु ने देन लाग रहे हैं तो सब जरूरी बात तो इनमें हर तरीका का पोषक तत्व है वह उचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। इनके सागे सागे जी को भोजन है वो पाचक होने के सागे सागे जी को पौष्टिक भी होना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों ऐसी सारी बातों को आप सगड़ा ने ध्यान रखना है पर अब तो टाइम ही तो यह आज्ञा दियो। राम राम सा राम राम।
1: खेती रावस्ते कार्यक्रम में अभी किसान भाई जानकारी सुन रहे थे पशुओं के लिए संतुलित आहार विषय पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।
2: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोक भजन। कलाकार हैं भगत सही राम।

अभी आप लोग भजन सुन रहे थे, कलाकार थे भगत सही राम। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या है 325।

आधी रात बीत चुकी है। शक्तिबाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। संजीवनी लेकर हनुमान अभी तक नहीं आए। लक्ष्मण को हृदय से लगाकर श्री राम विलाप कर रहे हैं, हे भाई, तुम तो कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। मेरे लिए तुमने माता पिता तक को छोड़ दिया। वन वन भटकते हुए शीत, घाम, वर्षा, आंधी सभी कष्ट सहे। अब तुम्हारे उस प्रेम को क्या हो गया? तुम उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि एक दिन मुझे मेरे प्रिय भाई का वियोग सहना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचन की मर्यादा को भी भुला देता। पुत्र, स्त्री, धन, घर परिवार, इस जगत में सब कुछ मिल जाते हैं, नहीं मिलता तो वो है सहोदर भाई। स्त्री के लिए ऐसे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा? मुझे परम हितकारी जानकर माता ने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को मेरे हाथों में सौंपा था। अब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? श्री राम के कमल सरीखे नैनों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ तो अद्वितीय और वियोग रहित हैं, किंतु अपने प्रिय भाई के लिए विलाप करते हुए मनुष्यों की दशा दिखा रहे हैं। ये भी उनकी एक लीला है। तभी वहां संजीवनी लेकर हनुमान आ पहुंचते हैं। उधर अनेक उपाय करके अपने भाई कुंभकर्ण को जगाकर रावण उसे सारी कथा सुना रहा है।

अभी आप मानस गान सुन रहे थे, भाग संख्या थी 325। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी की संरक्षण की बात कही गई है। संसार के प्रत्येक जीव का अपना महत्व है, प्रत्येक जीव प्रकृति के संचालन में सहायक होता है। मनुष्य संसार का बुद्धिमान प्राणी है, मनुष्य का ही दायित्व है कि वह जीवों का संरक्षण करे और उन पर दया करे। प्रत्येक जीव को इस धरती पर जीने का अधिकार है, मनुष्य का जीवों के प्रति सहयोगात्मक रुख होना चाहिए, ये हमारी प्रकृति के संचालन के लिए भी जरूरी है। बहुत से लोग अपने मनोरंजन के लिए किसी जीव को बंधक बनाते हैं। जीव को अपनी आज़ादी से कहीं भी घूमने के लिए या आसमान में उड़ने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें उन्हें अनावश्यक रूप से बंधक नहीं बनाना चाहिए। बहुत से जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। हमें चाहिए कि उनकी हर तरह से मदद करें, रक्षा करें और उन पर दया करें, उनका इलाज करवाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। कुछ ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से जीवों को परेशान करते हैं, यातनाएं भी देते हैं, उन्हें ऐसा न करके जीवों पर दया करनी चाहिए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, सहकार भावना से क्षमता, भ्रातृत्व भावना, आत्मविश्वास, व्यवस्था कौशल आदि व्यवहारिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है, जो समाज और राष्ट्र की समृद्धि के लिए आवश्यक है। भारतीय दर्शन के मूल में सहकारिता की भावना है। समाज में आपसी सहयोग सेवा भाव से ही विकसित होगा और समाज आगे बढ़ेगा। जीवन में सहयोग की भावना का होना नितांत आवश्यक है। यह एक मानवीय गुण है जो हमें संगठन, सहबंधुत्व और अनुशासन के माध्यम से समाज में सौहार्द की भावना को विकसित करता है। सहयोग की भावना हमें अन्य लोगों के साथ मिलकर मिश्रित समुदाय का निर्माण करने की क्षमता प्रदान करती है। इससे समुदाय के सदस्यों के बीच विश्वसनीयता बढ़ती है और सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती है। इसके अतिरिक्त यह हमें सामान्य समस्याओं को संगठित तरीके से समाधान करने के लिए सक्षम बनाती है। इससे समस्याओं का समाधान भी निकलता है। इस प्रकार सहयोग भावना हमें समग्र विकास की ओर ले जाती है।

दोस्तों, आत्मसम्मान हमारे आत्मा का महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य और योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते रहते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में ये मूल्य निर्णय ही आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान स्वयं का सम्मान है। जिस तरह हम दूसरों का सम्मान करते हैं, उसी तरह अगर हम स्वयं का सम्मान करते हैं, उसे आत्मसम्मान कहा जाता है। दोस्तों, आत्मसम्मान हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी है। आत्मसम्मान हमें खुद और दूसरों से प्यार करना सिखाता है। इसका अर्थ है कि हम मूल्यवान, हम सक्षम।

0: हम हैं, न केवल इसे जानते हैं बल्कि मानते भी हैं और उस विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं। आत्मसम्मान एक सुखी सफल जीवन का आधारभूत तत्व है। व्यक्ति आत्मसम्मान के अभाव में सफल हो सकता है किंतु वह अंदर से सुखी संतुष्ट होगा यह संभव नहीं है। आत्मसम्मान के बिना जीवन में एक रिक्तता महसूस होती है। ये रिक्तता कमी का एहसास देती है। आत्मसम्मान से परिपूर्ण व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने में मुखर होता है, निर्णय लेने की क्षमता में विश्वास रखता है और यथार्थ की सोच से परिपूर्ण होता है।
1: एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं वारिस फिल्म का नगमा, सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

सुप्रभात कार्यक्रम के आखिर में सुनिए चुपके चुपके फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
4: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के ये नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
3: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
5: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा

0: ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहां के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियां और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय असैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
5: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत

0: और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में हैं। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमी परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, डिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वीर शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारून मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजर अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामानी कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और सीईओ मार्क जगरबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी की हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग आज सुबह नई दिल्ली में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती सरकारें हालिया एहतजाज में शामिल तलबा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुजाकरात की इत्तलात को गलत बताया है। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। अब खबरें तफसील से। मुआसलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो आर्जी तौर पर हटाए जाने के मामले पर नई दिल्ली में मेटा के उहदेदारों से बात की। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और कमेटी के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने वजीर आजम की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा इंडिया की नुक्ताचीनी की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब दुबे ने कहा कि कमेटी ने इस हरकत के लिए मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से मुआफी का मुतालबा किया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दफा 79 के तहत उन्हें हासिल कानूनी तहफ्फुज वापस लिया जाना चाहिए।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों सेफ हार्बर हटाने की बात करनी।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सलाहियतें मुसलसल मेहनत, लगन और मुस्तकिल कोशिश के जरिए निखरती और परवान चढ़ती हैं। एक संस्कृत श्लोक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज मुल्क के नौजवान इन्हीं औसाफ को अपना रहे हैं और अपनी सलाहियतों के जरिए दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है, जिसे मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। गुज़श्ता मीटिंग 28 जुलाई को हुई थी। तृणमूल कांग्रेस से इलाहदा होने वाले ग्रुप नई तश्कील दी गई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के अरकान पार्लियामेंट में एनडीए की इस मीटिंग में शिरकत की थी। ब्रिक्स मुल्कों के बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप और असासों की बाजियाबी से मुतालिक ब्रिक्स के माहिरीन के नेटवर्क की दूसरी मीटिंग आज तेलंगाना में हैदराबाद में शुरू हो रही है। अमले और तरबियत महकमे के सेक्रेटरी रचना शाह इस मीटिंग का इफ्तिताह करेंगी। जून में वर्चुअल वसीले से मुनाकिदा ब्रिक्स की बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग के नतीजों के तनाजुर में आगे इकदाम करने के लिए आज की ये मीटिंग हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इस दो रोज़ा मीटिंग का अहतमाम भारत की ब्रिक्स की सदारत के खास मौजू मजबूती इख्तरा इश्तराक और पायदार निज़ाम के लिए तामीर के ऐन मुताबिक किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसमें ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों के नुमाइंदों के साथ साथ आला पॉलिसी साज अहलकार माहरीन नीज बदउनवानी की रोकथाम और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स के मेंबर मुल्क असासों की बाजियाबी बदउनवानी से निमटने और हुक्मरानी के अमल में शफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाने की खातिर बैनुल अक्वामी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: सुप्रीम कोर्ट ने वाजह किया है कि दिल्ली सरकार और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर और मुल्क के दीगर मकामात पर मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज की गई

0: FIR को वापस लेने या बंद करने के लिए आजाद हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली तीन रुकनी बेंच ने वजाहत की है कि 28 जुलाई के हुक्मनामे जिसमें मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत दी गई थी का इतलाक सिर्फ उन अफराद पर होगा जिन पर संगीन और घिनौने जराइम के इल्जाम हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अदालत ऐसे हालात और तरीक़ेकार के लिए एक जाब्ता मुरतब करेगी जिसके तहत पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सके। बेंच ने मजीद कहा है कि वह पुलिस की मुबैना ज्यादतियों की तहकीकात के लिए पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक खसूसी जांच टीम SIT तश्कील देने या मुतबादिल के तौर पर एक रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकती कमेटी कायम करने की तजवीज़ पर गौर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की मजीद समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट की वजारत ने मोटर गाड़ियों से मुतालिक मरकजी जवाबित 1979 में तरमीम के लिए एक मुसविदा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें हंगामी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए दो पहियों वाली रोड एम्बुलेंस मुतारिफ कराने की तजवीज़ पेश की गई है। वजारत ने कहा है कि इस मुजवजा हंगामी एम्बुलेंस सर्विस से एमरजेंसी की सूरत में फौरी रसाई मुमकिन होगी और दूर दराज इलाकों में तिब्बी इमदाद की फराहमी को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा। खुराक से मुतालिक इंजिबाती इदारे FSSAI ने डाबर इंडिया को 100% दावे का इस्तेमाल करते हुए शहद, गाय का घी और खुर्दनी तेल जैसी कई अशिया फरोख्त करने से रोक दिया है और कहा है कि इस तरह का लेवल लगाना कानून के खिलाफ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI ने बताया कि उसने 100% का गुमराह कुंदावा करने वाली गजाई अशिया की फरोख्त के मामले पर डाबर इंडिया लिमिटेड को ममानियत से मुतालिक हुक्म जारी किया है। इन अशिया में शहद, सेब का सिरका, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, नारियल पानी, कोकोनट मिल्क और इस तरह की दीगर अशिया शामिल हैं। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने अरुणाचल प्रदेश की गलोज झील को भारत का 101वां रामसर मकाम करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब यादव ने इस पेश रफ्त को हयातियाती तनवु के तहफ़ आबी वसाइल और मौसमियाती तहफ़ नीज पायदार जरिए माश के फरोग की जानिब एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि मशरकी हिमालय में वाकई ये साफ शफाफ मीठे पानी की झील हयातियाती तनवु का एक अहम मरकज है और ये कमलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वाकई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और उज़्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत के दौरान अहम मादनियात, कानकनी, तिजारत, तवानाई, बुनियादी ढांचे, दिफा और तालीम के शोबों में तआवुन को मजीद मजबूत बनाकर अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद उसत देने पर इत्तेफाक किया। ये बातचीत उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदूव के भारत के 4 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान हुई जिन्होंने वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात की। उज़्बेकिस्तान के वफद का खैर मकदम करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उज़्बेकिस्तान भारत के वसी हमसाया खित्ते का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान तवील अरसे से कायम तारीखी, सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात को उजागर करते हुए कहा कि पिछले बरसों में बाहमी ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हुए हैं और अब इनका दायरा तामीरात, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तवानाई, सेहत और तालीम समेत मुतअद्दी शोबों तक फैल चुका है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक अब कानकनी के शोबे बिलखसूस अहम मादनियात और नायाब ज़मीनी मादनियात में बाहमी तआवुन को मजीद वसअत देने के ख्वाह हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन $1 अरब की दो तरफा तजारत का जिक्र करते हुए उन्होंने यकीन जाहिर किया कि आने वाले बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान इकतसादी तबादले में नुमाया इजाफा होगा। डॉक्टर जयशंकर ने 2026 में भारत की ब्रिक्स सदारत के दौरान भारत के इकदामात की हिमायत पर उज़्बेकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने 2027 से 2029 की मुद्दत के लिए गैर वाबस्ता तहरीक की सरबराही के लिए उज़्बेकिस्तान की उम्मीदवारी की हिमायत का भी इजहार किया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आज और कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसकी वजह से आसाम के कई ज़िले, खासतौर पर वो इलाके जो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से मुत्तसिल हैं, मुतासिर हो सकते हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मौसमियात के महकमे के मुताबिक शदीद बारिश से आसाम के कछार, दीमा हसाव, मगरबी कर्बी ओंगलांग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया ज़िले मुतासिर हो सकते हैं। IMD ने

0: बताया है। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए, भजन कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल।

0: सूरतगढ़ है, प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कराने वाला विधेयक पारित। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 16 अगस्त तक ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया और प्रदेश भर में 11,500 शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से 53,000 से अधिक पट्टे जारी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। इससे पहले कल लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हुआ। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
2: विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा में भी कल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक 2006 के अधिनियम में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान करेगा, साथ ही विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में 3 न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। पीठ ने कहा कि वो पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। राज्य में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ईकेवाईसी का काम तेजी से किया जा रहा है। तेल समन्वयक मनोज गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में 1,85,00,000 सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं में से करीब 38,00,000 की ईकेवाईसी अभी लंबित है। इनमें इंडेन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के उपभोक्ता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ईकेवाईसी करवाने की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। इसी मद्देनजर तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से जल्द ईकेवाईसी करवाने की अपील की है। श्री गुप्ता ने बताया कि रोजाना लगभग 20,000 उपभोक्ता ईकेवाईसी करा रहे हैं। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जयपुर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश देते हुए उन्होंने अतिक्रमणकारियों को 15 दिन के भीतर कब्जा हटाने का नोटिस दिए जाने को कहा। साथ ही तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर FIR दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। श्री दिलावर ने घुमंतू परिवारों को उचित पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना नहीं हटाने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur

यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन युवाओं पर विदेश में नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम भेजने तथा वहां साइबर ठगी कराने के लिए मजबूर करने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि विदेश पहुंचने पर युवाओं के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे और उनसे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश और क्रिप्टो ठगी जैसे साइबर अपराध कराए जाते थे। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली सूचना के आधार पर की गई जांच में राजस्थान के 500 से अधिक लोगों के ऐसे नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिली है। आरोपियों के पास से पासपोर्ट, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से विदेश में नौकरी के नाम पर मिलने वाले प्रस्तावों की पूरी जाँच पड़ताल करने की अपील की है। प्रदेश भर में आयोजित शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न नागरिक सेवाएं और

0: ऐसे नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिली है। आरोपियों के पास से पासपोर्ट, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से विदेश में नौकरी के नाम पर मिलने वाले प्रस्तावों की पूरी जांच पड़ताल करने की अपील की है। प्रदेश भर में आयोजित शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न नागरिक सेवाएं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया। 12 जून से 30 जुलाई तक राज्य में विभिन्न स्थानों पर लगभग 11,500 शहरी सेवा शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में 53,000 से ज्यादा पट्टे जारी किए गए, वहीं 18,000 से अधिक नाम हस्तांतरण और 8,644 भवन मानचित्र प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा 1,32,000 से अधिक जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण किए गए। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के करीब 21,000 ऋण आवेदन प्राप्त हुए। पाली जिले में आओ गांव चले अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में 10,000 विद्यार्थियों के लिए स्टडी टेबल उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने कहा कि विद्यार्थियों की अच्छी हैंडराइटिंग उनके व्यक्तित्व विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होती है, इसी उद्देश्य से स्टडी टेबल उपलब्ध कराई जा रही है।
1: देखिए, आओ गांव चले अभियान जो चल रहा है उसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है। उसमें प्रमुख एक्टिविटी है कि प्रोजेक्ट सुलेख के तहत बच्चों को पूरे ज़िले में लगभग 20,000 बच्चों को लाभान्वित इससे अभी तक किया जा चुका है, और पूरे ज़िले में हम इस तरह की 10,000 स्टडी बेंच देने का टारगेट है, जिसमें से लगभग 5,000 बेंचें अभी तक की जा चुकी हैं। बाकी 5,000 के लिए भी बातचीत चल रही है। ये विभिन्न स्कूलों में जाएंगी और बच्चों की हैंडराइटिंग, उनका व्यक्तित्व का प्रमुख एस्पेक्ट होता है, उसको सुधारने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है।
0: प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है। पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में अच्छी बरसात से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। ये बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभदायक मानी जा रही है। राजधानी जयपुर में बादल छाए हुए हैं। अलवर शहर और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह तेज बरसात हुई। भरतपुर में गरज के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव हो गया। बारा में देर रात अच्छी बरसात हुई। भीलवाड़ा और जैसलमेर में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। वहीं दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात की गतिविधियों में कमी आ सकती है। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में कैच द रेन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जल शक्ति मंत्रालय के इस अभियान में करौली जिले में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जिला प्रशासन के निर्देशन में जल संसाधन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा पौधरोपण, श्रमदान, जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल संचयन और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित रणगवा तालाब, मामचारी बांध, पांचना बांध तथा जिले के अन्य तालाबों, एनीकटों और जल संरक्षण संरचनाओं के संरक्षण और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान के तहत आमजन को वर्षा की प्रत्येक बूंद को संजोने और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का संदेश दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार कर भविष्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यूरेट पीजी 2026 के ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 8 अगस्त कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अनुरोध को देखते हुए ये निर्णय लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 16 अगस्त तक ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और प्रदेश भर में 11,500 शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से 53,000 से अधिक पट्टे जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं पैरागनाथ।

मरुमंगल कार्यक्रम का प्रसारण कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से किया जा रहा है। हमारे कलाकार हैं बैरागनाथ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में

0: लगभग 2,00,000 रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: संदेश से पहले मुरमंगल कार्यक्रम में आप बैरागनाथ से भजन सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ युगल गीत।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ

अभी आपने मिलन फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दोस्ताना से। आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की हैं। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है।

लीजिए, अब सुनिए होटल फिल्म का गीत, आवाजें मनहर और आशा भोसले की हैं।

ये फिल्म नगमे आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। अब सुनिए ये वादा रहा फिल्म का गीत, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अभी आप कुछ युगल नगमे सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज भारतीय सिनेमा के महान गायक अभिनेता किशोर कुमार की जयंती है। उनका वास्तविक नाम आभास कुमार गांगुली था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। उनके पिता कुंजालाल गांगुली वकील थे, माता गौरी देवी गृहिणी थी। किशोर कुमार चार भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई अशोक कुमार एक प्रसिद्ध अभिनेता थे।

दोस्तों, जब किशोरदा के बड़े भाई अशोक कुमार अभिनेता बने तब किशोर कुमार काफ़ी छोटे थे। बाद में उनके दूसरे भाई ने भी फिल्मों में कदम रखा और अभिनेता बने। किशोर कुमार ने भी संगीत में रुचि दिखाना शुरू किया और महान गायक KL सहगल की नकल करने लगे।

हालांकि किशोर दा ने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी उन्होंने इसे आगे बढ़ाने का निश्चय किया और अपने भाइयों के साथ मुंबई चले आए। उनका सपना एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक बनना था।

घर पर मिलने आए, तब उन्होंने किशोर कुमार को गाते हुए सुना। उन्हें लगा कि केएल सहगल गा रहे हैं, तब पता चला कि किशोर कुमार गा रहे हैं। उन्होंने उनकी सराहना की और उन्हें अपनी आवाज़ को निखारने के साथ खुद की शैली विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। किशोर कुमार ने इस बात को मन में संजो लिया और अपनी विशिष्ट शैली विकसित करने में जुट गए।

दोस्तों, किशोर कुमार ने योडलिंग में महारत हासिल की, जो एक अनूठी शैली थी। हिंदी फिल्म उद्योग में उनकी योडलिंग व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई और किशोर कुमार की पहचान बन गई।

किशोरदा में न केवल दृश्य के अनुसार बल्कि अभिनेता के अनुसार भी अपनी आवाज़ बदलने की क्षमता थी। उन्होंने देवानंद के लिए भावपूर्ण गीत गाए तो राजेश खन्ना के लिए रोमांटिक गीत।

दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं नवीन सिसोदिया।

दोस्तों, बचपन में एक बार रसोई में दौड़ते समय किशोर कुमार का पैर गलती से धारदार औजार पर पड़ गया, जिससे उनका अंगूठा बुरी तरह कट गया और वे दर्द के कारण कई दिनों तक लगातार जोर जोर से रोते रहे। उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि इसी अनचाहे लंबे रियाज यानी घंटों रोने की वजह से उनके गले में सुर अपने आप खुल गए और उनकी भारी आवाज़ में जादू पैदा हो गया।

किशोर कुमार स्वभाव से बेखौफ अलबेले थे। मूड सही हो तो पल भर में गीत रिकॉर्ड कर देते थे, और मूड नहीं तो नहीं गाते थे।

राजेश खन्ना के परिदृश्य से बाहर चले जाने के बाद किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए भी हिट फिल्मी गीत गाए।

दोस्तों, किशोर कुमार ने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की श्रेणी में कुल 8 बार फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और यह एक रिकॉर्ड है। उन्हें 1985 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा के महान गायक किशोर कुमार का 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। किशोर कुमार आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाए गीत अभिनय हमेशा उनकी याद हमें दिलाता रहेगा। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए सफ़र फिल्म का गीत और अपने दोस्त को दे इजाज़त। नमस्कार।

श्रोता अभी आज के फनकार कार्यक्रम में किशोर कुमार की गाए कुछ गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत।

चंद्र माखी जाकी छत्तीसगढ़ से। अगली फरमाइश है प्रेम सिंह वरवाल और साथियों की, बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ से। ये हमारे श्रोता है पब्लिश पवार और साथियों की फरमाइश है। मोहम्मद सईद अब्बासी बुंदेल शहर से फरमाइश आई है और फरमाइश आई है सावरिया रेडीमेड तिलकराज सोनी की। फरमाइश है रामकुमार रिवाड़ की सादुल शहर से और फरमाइश है नरेंद्र सुथार की। ये हमारे श्रोता हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। जाकिर मंसूरी की फरमाइश आई है और इन्हीं के साथ साथी है अभिजीत गवानकर और विनोद वलवारकर, राजू मिगलानी, सज्जन जांगर। ये गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से हैं। उसके साथ ही फरमाइश आई है सिद्धार्थ गोनकंडे की और ये फरमाइश है रविंद्र सिंह छाबड़ा की, कृष्णा दाबही की, गांव टूकिया तहसील सिंधरी से, जगदीश ढूकिया की सूरतगढ़ से और उनके साथ में साथी है सरिता अमना सायना। पुखराज बदकुजर की फरमाइश आई है नोखा राजस्थान से। दिलावर खान की फरमाइश आई है और साथी है मसरूर हसन। गांव कुम्हारखेड़ा सहारनपुर से ये श्रोता है हमारे। लीजिए श्रोताओं, आपकी फरमाइश का ये पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं।

कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त स्मिति का नमस्कार। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा आपकी यानी कि श्रोताओं के फेसबुक मैसेज पर, तो देर किस बात की, फटाफट अपनी फरमाइश के गीत हम आपको सुनवाते हैं। ये फरमाइश हमें मिली है राम

गांव कलाना राजस्थान से हमारे ये श्रोता हैं विक्रम सिंह करबाटसरा। अफताब अंसारी और साथियों की फरमाइश आई है गंज डूडवाड़ा से, उत्तर प्रदेश से। सुभाष गोदारा गांव हीरावाली फाजलिका पंजाब से फरमाइश आई है। हितेंद्र दास की फरमाइश आई है और उनके साथी है रशीद हुसैन अंसारी। ये फरमाइश आई है कुरावली से। अनिल वर्मा की फरमाइश आई है कुरावली से। और रविंद्र राहुल और उनके साथ साथी है प्रियंका, मन्नत, गुरशब्द, इन सभी की फरमाइश आई है। उस्मान खत्री हमारी फरमाइश करता है गोगावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। उत्तम सिंह और साथी बलहोल नगर से फरमाइश करता है हरीश हैरी, जगतार जहरी, सुशील डेलू। संतोष भागरे की फरमाइश आई है

महाराष्ट्र से गौरी शंकर मस्ताना की फरमाइश आई है। गोविंद वैष्णव रानी जम बीकानेर से, सदाशिव थारोत, सोमल संदीप सिंह फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिलसिला चूरू से, उमेश कुमार गौड़ मुंदेर शहर से, रामशरण इनकी फरमाइश आई है और इनके साथ ही साथी है मंजू रंजना वंदना प्रियल, ये फरमाइश है सतीश शर्मा की, गणेश लोढ़ा की महाराष्ट्र से, जावेद खान की, विनोद बारसा गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से और इनके साथ साथी है विशाल बारसा, विकास रोशनी शगुन, महेश पारिक गंगानगर से, राम वर्मा इनकी फरमाइश है हनुमानगढ़ फाजलिका से। लीजिए साथियों, आपकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं।

गंगानगर से राम वर्मा, इनकी फरमाइश है हनुमानगढ़ फाजलिका से। लीजिए साथियों, आपकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में द ट्रेन फिल्म से गीत सुना और इस गीत के लिए फरमाइश आई है सुभाष चिम्पा की हनुमानगढ़ से, ज्ञानभूषण शर्मा की रावर करनाल से, हजारी राम की सतीश चावला, रविंद्र कुमार गुप्ता और हमारे श्रोता है जबर सिंह भाटी भोपालगढ़ से, राजू कुमार मुजफ्फरनगर से, विष्णु और साथी इनके साथ है गणेश काशीनाथ, संगीता सोलापुर महाराष्ट्र से, गोविंद वैष्णव हमारे श्रोता है तहसील नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश से, फरियाद हुसैन अंसारी और उनके साथी जगमोहन सिंह प्रजापत, ये हमारे श्रोता है बागपत से, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे

लिखता है मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इनकी फरमाइश आई है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। फागुराम यादव की फरमाइश आई है संबलपुर कांकनेर से। सुरेश गनेजा की फरमाइश आई है जलालाबाद वेस्ट से। गुरप्रीत सिंह की फरमाइश आई है गांव तंगोरी से। भरत शर्मा की फरमाइश है, और आप सभी साथी हमारा अगला गीत सुनना चाहते हैं, तो लीजिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

मुकेश की आवाज़ में अभी ये गीत आपने कभी कभी फिल्म से सुना, और इस गीत के लिए फरमाइश आई है शेख मूसा की, कल्याण सेन की। ये नटरेंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश से है, सोमदत्त नाभा की पटियाला पंजाब से, सुकड़ा नायक की झारखंड से, पुनंजी नावकर की फरमाइश आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, राम कुमार झिंझा की फरमाइश आई है फाजिलका पंजाब से, विजय सुरलकर की फरमाइश है, और साथ ही मसरूर हसन और साथ ही नेकी राम बेनिसवाल की फरमाइश है गंगानगर से, इरशद अहमद और इनके साथ ही हैं मोहम्मद कलीम अंसारी।

गंज डूडवाड़ा से धर्मेंद्र छिप्पा, भोपालगढ़ राजस्थान से महेंद्र मोदी, रामगढ़ से चिन्नॉय महनोत जोहार से, और साथ में साथी है सुनील कुमार ज्ञानी चैना हनुमानगढ़ से, गगनदीप ठंडी, सवरेन गिल, अफ्ताब अंसारी, शाहजी बोरखे हिंगोली महाराष्ट्र से, रजाक मोहम्मद, उत्तम कुमार भगत झारखंड पाकुंड से, विनायक बेड़े फरमाइश आई है इनकी, और इनके साथ में साथी है आकोट से विनायक, मंगला, विजय, शुभम, पवन और श्याम मीढ़ा, सुमन मीढ़ा संगरिया से, अनिल बोखरे सुनना चाहते हैं गीत, और निसार सलमानी धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से। लीजिए श्रोताओं, आपकी फरमाइश का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं।

इस गीत के लिए फरमाइश आई है ओम प्रकाश राय की, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, सूर्यवंशी खिनखिनिया की कुलायत से, धीराज राबड़ी की, और फरमाइश

आई है अरविंद कुमार की, जगदीश धाकड़ हिंगड़ी आलोर जिला रतलाम से, मोहम्मद फरमान, कमल, और ये फरमाइश है राधे श्याम शर्मा की जिला सिरसा से, रियासत हुसैन, सुदर्शन शाह, महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, और इनके साथ में फरमाइश हमें भेजी है छत्तीसगढ़ से ही जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। मोहम्मद सरफराज आलम ने फरमाइश भेजी है, और सुनील कुमार, रिजवान खान छत्तीसगढ़ से, बोधराज खोरवाल, ये फरमाइश है हमारे पास में सोनू वर्मा की, टिब्बी जिला हनुमानगढ़ से, कुनान राम पारिक की, महावीर मानदेन की, बीपी बारूपाल ने फरमाइश भेजी है हमें भोजीवाला गांव से, और दीनदयाल सारस्वत, मुकेश कश्यप, जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से फरमाइश आई है ये, और राजेश कुमार की फरमाइश है। इनके साथ में साथी है संजय ढींगिया, अब्दुल दीक्षित की फरमाइश आई है, मनोहर लाल गांधी और साथियों ने फरमाइश भेजी है गाज़ियाबाद से, लालगिरी गोस्वामी की फरमाइश है, और इनके साथ में साथी है हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी गंगानगर से, सतीश अनेजा, सुखविंदर सिंह जोड़ा दिल्ली से, रामलाल मेघवाल, तुलसी मस्कीन, प्रवीण, और इनके साथ में साथी है योगिता, प्रियाली, पार्थ, और ये फरमाइश आई है अमरावती महाराष्ट्र से, और ये फरमाइश है शंकरलाल जायसवाल की, संजय तिवारी की, विनोद ढीलवाड़ा की, जितेंद्र सिंह की और जीके परमार की, गांधीनगर गुजरात से। तो लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है हम दोनों, आवाज़ मोहम्मद रफ़ीक की है।

मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जी हाँ, इस गीत को सुना आपने और इस गीत के लिए फरमाइश आई है कमल साहू ने की नागपुर महाराष्ट्र से, नरेंद्र कुमार व्यास की सांगरपुर से, सीताराम कबीर की हर्षिता श्रीवास्तव की फरमाइश आई है और ये फरमाइश है एस आर चौहान की गांव लाधूवाला तहसील गंगानगर से, दिनेश वर्मा की फरमाइश आई है, अल्ताफ हुजारे हबीब शेख ने फरमाइश भेजी है हमें और ये फरमाइश है दुर्गा प्रसाद सैनी की, नानक खन्ना की, गुरविंदर अतल की फरमाइश आई है पटियाला पंजाब से और राहुल मनवर की फरमाइश है यवतमाल से, सुरेश जायसवाल ने फरमाइश भेजी है गाज़ीपुर से, मरोतो पंचाल ने फरमाइश भेजी है हमें हिंगोली महाराष्ट्र से और ये फरमाइश है पीरजादा महराज दिन की, गुरतेज आलुखे की फरमाइश आई है और रविंद्र दास ने फरमाइश भेजी है हमें। लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं।

आनंद फिल्म से ये गीत सुन रहे हैं आप मन्ना डे की आवाज़ में, और इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी है राष्ट्रपाल से मीका विर्क ने और बेनी सिंह ने फरमाइश भेजी है हमें। ये है बरेली उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता ओम बागड़िया की फरमाइश आई है, आशु चूक की फरमाइश आई है, संदीप कुमार जालंधर से, घनश्याम सिंह चौधरी की फरमाइश है भोपालगढ़ से, कलवंत मन की फरमाइश है अमरगढ़ से, मनगत ढींगरा की फरमाइश है सादुल शहर से, सतीश श्रीवास्तव ने फरमाइश भेजी है इस गीत के लिए, लाल मोहम्मद अंसारी की फरमाइश है ये गांव करेली बरेली से है हमारे श्रोता, गोपाल नावदेव की फरमाइश आई है, राजेंद्र पारेक, अन्य तिवारी, जगन्नाथ पाटिल की फरमाइश आई है और इनके साथ में साथी है संथल खड़दिया, और ये फरमाइश है प्रहलाद सिंह वर्मा की, बेमित्रा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता है, राजू व्यास की फरमाइश आई है उदयपुर से, बाबू भाई ने फरमाइश भेजी है उदयपुर से और इनके साथ में साथी है भारती देवी, रमेश, विनीत, संतोष साही की फरमाइश आई है बीकानेर से, राजकुमार डूडी की फरमाइश है ग्राम फ्रांसी जिला हिसार से, बलजी

गोधरा ने फरमाइश भेजी है जोधपुर से। गांव झिड़किया तहसील रायपुर से फरमाइश आई है सिंधु सिंह रावत की। संतोष नामदेव की फरमाइश आई है और फरमाइश है हमारे पास में वीरेंद्र बयान की, अब्दुल सत्तर की। तो लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: कभी तो हंसाए।
1: इस गीत के लिए फरमाइश आई है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू की। दिग्दर्शन गौड़ की फरमाइश आई है मेरठ कैंट से। अशोक सिंह ने हमें फरमाइश भेजी है जबलपुर मध्य प्रदेश से। सईद यूनुस ने फरमाइश भेजी है और विश्वनाथ साहू छत्तीसगढ़ लच्छनपुर से फरमाइश भेज रहे हैं हमें। सोनू राम और राम प्रताप स्वामी, किशन सकपाल शास्त्री नगर बीट शहर से फरमाइश आई है। गिरीश देशमुख, सर्वजीत सिंह जोसन की फरमाइश आई है और इनके साथ में साथी है सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन मेलबर्न और आदर्श पार सिंह जोसन। शबीर हुसैन ने फरमाइश भेजी है हमें बुलढाणा से। हरजीत सरन की फरमाइश आई है। शंभू दयाल ने फरमाइश भेजी है हमें और ये फरमाइश है सुरेश मेघवाल की, चंद्रकांत साहू की, धमतरी छत्तीसगढ़ से, पवन किशोर की, राजा राम सुथार की फरमाइश आई है और फरमाइश करता है ये सहदेव दामोदर, बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से। सुधीर नूतन ने फरमाइश भेजी है हमें और लखुवाली से फरमाइश आई है हर्षित की। अजीत भावसर ने फरमाइश भेजी है गुजरात से। दयानीश्वर सरकार ने फरमाइश भेजी है। गजानन गेले ने फरमाइश भेजी है हमें बाबली से और अमर सिंह ने फरमाइश भेजी है हमें। असलम सैफी ने फरमाइश भेजी है और नारायण गायकवाड़ और साथियों ने। ये हमारे श्रोता है नांदेड़ महाराष्ट्र से। किशोर कुमार सावली ने फरमाइश भेजी है हमें दरबार कॉलोनी सनावत से। भजन लाल मंदार ने फरमाइश भेजी है और इनके साथ में साथी है आर्यन राज, राजू सचदेव, मीरा से।

विशाल शेखर के संगीत से सजा अभी ये गीत आपने कृष्णा कुमार की आवाज़ में सुना, और इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी है बनवारी लाल ने गांव अरायन से, कोमला मेहरा ने दादरी गेट भिवानी से, भूपेंद्र जुनेजा ने फरमाइश भेजी है हमें दिल्ली से, और इनके साथ में साथी है उत्तम सिंह, भूपेंद्र, सीमा, अनमोल और साहिबा। साथ में फरमाइश आई है सुरेश खुराना की ग्वालियर से, प्रवीण श्रीमाली की फरमाइश आई है बड़वा मध्य प्रदेश से, सुरेश राठौड़ ने फरमाइश भेजी है हमें, और सुनील राहर की फरमाइश आई है गंगानगर से, शिवराज जाट ने फरमाइश हमें भेजी है लालगढ़िया सूरतगढ़ से, वेद प्रकाश मीढ़ा की फरमाइश आई है, और इनके साथ में साथी है अलका मीढ़ा हनुमानगढ़ राजस्थान से, मोहम्मद चांदेड़ ने फरमाइश भेजी है हमें छत्तीसगढ़ से, नरेन नेतम की फरमाइश आई है, और फरमाइश है रामकुमार लालगढ़िया की। श्रोताओं, आपसे एक निवेदन है कि आप मैसेज में अपना नाम, जगह और फरमाइश गीत का नाम सिर्फ एक ही बार लिखें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं को इस कार्यक्रम में जोड़ सकें। लीजिए आपकी फरमाइश का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं अभिमान फिल्म से।

श्रोताओं, आकाशवाणी के सूरतगढ़ से अभी आप अनुरोध गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और आप सबने फरमाइश हमें फेसबुक मैसेज पर भेजी है और ये फरमाइश हमें मिली है अनवर अंसारी की पंजाब से, भागवत चौबे लाडले जी की लखनादुन मध्य प्रदेश से, विनोद लखनपाल की फरमाइश आई है रावर करनाल से और ये फरमाइश है सूरतगढ़ से, महावीर कोहला की फरमाइश है, बीपी गौतम की फरमाइश है एटा रोड गंज टूटवाड़ा से, रामजी साहू की फरमाइश आई है हमारे पास में और खिलू परवेज सूरतगढ़ से इन्होंने फरमाइश भेजी है। साथ में इनके साथी है लखबीर सिंह भाटी, जानी इंद्राज ने फरमाइश भेजी है सिंधुवाला से, मनोहर मगर की फरमाइश आई है, हुकुम करमार की फरमाइश आई है और इनके साथ में साथी है सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु। साथ में ये फरमाइश आई है मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर की, अजीत कसाना की फरमाइश है। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं याराना फिल्म से। आवाज़ किशोर कुमार की है और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है अजीत कसाना ने, दत्तार सिंह गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। और ये हमारे श्रोता है नौहर हनुमानगढ़ से रविकांत शर्मा। अब्दात खान की फरमाइश आई है और फरमाइश है मुकेश शर्मा की भिलाई छत्तीसगढ़ से, नाजिम अली उदयपुर से, कोहली ये फरमाइश है श्री विजयनगर से, सीताराम बिश्नोई की फरमाइश आई है, अनिल जैन ने हमें फरमाइश भेजी है और उनके साथ में ये साथी हैं उनके बलवंत कुमार वर्मा।

प्रमीलागंज आलोर जिला रतलाम से हमें फरमाइश भेजी है इन्होंने, और इनके साथ में फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्णन ने फरमाइश भेजी है। श्याम मेहर मंदसौर मध्य प्रदेश से फरमाइश आई है। ब्रिजमोहन प्रजापति और बदर सिंह की फरमाइश आई है। किशोर वानखेड़े की फरमाइश आई है। नंद किशोर घटे की फरमाइश है। साथ में इनकी फरमाइश भेजी है भारत धारणिया ने, लिच्छाराम प्रजापत ने। सीताराम कांगड़े की फरमाइश आई है रोहतक से। मोहम्मद वक्कार फरीदी की ने फरमाइश भेजी है हमें बिजनौर से। हनुमान कुमार की फरमाइश आई है मोहम्मद यासीन अनजान, और इनके साथ में साथी है नजीमुद्दीन खान उदयपुर से, रामराव नितोन अकोला महाराष्ट्र से, बलराम वर्मा इन्होंने फरमाइश हमें भेजी है पाटीन, ये छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता है। सतवीर लखाना ने फरमाइश भेजी है हमें। सदानंद मंदूरकर ने फरमाइश भेजी है, और ये फरमाइश करता है हाल के जयपाल यादव, प्रवीण सोनी, राजपाल विनोद नारायण खुशवाहा और चंदेर प्रकाश। इनके साथ में साथी है मोहम्मद यासीन, इन्होंने फरमाइश भेजी है गंज टूटवाड़ा से। मोहम्मद सत्तर की फरमाइश आई है। अब्दुल गफ़ार ने हमें फरमाइश भेजी है, और इनके साथ में फैज़ल इमाम ने फरमाइश भेजी है बिहार से, हयात कॉलोनी अररिया से। और इनके साथ में साथी है उदय भानपाल। सुभाष चंद्र बजाज की फरमाइश आई है चंडीगढ़ से। अशोक ग्रोवर ने हमें फरमाइश भेजी है बठिंडा से। राहुल पाल ये इस गीत को सुनना चाहते हैं, तो लीजिए आप सबकी पसंद का ये गीत याराना फिल्म से।

जी हाँ श्रोताओं, मन छूते ही कोई इशारा तो कर देता है, और इसी के साथ हम अगला गीत आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी कुछ फरमाइश के नाम लेना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के। चंद्रिका प्रसाद ये गीत सुनना चाहते हैं जिला रायबरेली से। भूषण खेड़ा ने फरमाइश हमें भेजी है फाजिलका पंजाब से। नौरंग सुथार की फरमाइश आई है और ये फरमाइश है जैमिन कुमार जैन की, साथ में राजकोट से, और इनके साथ में साथी है हेतल कृष्ण जैन। मुकेश मौर्या ने फरमाइश हमें भेजी है और कयूम खान की फरमाइश आई है। प्रेम कुमार मेघवाल ने फरमाइश हमें भेजी है। जगतार सिंह मन की फरमाइश है। ताज अंसारी की फरमाइश आई है। ये हमारे श्रोता है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। मेघराज सुथार ने हमें फरमाइश भेजी है। राजेश एकला की फरमाइश आई है। राकेश चौधरी ने हमें फरमाइश भेजी है श्री विजयनगर से। और अशोक वर्मा की फरमाइश आई है। सुरेश राठौर ने फरमाइश भेजी है। राहुल मनवर की फरमाइश आई है और इनके साथ में साथी है प्रवीण हेगने। प्रवीण श्रीमाली की फरमाइश आई है खरगोन मध्य प्रदेश से। विनोद दास महनत ने फरमाइश हमें भेजी है। मेघराज सुथार ने हमें फरमाइश भेजी है और रामधन स्वामी ने फरमाइश भेजी है। लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं गोलमाल फिल्म से।

श्रोताओं, इस गीत को और भी हमारे फरमाइशकर्ता सुनना चाहते हैं, और ये फरमाइश हमारे पास आई है रामधन दास स्वामी की। कलवंत मान की फरमाइश आई है सुरेश बागड़ी ने, हमें फरमाइश भेजी है। संदीप कुमार की फरमाइश आई है, अनिल जैन ने हमें फरमाइश भेजी है। मलियान सरधना मेरठ से फरमाइश आई है ये। अंजुम खान की फरमाइश है, प्रेम कुमार मेघवाल हनुमानगढ़ से हमें फरमाइश भेज रहे हैं। और एसआर चौहान की फरमाइश है, शंकर लाल प्रेम जी भाई ने फरमाइश भेजी है हमें, और उनके साथ में इनके साथी है हेमकेश्वर साहू, इन्होंने भाटापारा छत्तीसगढ़ से।

हमें फरमाइश भेजी है, बनवारी लाल खुश ने हमें फरमाइश भेजी है, मनमोहन वर्मा ने हमें फरमाइश भेजी है, राधा नामदेव सहारनपुर से, हरजीत सारन, रियाज भाटी, मेघराज सुथार ने हमें फरमाइश भेजी है और रिहाना खान ने हमें फरमाइश भेजी है पंजाब से। तो लीजिए, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

ये फरमाइश आई है सतीश शर्मा की, गांव रघुनाथपुरा से, और इनके साथ में साथी है रोशनी, भावना, गरिमा और हिमांशी शर्मा। और ये फरमाइश आई है बबन रामकेता की। चंद्रपलता पतवा की फरमाइश आई है पवन वर्मा ने, हमें फरमाइश भेजी है फाजलिका से। मोहम्मद सईद हसन की फरमाइश आई है और इनके साथ में साथी है नवी हसन।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अनुरोध गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और उनकी प्रसारण समय की।

आज दोपहर 3 बजे श्रोता सुनेंगे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संसद समीक्षा के संपादित अंश श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अपनो राजस्थान, जी हाँ, ये कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 10 बजे, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। किसान वाणी श्रोता सुनेंगे आज शाम 7 बजे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से, और आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी श्रोता सुनेंगे आज शाम 6:40 पर। कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम एक ही शीर्षक से, और आज का शीर्षक है मौसम। सुगम संगीत का समय रहेगा दोपहर 12:30 पर, और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे जगजीत सिंह की गायक कुछ चुनिंदा गजलें।

किसान श्रोताओं के लिए खेत खलियान कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:50 पर, और आज इस कार्यक्रम का विषय रहेगा भिंडी की फसल में साम्यक कार्य। चौपाल का समय रहेगा आज शाम 7:30 पर, और इस कार्यक्रम में आज जानकारी दी जाएगी फसलों में जैव उर्वरकों का महत्व, दुधारू पशुओं का परजीवी कीटों से बचाव, और साथ ही मौसम व बाजार भाव संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन का समय रहेगा आज दोपहर 1:05 पर, और इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के विषय में जानकारी, और साथ ही जानकारी दी जाएगी बढ़ती आबादी बढ़ता संकट पर, मेहंदी के महत्व और पारंपरिक डिजाइन पर, और गुजरात के प्रमुख व्यंजन पर भी चर्चा होगी। साथ ही होंगे कुछ चुनिंदा लोकगीत, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति शीला कुमारी की रहेगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं आज दोपहर 2:30 पर, और एक ही फिल्म से जानकारी और गीत होंगे रात्रि 8:15 पर। सिराइकी का समय रहेगा आज शाम 6:05 पर, और युवाणी का समय रहेगा आज शाम 5:00। कार्यक्रम गोरबंद का समय रहेगा आज रात्रि 9:15 पर। श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

जी हाँ श्रोताओं, ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक ही शीर्षक से।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त स्मिति का नमस्कार। श्रोताओं, जीवन को हम एक परिधि में नहीं जी सकते। मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह एक रास्ता से जल्द ही ऊब जाता है। अगर परिवर्तन जीवन में ना हो तो वह जीवन फिर निरस्ता से भर जाता है, और यही परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में मौसम लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि कुछ पल के लिए हम ये सोचें कि अगर मौसम का बदलाव ना हो तो शायद जीवन इस संपूर्ण धरती पर विचरने वाले सभी जीवों का बदरंग सा हो जाएगा। मौसम में परिवर्तन मनुष्य को नए अनुभवों से अवगत करवाता है, बल्कि मनुष्य ही नहीं, प्रकृति के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी मौसम के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं।

श्रोताओं, हर मौसम की शुरुआत नई उमंग और नए सपनों को दस्तक देती है। जहां गर्मी की मौसम का आगमन झड़कते हुए नीम के पत्तों से होता है, तो वहीं रातें सिकुड़ती हैं तो दिन लंबे हो जाते हैं। गर्मी का एहसास तब होने लगता है जब सोने की खान की तरह गेहूं की बालियां खेतों में दमकती है, तो दूसरी ओर फूलों में जल्दी झड़ने की एक होर सी मच जाती है। इस मौसम में नदियां सूखती हैं तो पनघट भी रूठते हैं। कभी गलियों में सन्नाटे पसर जाते हैं तो कभी पशु पक्षी छांव ढूंढते नजर आते हैं। वहीं अगर हम बसंत की बात करें तो बसंत की फुहार कोयल की कूहू से शुरू होती है, तो तितलियां फूलों से बतियाने निकल पड़ती हैं। इस मौसम में जहां बारिश की बूंदें किसानों के चेहरों से चिंता और निराशा की लकीरें मिटाती नजर आती हैं, तो मोर भी बसंत ऋतु का आनंद लेने से कहाँ पीछे रहते हैं।

0: दोस्तों, जब पतझड़ का मौसम आता है तो ऐसा लगता है मानो ये ऋतु पेड़ों से कह रही हो कि नए रूप में ढलने का अब वक्त आ गया है। तो वहीं सर्दी का मौसम आसमान में पहरा दे रहे कोहरे के रूप में नज़र आने लगता है। सर्दियों में सूरज की खिलती धूप कभी प्यारी लगने लगती है तो ठिठुरन भरी सर्द हवाएं चारों ओर छाने लगती है। हर ऋतु का अपना एक अलग ही मज़ा है।
1: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, let's start the fun.

श्रोताओं, मौसम की ऋतुएं थोड़े समय के लिए आती हैं और अपनी सुंदर छटा उस मौसम के लिए पृथ्वी पर बिखेरती रहती है। किसी मौसम में मिट्टी की सौंधी सी खुशबू आती है तो पक्षियों की कलरव की आवाज़ें भी बदलती नज़र आती है। किसी मौसम में बंजर पड़ी ज़मीन अपने अस्तित्व के लिए लड़ती नज़र आती है तो कभी मौसम के बदलने पर वही ज़मीन हरियाली बिखेरती नज़र आती है। वन उपवन हो या इस धरती का कोई भी कोना, मौसम के रंग में बदलते रहता है।

श्रोताओं, मौसम तो पल पल रंग बदलता है, वक्त भी बदलता है और रास्ते भी बदलते हैं। वैसे ही इंसान भी बदलता है, लेकिन इंसान को इतना भी नहीं बदलना चाहिए कि वह अपना अस्तित्व ही खो दे। परिवर्तन हमें मौसम ने सिखाया है, लेकिन प्रकृति को परिवर्तन कर अपनाना, वर्चस्व बनाना मौसम ने नहीं सिखाया। नदियाँ, पर्वत, सागर, वन सभी तो अपने हैं, हमारे अपने सहचर है। और वहीं दोस्तों, पुष्प, लता, पक्षी, भव

और तितलियों से ही हमारा जीवन सुंदर बना है। इन सभी के साथ तालमेल रखते हुए हमें जीवन जीना है, ना कि इन्हें नष्ट करते हुए। जब ये सब खत्म होने लगेंगे तो मौसम भी हमसे रूठ जाएंगे और फिर भारी विपदा बनकर हमारी जिंदगी का संकट बन जाएंगे।

दोस्तों, एक बात तो और है, मौसम बिल्कुल हमारे मन की तरह होते हैं। कभी गर्मी की तपन हम सहन करते हैं, तो कभी बारिश की फुहार, तो कभी सर्दी का एहसास सा होता है हमारा मन। हमारे मन में भी कितनी ही भावनाएं आती है और चली जाती है। मन जिस तरह बहुत चंचल होता है, वैसे ही मौसम के बदलाव का अनुमान भी हम उसी तरीके से लगा लेते हैं। कभी मौसम हमारी झोली खुशियों से भर देता है, तो कभी अकाल और अतिवृष्टि के रूप में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है।

और इस गीत के साथ ही एक ही शीर्षक से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह की गायक कुछ चुनिंदा गजलें।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: श्रोता अभी सुगम संगीत के अंतर्गत जगजीत सिंह की गायक को चुनिंदा गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब सुनते हैं कार्यक्रम खेत खलियान।
1: किसान भाइयों, आप किसानी करा और पूरे साल आप मेहनत करा, बिंगे बाद में कई बिरिया बहुत सा किसान भाइयों मन में आवे कि जीती आप मेहनत करिए बीती आप उत्पादन जी को है वो आपने मिलियो को नहीं, बिंगो कारण के है। इन पर अगर आप विचार करा तो ईसा मूल मंत्र है, छोटी छोटी बातें हैं जकी के ऊपर अगर आप ध्यान करा तो आप बढ़िया उत्पादकता ले सका। उत्पादन लेने वास्ते आप छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखा, जिया समय पर आप बुआई करा, ई शू हो सी के कै ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन ले सकांगा। बिजाई वास्ते हमेशा प्रमाणित उन्नत बीज बोवा। देखो गयो है कि जिका किसान भाई प्रमाणित और उन्नत बीज लेवे बांगी फसल जी की है 20-25% तक बढ़ गया वे। बीज को हमेशा उपचार करा, जकीन आप बीज को टीकाकरण भी कह दें, ईशू के उसी कह कम खर्चे में फसल जी की है बा निरोग रहेगी और स्वस्थ रहेगी। माटी की जांच हमेशा आपने करवानी चाहिए, सिफारिश के अनुसार आपने संतुलित उर्वरक डालना चाहिए। ईशू उर्वरकांग ऊपर जी को अपनो एड़ो पीस हो जावे वो बचत हो जाएगी, और जब बचत होगी तो वह आपने मुनाफे में ही गिनी जाएगी। गर्मी में आप हमेशा गहरी जुताई करनी चाहिए, भारी मिट्टी के अंदर तो विशेष तौर से आप ध्यान रखा कि गहरी जुताई करा और बिना कई दिन छोड़ा। बीशू के होगा कि जी की खरपतवार की समस्या, रोग कीट को जी को प्रकोप है, बीशू आपने निजात मिलेगी, बिंग में कमी देखने में आएगी। सही बीज दर रखा, हमेशा कतार में बुआई करा, कतार शू कतार की जी की दूरी है बिना समुचित रखा। ईशू के होसी के पौधे की जी की सही संख्या है और सही दूरी शू अच्छी बढ़वार आपने मिलेगी, बीशू आप ज़्यादा उपज ले पावांगा। बिंगो कारण और होगा कि जब दूरी सही होगी तो बिना पूरा पानी मिलेगो, हवा मिलेगी, प्रकाश मिलेगो और पौधों जी को है वो चोखो बढ़वार लेवेगो। जुताई बुआई जद भी आप खेत की करा तो डलानगी आड़ में करा, डलानगी आड़ में जब आप जुताई करांगा तो जिको वर्षा को जल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने जमीन के अंदर जावेगो। जमीन के अंदर

0: वर्षा को जल कठो वैगो तो वो एक तो पानी की पूर्ति करतो रहेगो, दूसरो अपनी जमीन के अंदर जीको है नमी बनाए रखोगो, जीको अपनी फसल के बढ़वार वास्ते सबसे जरूरी चीज है। फसल हमेशा ही बदल बदल के बीजा, ईशु के हुए कि कीट रोग को जीको प्रकोप है वो कम हो जाए। एक ही एक तरीके की जब आप फसल बीजा तो बई सागी कीट बई सागी रोग अपनी फसल ने कई बार पूरी की पूरी नष्ट कर देवे और किसान ने बहुत बड़े नुकसान को सामना करना पड़े। तो फसल हमेशा आप बदल बदल के बीजा, हमेशा मिलवा फसल करा। ईशु फसल का जी का भाव है बिंग मा बीजी को अपनो जोखिम हुआ वो कम हो जाएगा और अलग शु फसल की आपा ने प्राप्ति हो जाएगी। दलनी तिलनी जी की फसला है बंग मा आपा जिप्सम को प्रयोग जरूर करा। ईशु के उसी कि भूमि की जी की ताकत है, भूमि की जी की उर्वरा शक्ति है वह बढ़ जाएगी, उपज की गुणवत्ता बढ़ेगी, तेल को जी को प्रतिशत है बिंगी मात्रा बढ़ेगी। जब आप मंडी के अंदर अपनो उत्पादन लेके जावांगा तो बिंगा भाव जी का है वह गुणवत्ता के आधार पर आपा ने बढ़िया मिलेगा, तेल की प्रतिशत की मात्रा के जी को बढ़ गया ही है बिंगा आधार पर आपा ने मुनाफो जी को है वो ज्यादा हुआ। पानी की जी की समस्या है बात दिनों दिन अपने सामने आने लग रही है, तो बी वास्ते जरूरी है कि आपा फवारा पत्ती ड्रिप पाइपलाइन आंगो इस्तेमाल करा। इंशु पानी की बचत होवेगी ही होवेगी, सागे आपनों जी को सिंचित क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। जब पानी को सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा तो अपनी पूरे खेत ने पानी मिलने लग जाएगा। अब सरकारा जी की है बा आपा ने पूरी सुविधा देने लग रही है, तो चाहे छोटो किसान है चाहे बड़ो किसान है बिना आपके खेत के माँ डिगी बनानी चाहिए। पहला डिगी के अंदर आपा पानी जिको है वो आपने संचित करा, संचित करने के बाद में आपा जद समय हुए बी समय आपा सिंचाई करा फसल।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना खुशहाल हो हर किसान अपना।
0: उपयोग करा फेरोमान पाश को काम में लेवा, ईशु दवाई को प्रयोग कम हो जाएगो और दवाई पर होने वालों खर्चो जी को है वो कम हो जाएगो। बिना दवाई के भी कीड़ा जी का है वहाँ पर आपा प्रभावी नियंत्रण ले सकांगा। जकन आपा आजकल जी को जैविक खेती आपा कहाँ या प्राकृतिक खेती कहाँ बी वास्ते भी बहुत जरूरी है कि आपा प्रकाश पास और फेरोमैन पास को उपयोग करा। जैविक खेती भी आपा ने अब अपनानी चाहिए। बीचू उत्पादन पर जितनी आपनी अब लागत होने लग रही है बा लागत जी की है बा कम हो जाएगी और प्रकृति जी की है बा आपा ने बीतो के बीतो उत्पादन देन लग जाएगी। सिफारिश के अनुसार ही आपा हमेशा अगेती और पछेती जी की फसलें हैं बै बीजा। बीचू विषम जी की परिस्थितियां वह बंग मा भी आपा आमदनी ने बढ़ा सकांगा। कई बार आपा देखा कि अपना गलत जी का निर्णय हुआ बंगी वजह शू अपनी फसल जी को है बा नुकसान कर जाए। अगेती फसल ने आपा पछेती में बीज देवा तो बा किस्मां के अंदर कई बरियां देखा कि मेह है झंकड़ है अंग है प्रकोप शू अपनी पूरी की पूरी फसल जी की है बा नष्ट हो जाए। उपज ने हमेशा सुखागे छानगे श्रेणीवार करगे जकिन आपा ग्रेडिंग का आज के जमाने में बिंगे बाद में ही बाजार में लेके जानो चाहिए। जी की बढ़िया बढ़िया फसल है बढ़िया श्रेणी की फसल है बढ़िया गुणवत्ता वाली फसल है बिना आपा ऊंचे से ऊंचे भाव में बेचा और कोई जे फसल को हिस्सो मंदो रह गयो है तो बिना आपा कम रेट के ऊपर बेच सका। इन तरीके से जब आपा अपनो औसत अनुपात निकालांगा तो आपन अपनी जी के खेत को मूल्य अपनी जी की फसल को मूल्य है वो पूरा मिलेगा आपा ने। इनके अलावा खाद बीज कीटनाशी दवा ए जद भी आपा खरीदा तो बी समय विक्रेता शू बिल जरूर लेना चाहिए। ई शू के उसी के एक तो आपा धोखाधड़ी में बच जाएगा और अदानगी जी की गुणवत्ता है वह भी सुनिश्चित हो जाएगी। कई बिरिया कह दे बीज माड़ो आ गयो, जद आपने कन बिल हुए फसल को बीमो हुए तो आपनी नुकसान होएडी फसल के माँ भी जिको बीमो है वो आपनी जिको

0: नुकसान है बिंगी पूर्ति कर देवे। तो जरूरी है कि जिको भी खाद बीज कीटनाशक अपन लेवा बिंगो बिल जिको है वो जरूर लेवा। समय समय पर जिका कृषि कार्यक्रम हुए बांगमा अपनी भागीदारी बढ़ावा। अपना जिता भी कृषि विकास केंद्र है या पंचायत स्तर पर भी कई बार अपन देखा कि मेला को आयोजन हुए बीज यहाँ पर अपनी भागीदारी बढ़ावा ताकि आपने नई नई जी की जानकारी है बा आपने मिले नई नई जी की तकनीक आने लग रही है बांगे बारे में आपन जानकारी मिले और समस्या जी की आपने सामने आवे किसानी के अंदर बांगो भी आपनों समाधान आपने बैठे मिल जावे। फसल बीमो कराना तो सबसे जरूरी है ईशू आपा कोई भी अगर अपनी जोखिम है बीजू बच सकांगा। उन्नत जी का कृषि यंत्र है बांगो प्रयोग करा ईशू आपनों समय श्रम पैसा आ सारी चीज की बचत होगी। और जद समय और श्रम की बचत होगी पैसा की बचत हो सी तो आपनों मुनाफो ही गिण्यो जावेगो। इनके अलावा नगदी और उद्यानी जी की फसलें बने आपने एक हिस्से के माँ बीजनो चाहिए बने अपनानो चाहिए क्योंकि निरंतर आमदनी जी की है बा आपने बीजू मिलती रहेगी। और बहुत सा किसान भाई आपके खेत के कुछ हिस्से के अंदर बाग इत्यादि लगा रखे है या बिंग अलावा सब्जी की फसलां करे तो बीसू नित की जी की आमदनी है बापा ने मिलबो करे और नित को जी को खर्चो है वो आपनों आबो करे। अगर आ छोटी छोटी बातों पर आपा विशेष तौर से ध्यान देवांगा तो बढ़िया मुनाफो ले सकांगा बढ़िया आमदनी ले सकांगा। अब हूँ चालू राम राम सा राम राम।
1: श्रोता अभी खेत खलियान कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्य प्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। वहीं विनियोग संख्या 3 विधेयक का उद्देश्य 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर किए गए खर्च की पूर्ति के लिए देश की संचित निधि से धनराशि के विनियोजन को अधिकृत करना है। इस बीच राज्यसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। हालांकि विपक्ष के विभिन्न मुद्दों को लेकर किए गए हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। उधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य नेताओं ने बैठक में भाग लिया। रक्षाबंधन के अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने विदेश में रहने वाले भारतीयों तक राखियां समय पर पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। डाक विभाग ने किफायती और वाटरप्रूफ लिफाफों की सुविधा उपलब्ध कराई है। इन लिफाफों के माध्यम से खाड़ी देशों को छोड़कर लगभग 100 देशों में राखियां भेजी जा सकती हैं। भीलवाड़ा डाक मंडल से अब तक 100 से अधिक राखियां विदेश भेजी जा चुकी हैं। डाक अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने बताया कि इस बार सबसे अधिक राखियां ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भेजी जा रही हैं। उन्होंने लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की। सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आज कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की पहल पर भविष्य की उड़ान के तहत ये आयोजन रखा गया है। इसमें जिला कलेक्टर कानाराम चयनित सरकारी

0: स्कूलों के संस्था प्रधानों से विभिन्न विषयों पर संवाद करेंगे साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्था प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में अच्छी बरसात हुई जल संसाधन विभाग के अनुसार दौसा जिले के मंडावर में सबसे अधिक 11 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई इसके अलावा 12 के अंता में 10 हनुमानगढ़ के रामगढ़ में 9.6 और डीडवाना कुचामन के मकराना में 9 सेंटीमीटर पानी बरसा जयपुर अजमेर भरतपुर बीकानेर झुंझुनू धौलपुर चूरू करौली और श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में भी अच्छी बरसात हुई मौसम विभाग ने आज भरतपुर जयपुर और बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश तथा भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है पाली में कैच द रेन अभियान के तहत नगर निगम ने वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू किया है इसके तहत जिला कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं अभियान के माध्यम से लोगों को बारिश का पानी अधिक से अधिक इकट्ठा करने और जल संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाने का संदेश दिया जा रहा है नागरिकों से घरों संस्थानों और सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अपनाने की भी अपील की गई है जैसलमेर में युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार से जोड़ने के लिए उद्यमिता और स्टार्टअप संवर्धन कार्यशाला कल आयोजित की जाएगी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से स्टार्टअप इंडिया के तहत आयोजित इस कार्यशाला में युवाओं विद्यार्थियों नवाचारकर्ताओं और संभावित उद्यमियों को स्टार्टअप से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी इसका उद्देश्य युवाओं को नवाचार आधारित उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना और उनके विचारों को सफल स्टार्टअप में बदलने में सहायता करना है इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा नमस्कार
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन

थोड़ा परंपरागत व्यंजना रे। ढोकला, खांडवा, थेपला और फाफड़ा री बात सुनन मुँह में पानी आ जावेला। और फिर बढ़ती आबादी, बढ़ता संकट माथे सोच विचार कराला। पछे चाल सा सावन रो महीनो और मेहंदी रो महत्व, परंपरागत मांडना और सिंगार माथे। त्यों त्योहारा पर मारी बहना हतारे मायने मेहंदी रचावे, बीरी महक सुहावना डिजाइना री बात कराला। आपने एक कार्यक्रम ने घणो ही रंगीन बनावला। अच्छा बहना, एक बात बताओ, जद आपा गांव में आंगन रे मायने बैठर बात करानी तो बात सु ही बात निकले है। बस अपनी यहाँ रेडियो रे घर आंगन मायने थारी और मारी घर गृहस्थी री बात होवे है। मैं जानू हूँ आजकल मारी बहना घर रो काम, रांधनो, बनानो, खानो, ढोर डांगरा ने संभालनो रे सागे सागे होशियार भी होगी है। बने घर संभालनो भी आवे और बेटियां ने पढ़ावनो भी आवे। बने रसोई रा नया नया स्वाद भी बनावना आवे तो समाज री बड़ी बड़ी बातियारे मायने आपरी राय देवनी भी।

कितो पुठरो गीतो बैनो हो। बारिश ने देखर तो आपा सगला कहवाई हाँ कि बिरखा बरसी मोकली जागी हिवड़े आस, बिरखा बरसी मोकली जागी हिवड़े आस, गाडा बरसी धानरा डांगर चरसी घास, गाडा बरसी धानरा डांगर चरसी घास, बिरखा खाली पानी कोनी साहब, आ किसान रे सपना और खुशहाली री निशानी भी होवे है। तो सावन रो महीनों तो सगला ने ही गणो ही चोखो लागे और सावन रे मायने मन भी मयूर की तरह नाचन लाग जावे। बहनों अब दोपहरी रो वक़्त है और रसोई री बात नहीं होवे, यो तो हो ही नहीं सके। मारी सगली गांवारी बहना दोपहरों काम का समेटर बैठी है, तो मैं सोचियो कि क्यों ना आज थाने मारे पड़ोसी राज्य गुजरात री सुंदर और रंग बिरंगी रसोई मायने ले चलूं। अपा राजस्थान रा लोग तो दाल बाटी चूरमो और केर सांगरिया रा घना ही शौकीना हाँ, पर मारा पड़ोसी गुजरात रा लोग भी खान पान मायने कोई सु कम कोनी। बारी रसोई री सबसु खास बात कहीं हुआ है जानो हो थे? बारे खाने रे मायने थोड़ो सो खट्टो और थोड़ो सो मीठो स्वाद रो मेल हुआ है कि खावन आला बस उंगलियां ही चाटता रह जावे। ढोकला और खांडवी भापसु बनन आला हल्को फुल्को नाश्तो। सबसे पहले आपा बात करा आपने गुजरात री पहचान खमन ढोकला री। ढोकला गुजरात रो इसो परंपरागत व्यंजन है जिको सगला ने पसंद आवे। इरी सबसे बड़ी खासियत आ है कि वो तेल घी मायने तलीजे को नहीं, वो तो बेसन और छाछ रे घोल रे सु बाफ रे मायने पकाई जा है और बनानो भी एकदम आसान है। बेसन रे मायने थोड़ी सी सूजी नमक नींबू रो रस दही या छाछ मिला भी रो घोल बना लेवे। दो तीन घंटा भी घोलना है पड़ो रेवन देवा, पछे बाफ रे मायने पकावा और ऊपर से राई करी पत्ता और हरी मिर्च रो छोंक लगा देवा। वो अपने वास्ते घनो ही फायदेमंद होवे है और पचन रे मायने भी हल्को और सेहत खातर घनो चोखो होवे है। दूजी भाव सू बनन वाली चीज है खांडवी। खांडवी तो देखण मायने इतनी फूटरी लागे कि थारो मन ही खुश हो जावे लो। बेसन और छाछ रे घोल ने धीमी आंच माथे कढ़ाई मायने पकायो जावे और जित वो गाढ़ो हो जावे तो बिने थाली रे मायने पतलो पतलो फैला देवा। फिर पीरा गोल गोल रोल सा बना लेवा, ऊपर सु राई और तिल रो छोंक लगा देवा और मुँह मायने घालता ही वो तो घुल जावा। अब बात करा मेथी रे थेपलारी। गुजरात रे मायने इंगो इसो महत्व है जिया आपने अठे मिसी रोटी रो हुआ है। गेहूं रे आटे रे मायने ताजा हरी मिर्च बेसन मोयन खातर थोड़ो सो तेल हल्दी मिर्च नमक दही मिलार आटो गूंथ लेवा और पतली पतली रोटियां सी सेक लेवा। थेपला री सबसे बड़ी खासियत आ है कि आ तीन चार दिन तक खराब भी कोनी हुआ है। जब भी घर रा कोई जना खेतरे मायने जावे या थारे घर मायने कोई बारह सफर करन जान लाग रियो है तो अचार रे साथ है थेपला बांध दो। ना तो साग सब्जी री जरूरत और ना ही खराब होवन रो डर और खाने रे मायने भी एकदम स्वादिष्ट। और टाबरिया तो खास नहीं तो बै तो ये रोज ही कवेला कि माने तो बै ही बना दे। तो बहनों बातचीत रे सागे सागे थोड़ा मनोरंजन होन तो रहे तो के कहनो, हंसते मुस्कुराते हुए सुनता रहो कार्यक्रम अपनो घर आंगन।

बादलिया घणावे मीठी गरज करे, वर्षे जी सावणियों हिवड़े हरख भरे, ठंडो अमृत पानी नीले नब सुजड़े, वर्षे जी सावणियों हिवड़े नेह भरे।

कितो बूट रो गीत हो बैणाओ सावन रो, सुनन मन हिलोरा मारन लाग्यो और नाचन लाग रहे हो। तो चलो गीत तो सुन लियो, अब पाछा आ जा आप अपनी बात रे मत है। गुजरात रे मायने बहनों एक पारंपरिक चीज और बना है, बिन कहवे है हांडवो। यो चावल और दाला ने बिजोर पीसर और भी मैं घनी सारी सब्जियां जियां लौकी गाजर आलू मटर टमाटर मिलार धीमी आंच माथे पकाई जा है। ओ ऊपर सू कड़क और माए सू नरम बना है। उंधियो और फाफड़ा जलेबी त्योहारा रो स्वाद। जब आप गुजरात री बात करा हाँ तो उंधियों ने किया भूल सका हाँ। सियाले रे दिनारे मायने घर घर मायने ओ बना है। ओ अपनी जी आप सारी सब्जियां ने मिलार पंचकूटारी सब्जी बनावा आनी बी यही बना है। पर इन्हें पापड़ी और बैंगन रतालू मूठिया और घना सारा मसाला मिलार माटी रे ठाव मायने बनाई जा है।

आंच रे मत है, इरे स्वाद री तो बात ही काई करा। और हाँ, गुजरात रो नाम आमते ही सगला ने फाफड़ा और जलेबी री भी याद आ जावे है। बेसन रा फाफड़ा कड़क कड़क और सागे रसीली गरम गरम जलेबी, ओ मेल गुजरात रा लोग हमेशा एतवार ने जरूर खावे है। या तो किसी भी दिन खा लवे, पर एतवार ही सुबह सुबह तो वह घने ही चावसु निस्फिक्र होके खावे है। इंगे साथ साथ है पपीते रो संभारो, मतलब कद्दूकस करेड़ो पपीतो और तलेड़ी मिर्च मिले, जिको स्वाद ने दोगुनो कर देवे है। मैनो गुजरात रो खान पान और आपने राजस्थान रे खान पान मायने घनी समानता हुए है। अठे भी बेसन रो प्रयोग घणो ही हुए है और आपने अठे भी गट्टा री सब्जी कड्डी और नमकीन मायने बेसन रो उपयोग हुए है। फर्क बस इतो सो ही है कि गुजराती लोग हर सब्जी और दाल रे मायने थोड़ो सो गुड़ या चीनी मिलावे है, जिंगसु के है भी मायने मिठास आ जावे। और आपा राजस्थानी लोग थोड़ा चटपटो और तीखो स्वाद पसंद करा हाँ। पर मैंने रसोई रो असली मरम काई है? रसोई रो असली मरम है कि आपा कम खर्चा रे मायने घर मायने मौजूद चीज सु ही अपने परिवार खातर पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन बनावा। सागे तो वो पौष्टिक भी होवे और सेहत रे वास्ते चोखो भी होवे। ढोकला होवे या थेपला, आ मायने ना तो कोई महंगो सामान चाहिए जाए और ना ही घणो समय लागे। तो मारी प्यारी प्यारी बहनों, आज ही दोपहर रे मायने काल सुबह अपनी रसोई रे मायने थोड़ी फेर बदल कर देख जो। टाबरा खातर मेथी रा थेपला या बेसन रा ढोकला बनार खिलाओ, टाबर भी राजी और घर रा बड़ा भी थारी तारीफ करता नहीं थकेला। खानो खानी खाली पेट भरन खातर को नहीं हुआ, खानो तो परिवार ने एक के सागे बिठार प्रेम बांटन रो बड़ो माध्यम हुए है। जद रसोई से अच्छी खुशबू आवे तो घर आंगन मायने खुशबू फैल जावे है। और आपने अब तो सावन रो महीनों चलन लाग रहे हो है और ये महीने रे मायने तो माटी जद बरस बिर खावे और माटी गिली होवे नी तो बिंगी कितनी सोंदी सोंदी खुशबू आवे है। तो ये सोंदी सोंदी खुशबू सो ही रलतो मिलतो एक चोको सो गीत सुना।

महीने रे मायने बहनों, राजस्थानी संस्कृति आपरे पूरे निखार रे मायने हुआ है। राजस्थान मायने सावन आवणे रो मतलब है बागा रे मायने हिंडो, हाथा रे मायने राती मेहंदी, मीठो घेवर और सतरंगी लहरियो। सावन प्रकृति और प्रेम रो अच्छो मेल है। जेठे मरुस्थली धरती मेहरे बादल सु आपरी प्रीत सुनावे है। उड़ जा रे भवरिया सावन आयो रे, मारी पीपली रे पान मरोड़, सावन आयो रे, सावन आयो रे।

चौमासे में चौरी चढ़नर सावण पुगी सासरे। चौमासे में चौरी चढ़र सावण पुगी सासरे। भरे बाद वे ढली जवानी आधी रहगी आसरे। मन रो भेद लुकाती नैना आंसूड़ा ढलकाती। मन रो भेद लुकाती नैना आंसूड़ा ढलकाती। रिमझिम आवे बिरखा बिंदनी। आ परदेशन पावणी जी पुल देखे नी भेड़ा। आड़ी जैरे आंगणे में करे मनारा मेला। झिरमिर गीत सुनाती भोले मनड़े ने भरमाती। छलती आवे बिरखा बिननी। लूम जूम मदमाती मन बिलखाती सो बलखाती। गीत प्रीतरा गाती हंसती आवे बिरखा बिननी। हंसती आवे बिरखा बिननी। झिरमिर गीत सुनाती भोले मनड़े ने भरमाती। छलती आवे बिरखा बिननी। बनो सावन रो महीनो ही ईसो यवे कि आपनो मन नाचवा ने करण लाग जवे और मन रे मायने खुशी सी हो वही है। और सावन रे महीने मायने आपरी बहन बेटिया आपने मेहंदी ना लगावे ओ तो हो ही नहीं सके। अरे वासा अब तो हवारे मायने भी एक सौंधी सौंधी खुशबू आवन लाग गिरी है। जब भी मेहंदी रो नाम आवे तो मारे गांवारी बहना काकी ताइया और बेटिया रा चेहरे माथे अपने आप ही एक मीठी सी मुस्कान आ जावे है। बनो आपने अठे कोई भी त्यौहार होवे, कोई भी तीज होवे, व्रत होवे, कोई भी शुभ काम होवे, शादी रो ब्याह रो, जिते तई मारी बहना रे हाथा रे मायने रची मेहंदी री लाली ना दिखे जब तक तो लागे ही कोनी की त्यौहार आयो है। मेहंदी सिर्फ एक रंग कोनी, मेहंदी तो सुहागरो प्रतीक है, खुशियारी चाबी है और अपनी राजस्थानी संस्कृति री पहचान है। बहनो अपना बडेरा कहम था कि मेहंदी रो महात्म्य सिर्फ सुंदरता सु कोनी, इंगे पीछे घना ही वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण भी होवे है। मेहंदी ने अपने अठे घणो ही शुभ मानो जावे। जद बेटी रो ब्याह होवे तो सबसे पहली रस्म मेहंदी री होवे। मानो जावे हातारे मायने मेहंदी रो रंग जितनो गहरो और लाल चढ़ैनी सासरी मायने भी बेटी ने उतनो ही घणो प्रेम और आदर भी मिला है। पर ओ तो चलो आजकल परिवार रे मायने व्यवहार सगला को अच्छो होवे, मीठो होवे, मुस्कान रखो चेहरे के मायने, सारा सागे हंस मिल रखो तो वो सासरो भी अपने आपनो घर ही लागे है। अपने राजस्थान रे मायने जद जेठ री गर्मी पड़े तो मेहंदी हाथा और पगा ने ठंडक भी पहुँचाउन रो काम करे है और इंग सु मन भी अपनो शांत रहे और तनाव भी दूर रहे है। और तनाव दूर हो सी तो दिल भी अपनो खुशनुमा हो जासी। अच्छो दिल और अच्छो स्वभाव सु सैकड़ों मित्र बने और सगला ने थारो इंतजार रहे। हंसता मुस्कुराता रहो क्योंकि मैं हूँ थारा सागर थारी आपरी बहन सीलू जी।

कार्यक्रम थार सामने प्रस्तुत करियो थारी आपरी बैंड सिलो जी जी। और जो फिर मिले सा जिते ताई आपरे घर परिवार रो ध्यान राखजो, आपरी बेटिया ने प्यार दीजो, हंसता मुस्कुराता रहजो और सुनता रहजो थारो आपरो मनपसंद रेडियो कार्यक्रम घर आंगण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें। लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।

0: लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
2: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
3: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
4: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026

0: इसके बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है, क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज़ दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन

0: की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाघ जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर की 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवाते हैं आक्रोश फिल्म से। आवाज अनुपम अमोद की है, गीत को लिखा है इर्शद कामिल ने और संगीत प्रीतम का है।

लीजिए अब सुनते हैं किक फिल्म से अगला गीत इरफान की आवाज़ में। गीत को लिखा है मयूर पुरी ने और संगीत हिमेश रेशमिया का है।

रब ने बना दी जोड़ी। जी हाँ, इस फिल्म से गीत सुन रहे हैं आप रूप कुमार राठौर की आवाज़ में। गीत को लिखा है जयदीप ने और संगीत सलीम सुलेमान का है।

ब्रह्मास्त्र फिल्म से अभी ये गीत सुन रहे हैं आप अरिजीत सिंह की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है अमिता भट्टाचार्य ने और संगीत प्रीतम का है।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है और श्रोता अभी फिल्म संगीत सुन रहे हैं। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं टू स्टेट फिल्म से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की है। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं और संगीत शंकर एहसान लॉय का है।

लीजिए अब सुनते हैं रांझना फिल्म से ये गीत। इस गीत को लिखा है इरशद कामिल ने, संगीत ए आर रहमान का है और आवाज़ें जावेद अली, कीर्ति और पूजा की है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मेहताब आलम से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर के बाग ज़िले में निहत्ते अफराद पर पाकिस्तानी फ़ौज के गोली चलाने से बेचैनी और बढ़ गई है। अब नए हुरमज़ में जहाज़ों पर फिर से हमले की वजह से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग ख़त्म कराने से मुतालिक अमन बातचीत पर गैर यकीनी बढ़ गई है। जनूबी कोरिया में शदीद गर्मी पड़ रही है, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती, और वहाँ दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है। आज चीते के बैन अक्वामी दिन के मौके पर भारत ने इनके तहफ़ के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया है, और आसान में कोरिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ती हुई बदमनी के दौरान मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने बाग ज़िले में निहत्ते शहरियों पर बराह रास्त फायरिंग की और उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी ने यह दावा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़मीनी सतह के मनाजिर की वीडियो जारी करते हुए किया। कमेटी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने मुजफ्फराबाद ज़िले के मकरी इलाके में शहरियों की मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। ये ताज़ा वाक़यात ऐसे वक्त पेश आए हैं जब पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में मुजाहरीन के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ शिद्दत अख्तियार कर गई हैं। इतलात के मुताबिक वहाँ गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान 50 से ज़्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़िद होने वाली यौमी आज़ादी की असल तकरीब की सदारत करेंगे और सलामी लेंगे। जनरल इंतजामिया महकमे की जानिब से डिवीज़नल कमिश्नर्स को जारी किए गए एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला मौसम गर्मा की राजधानी श्रीनगर में तकरीब की क़यादत करेंगे। तफसीलात के मुताबिक नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी जम्मू में होने वाली यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब में सलामी लेंगे, जबकि सकीना मसूद ईटू अनंतनाग की तकरीब की सदारत करेंगी। काबीना वज़ीर जावेद राना पूंछ में, जावेद डार बारामूला में और सतीश शर्मा कठुआ में यौम आज़ादी की तकरीब से सलामी लेंगे। वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी, जिन्हें काबीनी वज़ीर का दर्जा हासिल है, अपने आबाई ज़िला कुपवाड़ा में मुनक़िद होने वाले यौम आज़ादी की असल तकरीब से सलामी लेंगे। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक बादल फटने के कम से कम 35 वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिनमें तकरीबन 31 अफराद की मौत हो चुकी है और घरों, सड़कों, पुलों और सरकारी बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जम्मू के हमारे नामा निगार के मुताबिक सरकारी एदाद व शुमार से मालूम होता है कि यकम जून से जुलाई के वस्त तक बादल फटने के कम 22 वाक़यात दर्ज किए गए, जबकि जुलाई के दूसरे निसफ और अगस्त के आगाज़ में मुसलसल मूसलाधार बारिश के सबब मज़ीद कई वाक़यात पेश आए, जिससे बादल फटने के वाक़यात की मजमू तादाद 35 से तजावज़ कर गई। ज़्यादातर अमवात बादल फटने के अचानक सैलाब और बारिश से मिट्टी के तोदे खिसकने के बाईस हुई, जिनमें जम्मू डिवीज़न में सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा मुतासरा अज़ला में पूंछ, राजौरी, कठुआ, डोडा और किश्तवाड़ शामिल हैं, जबकि कश्मीर के कई इलाकों खासतौर पर शोपियां और कुपवाड़ा में भी हालिया हफ्तों के दौरान बार बार अचानक सैलाब आने के वाक़यात पेश आए हैं। आबनाए हुरमुज़ में एक तजारती जहाज़ पर फिर से हमले और बहर अहमर में एक तेल टंकर का रास्ता बदले जाने के बाद दुनिया में तवानाई की सप्लाई पर फिर ख़तरा मंडलाने लगा है। एक बारबरदार जहाज़ को आबनाए हुरमुज़ से गुजरते हुए निशाना बनाया गया। बरतानिया के बहरी तजारत से मुतालिक इदारे के मुताबिक इस जहाज़ को ओमान में अलखसब के लगभग 20 बहरी मील शमाल मशरक में निशाना बनाया गया और उसने एक हंगामी पैगाम भेजा। इसी दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान 5 महीने से जारी लड़ाई को ख़त्म कराने की गुफ्तगू के बारे में मतजाद बयान आ रहे हैं। ईरान के सदर मसूद पेजश्कियाँ ने कहा कि ईरान अपनी सरहदों का दिफा करेगा, लेकिन वो जंग को तौसी देना नहीं चाहता।

ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खबर मिली है कि जनूबी कोरिया के बहुत से हिस्सों में शदीद गर्मी पड़ रही है, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। बीसियों लोग गर्मी की वजह से बीमार पड़ गए हैं। कोरिया के मौसमियात के इंतज़ामिया के मुताबिक जनूब मशरक़ के शहर डेगू में दर्ज हरारत 40.9 सेल्सियस तक पहुँच गया है और इसकी वजह से 1 अगस्त 1942 का रिकॉर्ड टूट गया। उस वक्त दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। गोरियोंग काउंटी में कल दर्ज हरारत 41.2 रिकॉर्ड किया गया था। चीते को बचाने के बैन अक्वामी दिन के मौके पर भारत ने इनको बचाने और तहफ्फुज के लिए बहुत से इकदाम का ऐलान किया है। इन इकदाम में इन चीतों के लिए महफूज पनागाहें बनाना, जंगलाती रबते बहाल करना, साइंसी अंदाज में इनकी देखभाल और निगरानी और उन्हें बचाने के लिए मकामी अफराद को अख्तियार देना भी शामिल है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली से मुतालिक वजारत ने बताया है कि इस सिलसिले में शिमाली भारत में तरजीही

0: 14 जगहों की निशानदेही की गई है। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज आसाम, मेघालय, मगरबी बंगाल में हिमालय के जैली खित्ते और सिक्किम में तेज से इंतहाई तेज़ बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक अंडमान, निकोबार, जजायर, छत्तीसगढ़, साहली कर्नाटक, झारखंड, केरला, माहे और कर्नाटक के जनूबी अंदरूनी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक इसी तरह के हालात रह सकते हैं। खबर मिली है कि इथोपिया के अम्हारा खित्ते में शदीद बारिश की वजह से मिट्टी का तोड़ा गिरने से 14 अफराद हलाक और 7 दूसरे जख्मी हो गए। बहुत से अफराद लापता बताए जाते हैं और उनकी तलाश जारी है। मकामी इंतजामिया की मवासलाती दफ्तर के मुताबिक आफात से निपटने वाले मकामी इदारे के माहरीन की टीमों को इमदादी और बचाव कामों में हाथ बटाने के लिए तैनात किया गया है। नौजवानों की उम्र और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आलमी जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 में तमगा जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। तमगा जीतने वालों में सोने का तमगा हासिल करने वाली अनहत सिंह और कांसे का तमगा जीतने वाले भारतीय मर्दों की जूनियर टीम के आर्यावीर दीवान, यूषा नफीस और गुरुवीर सिंह शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर मांडविया ने नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि वो अपनी हालिया कामयाबी को एक तवील सफ़र की शुरुआत समझें, क्योंकि एशियाई खेलकूद 2026 और ओलंपिक गेम्स 2028 आने वाले हैं। 18 साल अनहत सिंह पिछले हफ्ते कनाडा में मुनक़िदा आलमी जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप में खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। इस मुकाबले में ये उनकी 5वीं शिरकत थी और आलमी चैम्पियनशिप में ये उनका दूसरा तमगा है। अमरीकी छत्र डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमरीका के साथ माहदा करने के लिए एक आखिरी मौका दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान पर एक मनसूबाबंद हमला उस वक्त मौखर कर दिया गया जब ईरान और खलीजी मुल्कों ने सफारतकारी जारी रखने की अपील की। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान पर एक बड़ा हमला करने के लिए तैयार था, ताहम सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त मौसूल होने के बाद ये कार्रवाई मुअख्खर कर दी गई। जनाब ट्रंप ने मजीद कहा कि अबनाए हुरमुज को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने के लिए बातचीत जारी है और कल तक इसके मुकम्मल हो जाने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि यह पहले मरहले की बातचीत का हिस्सा है, जबकि दूसरे मरहले में ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने पर तवज्जो दी जाएगी। दूसरी तरफ ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बाग़ची ने अमरीका के साथ बराह रास्त या बिलवास्ता मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि ईरान अमरीका के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं कर रहा है। बैडमिंटन में भारत के तुषार सुवीर आज कोरिया मास्टर 2026 से बाहर हो गए। वो क्वालिफाइंग मैच में जापान के शोगो ओगावा से हार गए। भारत की मर्दों की जोड़ी कृष्ण प्रसाद गर्ग और पृथ्वी कृष्णामूर्ति राय ने इफ्ताहिया दौर का अपना मैच जीत लिया है। आखिर में खास खबरें एक बार और। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाग़ ज़िले में निहत्ते अफराद पर पाकिस्तानी फ़ौज के गोले चलाने से बेचैनी और बढ़ गई है। अब नए हुरमुज में जहाज़ों पर फिर से हमले की वजह से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग ख़त्म कराने से मुतालिक अमन बातचीत पर गैर यकीनी बढ़ गई है। जनूबी कोरिया में शदीद गर्मी पड़ रही है जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती और वहाँ दर्ज हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है। आज चीते के बैन अक्वामी दिन के मौके पर भारत ने इनके तहफ़ के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया है और आसान में कोरिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मेरी पसंद। इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में उस आवाज़ का जिक्र करना चाहेंगे जिसने सबके दिलों को अपनी चुलबुली आवाज़ से, अपनी सहर आफरी आवाज़ से जीता था और उन दिलों पर राज किया था। आज बेशक वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन आज भी उनके चाहने वाले

और चाहने वालों के दिलों में वो हमेशा जिंदा हैं, जावेद हैं, और वो हैं किशोर कुमार। हिंदुस्तानी फिल्मी सनत के अजीम गुलकार, अदाकार और मौसीकार किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा एमपी में हुआ था।

दोस्तों किशोरदा का असल नाम आभास कुमार गांगुली था और वो अशोक कुमार के छोटे भाई थे। बगैर किसी क्लासिकी मौसीकी की तालीम के उसके बावजूद एक अपना अलग अंदाज, जिंदा दिल अंदाज और सहराफरी आवाज़ के दम पर हिंदुस्तानी मौसीकी की दुनिया में एक अलग नाम अपना बनाया।

शुरुआत में वो गुलुकार बनना चाहते थे, लेकिन उनके फिल्मी करियर का आगाज हुआ अदाकार के रूप में। ब्रेक मिला जिद्दी फिल्में, जो सन 1948 में मंजरेआम पर आई थी, उसमें उन्हें गाने का मौका मिला। और आप देखें कि बगैर किसी शुरुआती तालीम के, मौसीकी के, फिर भी उनकी आवाज़ का कोई सानी नहीं था। उन्होंने गायकी के अलावा बेहतरीन अदाकारी, फिल्म हिदायतकार भी थे और मौसीकी भी तरतीब दी, और यही वजह थी कि अपनी सहर आफरी आवाज़ और नगमों के लिए उनको 8 बार फिल्म फेयर एजाज से नवाजा गया। और खंडवा से बहुत मोहब्बत थी उनको, इश्क था। वो हमेशा कहते थे, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे, लेकिन उनका ये ख्वाब अधूरा रहा।

दोस्तों, उनकी सलाहियत की गुनागुनियत का सबूत यह है, 1962 में फिल्म आई थी हाफ टिकट। इसका एक नगमा आके सीधी लगी दिल पे जैसे, इसको किशोर दा ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाज़ों में गाया। ये नगमा एक बार में ही रिकॉर्ड कर लिया गया था और ये नगमा सुपरहिट भी हुआ। वजह ये थी कि लता मंगेशकर किन्हीं वजूहात के बिना से इस नगमे में अपनी आवाज़ नहीं दे पाई। तब किशोर दा ने ये कोशिश की और वो इस कोशिश में कामयाब हुए।

0: वो गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: ओ गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय

0: गोरी हो चल पीछा छोड़ हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय मुझको बना गए बावरिया आके सीधी लगी दिल में जैसे खटरिया ओ सवरिया

का दिया मध्यम न होगा, गजल का ये उजाला कम न होगा। मोहब्बत का दिया मध्यम न होगा। विशेष बखसूस वतन पर जान निसारी का ये जज्बा, वतन पर

शीर्ष किया है, दिलों में शक्ति गुंजाइश जब तक, दिलों में शक्ति गुंजाइश है जब तक, ताल्लुक कोई मुस्तहकम न होगा, ताल्लुक कोई मुस्ता

0: उजाला कम न होगा।
1: एक और गजल का मतलब, ऐसा मंजर कभी तो पाऊं मैं, ऐसा मंजर

0: दूसरों को नजर न आऊं मैं।
1: कलाम शायर के तहत सामीन अभी आप समाप्त फरमा रहे थे जनाब मुजफ्फर रजमी से उनका कलाम। मिर्जा दाग देलवी ने कहा था, सारे जहां में धूम हमारी जबां की है, और इस बात का सबूत यह है कि आज उर्दू जबान न सिर्फ बर सग़ीर में बल्कि समंदर के पार भी बहुत से ममालिक में बोली जाती है, पढ़ी जाती है और फ़रोग पा रही है। इसकी एक मिसाल यह है कि आज हम जो अफसाना आपको सुनवा रहे हैं उसकी तख्लीक़कार का ताल्लुक़ मॉरिशस से है। बीबी अबिनास जो इस अफसाने की तख्लीक़कार हैं मॉरिशस की रहने वाली हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम हासिल की और उसके बाद अब वापस जाकर मॉरिशस में उर्दू की खिदमात अंजाम दे रही हैं। आइए उनसे उनका अफसाना सुनते हैं, आबे हयात।
2: अगस्त का महीना था, दिल्ली में गर्मी इतनी कि दिन में 4-5 बार नहाने के बाद भी कोई खास असर नहीं पड़ता। बाहर निकलो तो 2 मिनट में सारा बदन पसीना पसीना हो जाए। प्यास इतनी कि जितना पानी पियो मिट्टी ही नहीं। मेरी जिंदगी के कुछ ऐसे ही हालात थे, सख्त मुश्किल और परेशानियों से घिरा हुआ। मैं उस वक्त सिर्फ 20 साल की थी। उन दिनों अचानक जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था। डिग्री 1 महीने पहले हाथ में आ गई थी। मैंने इंटीरियर डेकोरेशन में डिग्री हासिल की थी। आगे पढ़ने की ख्वाहिश तो दिल में रोशन थी, लेकिन पैसे कहाँ से आते? अब्बू तो रिटायर हो चुके थे, अरब तो अक्सर बीमार रहते थे और अम्मी सारा दिन उनकी देखभाल करती थी। अब्बू की पेंशन से तो किसी न किसी तरह घर के खर्च निकल आते थे और जो उनकी कुछ जमा की हुई रकम थी अब्बू की दवाई में निकल रही थी। ऐसी सूरत हाल में मेरा आगे बढ़ना नामुमकिन था। मैंने नौकरी करने की ठान ली, लेकिन नौकरी मिलनी इतनी आसान नहीं थी। ये बात पूरे 1 महीने ठोकरे खा खा के मालूम हुई। जिस कंपनी का दरवाज़ा खटखटाती, मुझे नाकामी, मायूसी और नाउम्मीदी के अलावा कुछ न मिलता। मैं ज़िंदगी से मायूस होने लगी थी। अगर मुझे नौकरी न मिली तो क्या होगा? ये बात सोच सोच कर मेरी आंखों की नींद हराम हो जाती। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से ये गर्मी जले पे नमक डालने का काम कर रही थी। उस साल तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। सब लोग इस बेकार मौसम को कोस रहे थे और दुआ कर रहे थे कि कब बारिश हो। मैं भी मुंतजर थी बारिश की। मुझे अपनी किस्मत के चमकने का भी इंतज़ार था। उस दिन की तस्वीर मेरे कल्बो जहन में इस कदर रच बस गई है कि ऐसा लगता है कि कल की बात हो। मैं हसबे मामूल घर से तलाश माश को निकली, तब अचानक चारों तरफ अंधेरा हो गया। आसमान की जानिब देखा तो काले बादल छाए हुए थे। मेरे दिल की धड़कनें एक सेकंड के लिए रुक सी गई। जो बात दिमाग में आ रही थी उसे बयान करने के लिए जबान साथ नहीं दे रही थी। फिर बिजली चमकी, बादल गरजा और बारिश की पहली बूंदे आसमान से उतरकर जमीन में जज्ब हो गई। उसके बाद इतनी जोर से बारिश हुई कि सड़कों पर पानी भर आया। लोग अपने घरों से निकलकर सड़क पर और छत पर खुशी से नाचते हुए नजर आ रहे थे। गली के बच्चे गंदे पानी में नाच रहे थे। कहीं से किसी नन्हे से बच्चे ने दुआ मांगी, अल्लाह मियाँ और पानी दो। मैं भी अपने इर्द गिर्द के माहौल में मस्त हो गई थी। इस आलम में बगैर कोई खास तवज्जा दिए रोड पार करने लगी। बीच सड़क में अचानक मेरा पैर फिसला। इतने में एक लाल रंग की गाड़ी मुझसे टकरा गई। जब होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया और फिर उस अजनबी ने मेरा नाम लिया। मिस आरिफा, आप अस्पताल में हैं, मैं आपको यहाँ लाया हूँ। आपका मेरी गाड़ी के साथ हादसा हुआ है। उसी वक्त पूरे बदन में शदीद दर्द का एहसास होने लगा। मेरे सर, मेरे हाथ, मेरे पैर और मेरे घुटने में पट्टियां थीं। काफी

मेरी चोटें आई थी, लेकिन खुदा का फजलो करम था कि कोई फ्रैक्चर नहीं था। अस्पताल वाले अजनबी का नाम इनायत था। मैं जब तक अस्पताल में थी अक्सर मिलने आते, फिर घर पर भी एक दो दिन मिलने आए। कभी खाली हाथ ना आते, कभी फल कभी फूल उनके हाथ में जरूर होते। फिर एक दिन इनायत साहब घर आए और कहने लगे, आरिफा मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी में काम करो। मैं तुमको इंटीरियर डेकोरेटर का ऑफर दे रहा हूं। मैंने तुम्हारे खाके देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम बहुत हुनरमंद हो, क्रिएटिव हो। मेरी कंपनी को तुम जैसी काबिल डेकोरेटर की जरूरत है। क्या तुम्हें मंजूर है? मैं खुशी के मारे फूली नहीं समाई। इनायत की कंपनी बहुत अच्छी थी। कंपनी में मेरे काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। उनमें से एक रोजी थी। एक दिन हम दोनों कैंटीन में साथ में लंच कर रहे थे, तब अचानक बातचीत का रुख इनायत की तरफ मुड़ गया। रोजी खुशी खुशी अपने सर की बात कर रही थी। इनायत सर की बदौलत आज हमारी कंपनी का शुमार हिंदुस्तान के गिने चुने कंस्ट्रक्शन कंपनियों में आता है। इनायत सर कितनी मेहनत व मशक्कत से काम करते हैं, हर काम को तकमील के साथ अंजाम देते हैं। आतिरा कितनी खुशनसीब है। वैसे दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है ना? आतिरा? आतिरा कौन? मैंने घबराहट में पूछा। अरे तुम्हें हमारे साथ काम करते हुए साल भर होने को आ रहा है और तुम आतिरा को नहीं जानती? वो इनायत सर की होने वाली बीवी है, दफ्तर में एक दो बार आ चुकी है, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। आतिरा का जैसा नाम है वैसे गुण, मुझे पूरा यकीन है वो इनायत सर के घर को खुशियों से महका देगी। रोजी आतिरा के गुण गा रही थी और मुझे अपने दिल के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के सवालात उठने लगे। इनायत ने मुझे आतिरा के बारे में क्यों नहीं बताया? इनायत और मेरी दोस्ती इस एक साल में और गहरी, मजबूत और पुख्ता हो गई थी। फिर मुझे आतिरा के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या वो मुझे गैर समझते थे? अब अचानक ऐसा लगने लगा कि मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूं, मेरा कोई नहीं है। गर्मी के दिन वापस आ गए थे और गर्मी के साथ फिर से वही परेशानियां वापस आ गई थी। मेरी जिंदगी एक बार फिर दर्द अंगेज बन गई थी। आरिफा आज रात की प्रेजेंटेशन तैयार है ना? मैंने चौंकर इनायत को देखा। जी सर बिल्कुल तैयार है, मैंने जवाब दिया। अरे चौंक क्यों गई? इनायत ने पूछा। कुछ नहीं, यूं ही। रोजी से मेरी बातचीत एक महीने पहले हुई थी। वो दिन था और आज का दिन है। तब से सब कुछ बदल गया। मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लगता। मुझे ये महसूस होता है कि मेरी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। जब से रोजी ने मुझे आतिरा के बारे में बताया, मैं रातों को सो नहीं सकती, रोती रहती हूँ। आज रात इनायत और मैं एक अंग्रेजी क्लाइंट के साथ नोएडा में शाम का खाना खाने जा रहे हैं। ये क्लाइंट नोएडा में हमारी कंपनी की मदद से एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना रहा है। इसका डेकोरेशन मेरे सुपुर्द है। इस सिलसिले पर गुफ्तगू शुनीद करने के लिए इनायत मुझे अपने साथ ले जा रहा है। मेरे दिल में कई दिनों के बाद खुशी की एक अजीब सी लहर दौड़ रही थी। इतनी चुप क्यों हो? इनायत ने पूछा। कुछ नहीं, यूं ही, मैंने खामोशी से जवाब दिया। कुछ नहीं, यूं ही, इनायत ने मेरी आवाज की नकल उतारते हुए कहा। इस पर मुझे हंसी आई और मैं जोर से हंसने लगी। बस हमेशा ऐसे ही हंसते रहना, तुम्हारी हंसी मौसीकी की तरह है, इनायत ने मेरी तरफ संजीदा लहजे में कहा। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, यूं ही, इनायत ने जवाब दिया। हम लोग इनायत की गाड़ी में नोएडा जा रहे थे और हम दोनों बिल्कुल चुप थे। इनायत ने एक बार फिर टोका। काफी दिनों से तुमको देख रहा हूं, इतनी गुमसुम सी क्यों रहने लगी हो? ऐसा लगता है आरिफा आरिफा नहीं है। कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूं। हमेशा नहीं रहोगे, बस यही प्रॉब्लम है, मैंने दिल ही दिल में कहा। लेकिन इनायत को देखकर मैंने सिर्फ इतना कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इनायत ने एक लंबी सी सांस ली, फिर मौजू बदलते हुए कहा। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, लगता है मौसम बदलने वाला है। काश ऐसा हो, गर्मी बहुत परेशान कर रही है। इतने में हम होटल पहुंच गए। डिनर बहुत अच्छा गया। क्लाइंट को मेरी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगी। अब तो बस काम शुरू करने की देर थी। अचानक

0: मौसलाधार बारिश होने लगी और देखते देखते हर जगह पानी ही पानी नजर आने लगा। इनायत और मैं डिनर के बाद खुशी खुशी दिल्ली वापस लौट रहे थे। पानी की वजह से गाड़ी चलानी मुश्किल थी, हवा भी काफी तेज चल रही थी। कुछ दूरी पर एक पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी और हमें बताया कि खराब मौसम की वजह से सड़क पर दरख्त गिर गए थे, जिससे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हमें मजबूरन गाड़ी में ही सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। बाहर इतना पानी था कि पैर नहीं रखा जा रहा था। बारिश हो तो मुश्किल, ना हो तब भी मुश्किल, इनायत ने कहा। आज रात की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। तुम हर चीज में अच्छी हो। जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो हर शय अच्छी लगने लगती है। मैं इसी तरह तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आरिफा, मेरी शरीके हयात बनोगी? इनायत के हाथों में एक अंगूठी थी जो वो मेरी तरफ बढ़ा रहा था। तो फिर आतेरा? मैंने हड़बड़ाहट में पूछा। आतेरा? आतेरा क्या? इनायत ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी शादी तो उससे होने वाली है, ऑफिस में सबको पता है। ये बात सच है कि हमारे घर वाले एक दूसरे को जानते हैं और इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ आरिफा। जब से मैंने तुमको देखा है तब से मेरी आंखों में तुम ही समाई हुई हो। मैंने अपने वालिदैन को तुम्हारे बारे में बताया है और वो राजी है। रहा आतिरा का सवाल, वो एक अच्छी दोस्त है और उसे तुम्हारे बारे में पता है। तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, लेकिन मैं फौरन हाँ न कर सकी। मेरे कानों में आतिरा के गुन रोजी की आवाज में गूंज रहे थे। मैं बेयकीनी की हालत में इनायत को फटी फटी आंखों से देखते ही जा रही थी कि उनकी बातों का एतबार करूं या ना करूं। लेकिन इनायत के चेहरे की नूरानी चमक यकीन का एहसास दिलाने के लिए काफी थी। और न जाने कब मेरे हाथ इकरार में इनायत के हाथों में चले गए। उसने लम्स के एहसास से मुझे चौंका दिया।
1: आबे हयात, अभी आप मोहतरमा बीबी अबिनाज से उनका यह अफसाना सुन रहे थे, और हसब मामूल अब यानी कि वादे के मुताबिक एक गज़ल आप तमाम सामईन की समातों की नज़र है शहाब खान की आवाज़ में, कलाम अमीर गज़लबाश का है।

0: मगर आपने तो कहा था कि
1: हीरा,
0: तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
1: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
0: और भला क्या काम हो सकता है?
1: और बहुत से काम हो सकते हैं।
0: जैसे?
1: कर सकोगे?
0: मैं हर काम कर सकता हूँ।
1: सोच लो।
0: सोच लिया।
1: और अगर न कर सके तो?
0: हार मान जाऊंगा।
1: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
0: क्या?
1: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
0: टोकरी?
1: मंजूर?
0: मंजूर। काम तो बताइए।
1: जरा सोच तो लूँ।
0: हाँ, हाँ।
1: वो देखते हो? वो?
0: हाँ, हाँ।
1: क्या?
0: मुर्गी?
1: हाँ, पकड़ लाओ।
0: मुर्गी?
1: हाँ।
0: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।

और लीजिए सुनिए, भाई भाई फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। मौसीकी मदन मोहन की।

खाएगा आपका बाल बच्चा, खा के देखो वेरी वेरी गुड, मेरा चार्ली बादाम पिस्ता। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का

पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा।

0: और ये है किशोर कुमार की आवाज़ में छुपा रुस्तम, फिल्म का नगमा नीरज का लिखा हुआ, मौसीकी एस डी बर्मन की।
1: ए समल सुर पकड़ के

ये फिल्मी नगमा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश झुमरू फिल्म का नगमा किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ। नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी और मौसीकी तरतीब दी खुद किशोरदा ने।

किधर जाता है? खबर, खबरदार, छुप छुप के क्यों छुप छुप के प्यार करे तू, बड़ा छुपा।

रंग हजार फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। मौसीकी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। और आपको सुनवाते हैं अपना देश फिल्म का दो गाना जिसमें किशोर कुमार का साथ दे रही हैं लता मंगेशकर, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकी आर डी बर्मन की।

जोर मचाए शोर फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। नगमा निगार थे इंद्रजीत सिंह तुलसी और मौसीकी तरतीब दी थी रविंद्र जैन ने। ओली जब सुनिए दोस्ताना फिल्म का नगमा आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा वर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम युवाणी के साथ। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कैसे विषय पर जो केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। लीजिए दोस्तों, वो विषय है युवा और पर्यावरण संरक्षण। दोस्तों, पर्यावरण केवल पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और जीव जंतुओं का समूह नहीं,

वह संपूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था है जिसके बिना दोस्तों जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हम जो हवा लेते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो हम पानी पीते हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो सब पर्यावरण की तो देन है दोस्तों। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, यहाँ तक कि कई जनों को पता भी नहीं होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लेकिन दोस्तों ये कुछ जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हैं जिससे हमारी पृथ्वी प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। जल संकट, जैव विविधता के ह्रास जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना पूरी दुनिया कर रही है। ऐसे समय में युवाओं की भूमिका बहुत ज़रूरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी है। दोस्तों पर्यावरण जो हमारे आसपास चारों ओर मौजूद प्राकृतिक वातावरण, आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जो हवा है, पेड़ पौधे हैं, भूमि है, जल, वनस्पति, ये सभी पर्यावरण में शामिल हैं। धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली बल्कि दोस्तों हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। दोस्तों हमें यह कथन याद दिलाता है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारा अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। आज पर्यावरण अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें वायु प्रदूषण, कारखानों का धुआं, वाहनों का उत्सर्जन और बढ़ती औद्योगिक गतिविधियां वायु को दूषित कर रही है। नदियों में औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक का बढ़ता यूज, विकास हो तो रहा है लेकिन दोस्तों जाने अनजाने में हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित भी कर रहे हैं। तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों प्लास्टिक भी आज धरती के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। नीचे जानते हैं युवा क्यों है ज़रूरी पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग के लिए। तो दोस्तों भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यदि युवा जागरूक हो जाए तो पर्यावरण संरक्षण का अभियान जन आंदोलन बन सकता है। युवाओं में ऊर्जा है, युवाओं में नवाचार है, युवाओं में परिवर्तन लाने की क्षमता है। दोस्तों युवा केवल भविष्य के नेता नहीं होते, वे वर्तमान के परिवर्तनकर्ता भी होते हैं। लीजिए एक छोटी सी प्रेरक कहानी के माध्यम से इस विषय को समझते हैं। एक गांव में रहने वाला राहुल नामक युवक अपने क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। शुरुआत में केवल 5 लोग जुड़े। धीरे धीरे पूरे गांव ने इस अभियान को अपनाया और 5 वर्षों में हजारों पेड़ लगाए गए। तो दोस्तों आज वही गांव हरियाली का उदाहरण बन चुका है। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए कि वे लोगों को जागरूक करें वृक्षारोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए, प्लास्टिक मुक्त अभियान में अपना सहयोग करें, एकल उपयोग प्लास्टिक का बहिष्कार करना चाहिए, जल जीवन का आधार है, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए, घर और विद्यालय में और आसपास के सार्वजनिक स्थलों में पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए, लोगों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करना चाहिए कि आने वाले समय के लिए हम पानी को स्टोरेज करके रख सकें। साथ ही साथ अपने आसपास साफ सफाई का भी ध्यान रखें। बिजली बचाना भी पर्यावरण संरक्षण ही है दोस्तों। अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद रखने चाहिए। अगर सोचो लाइट के कट्स ही ना हो, बिजली बंद ना हो, तो फिर अनावश्यक बिजली खर्च होती रहेगी। सोशल मीडिया, विद्यालयों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता भी फैलाई जा सकती है। दोस्तों आज के युवा टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। वे मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, जिससे वे पर्यावरणीय जागरूकता भी फैला सकते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में युवाओं

की भागीदारी भी आजकल बढ़ रही है। भारत सरकार और विभिन्न संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक अभियान भी चला रही है, जिसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे परियोजना, मिशन लाइफ, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इन अभियानों के जरिए भी युवा अपनी सक्रिय भागीदारी दे सकते हैं। दोस्तों, प्रदूषित वातावरण से अस्थमा, हार्ट डिजीज और भी कई अन्य बीमारियां बढ़ती है। स्वच्छ पर्यावरण का सीधा संबंध होता है स्वच्छ जीवन से। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी बेहतर स्वास्थ्य की नींव होता है। दोस्तों, हम भी संकल्प ले सकते हैं कि कम से कम 5 पौधे 1 महीने में तो लगा सकते हैं। पानी की बर्बादी नहीं करेंगे, प्लास्टिक का यूज़ कम करेंगे, आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। पेड़ लगाना भविष्य को जीवन देना है दोस्तों। स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन की पहचान है। धरती हमारी नहीं, हम धरती के हैं। हरियाली ही खुशहाली है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या संस्थाओं का काम नहीं दोस्तों, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, विशेष रूप से युवाओं की। क्योंकि आज जो निर्णय हम लेंगे, वही आने वाली पीढ़ियों का स्वरूप तय करेगी। न केवल प्रकृति से लाभ लेंगे, बल्कि उसकी रक्षा भी हम मिलकर करेंगे। लीजिए, हम सभी संकल्प लेते हैं। इसी संदेश के साथ इसी विषय को हम यही समाप्त करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को इस पहले गीत के साथ।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अब एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करेंगे जो केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। बुजुर्गों का सम्मान और वृद्धाश्रम सेवा, युवाओं की जिम्मेदारी। दोस्तों, किसी भी समाज की पहचान उसकी संस्कृति, उसके संस्कार और बुजुर्गों के प्रति उनके व्यवहार से होती है। हमारे बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं बल्कि वे अनुभव, ज्ञान, संघर्ष और जीवन मूल्यों की जीवित पाठशाला होते हैं। उन्होंने अपने जीवन का समय सर्वश्रेष्ठ अपने परिवार, समाज और देश के निर्माण में लगाया है, जो आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल फ़ोन के यूज़ में लगा रहे हैं। वही हमारे बुज़ुर्ग अपने परिवार में उस टाइम को स्पेंड किया करते थे। हालांकि आज टेक्नोलॉजी का युग है, सभी जानते हैं, सभी मानते हैं। आज जब वे जीवन के अंतिम पड़ाव है, तब उन्हें सम्मान, प्रेम, सुरक्षा और अपनत्व देना सभी का नैतिक कर्तव्य बनता है। दोस्तों, किसी भी समाज की महानता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वह अपने कमज़ोर और असहाय लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये पंक्तियाँ महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई। बुजुर्गों को अक्सर कमज़ोर समझ लिया जाता है, वास्तव में हमारे परिवार की सबसे मजबूत नींव होते हैं। उनके अनुभव हमें गलतियों से बचाते हैं और जीवन की कठिन परिस्थितियों में सही मार्ग दिखाते हैं। दोस्तों, आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में जीवन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। सभी अपने करियर, अपनी व्यवसाय, बिजनेस और अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के बुज़ुर्गों के लिए शायद समय निकालना कठिन होता जा रहा है। संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली, और जिसके परिणाम स्वरूप बुजुर्ग अकेलेपन, उपेक्षा और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियों में उन्हें वृद्धाश्रमों में भी रहना पड़ता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति सदैव माता पिता और बुजुर्गों के सम्मान की शिक्षा दे रही है। माता पिता और गुरु का सम्मान करना ही सच्चे संस्कारों की पहचान होती है। बुजुर्ग क्यों ज़रूरी है सभी के लिए? दोस्तों, बुजुर्ग परिवार के इतिहास, परंपराओं, संस्कारों के संरक्षक होते हैं। उन्होंने जीवन के अनेक संघर्षों का सामना किया होता है। आज तो इतनी मशीनें बन गई है, टेक्नोलॉजी बन गई है कि हर काम आसानी से, बहुत जल्दी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी

हम सभी के पास समय नहीं होता, और हमारे बुजुर्ग जो अपने हाथों से सारे काम करते थे बिना किसी मशीनों के, फिर भी वो आराम से अपना जीवन यापन करते थे और उनकी उम्र भी काफ़ी लंबी रहती। दोस्तों, जब कोई युवा असफलता से घबराता है तो दादा दादी नाना नानी का एक अनुभव फिर से खड़ा कर सकता है। उनकी कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं होती बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अनुभव ही हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है, और बुजुर्ग अनुभव का अथाह सागर होते हैं। युवाओं की क्या जिम्मेदारी बनती है दोस्तों, युवाओं को चाहिए कि वे अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताए, उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याओं को सुने। सम्मान केवल शब्दों से नहीं होता दोस्तों, बल्कि व्यवहार से प्रकट होता है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, उनकी सलाह को महत्व दें। एक छोटी सी मुस्कान, कुछ समय की बातचीत और स्नेह भरा व्यवहार किसी बुजुर्ग के जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है। वृद्धाश्रम सेवा का महत्व लीजिए, तो जान लेते हैं दोस्तों। वृद्धाश्रम केवल रहने की जगह नहीं होती बल्कि उन लोगों का आश्रय बनते हैं जिन्हें किसी कारणवश परिवार का साथ नहीं मिल पाता। ऐसे स्थानों पर जाकर सेवा करना एक महान मानवीय कार्य है। युवा यदि समय समय पर वृद्धाश्रमों में जाकर बुजुर्गों से मिले, उनके साथ समय बिताए, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करें, तो पता नहीं कितनी हजारों ब्लेसिंग्स उनके साथ जा सकती है। उनकी आवश्यकताओं में सहयोग करें और उनके जीवन में खुशियाँ लाई जा सकती है। दोस्तों, सेवा ही वह भाषा है जिसे हर हृदय समझता है। लीजिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस विषय को समझते हैं। एक युवक हर रविवार को वृद्धाश्रम जाता था। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा खिड़की के पास बैठे रहते थे। युवक उनसे बातें करता, उनकी कहानियाँ सुनता, उनके साथ चाय पीता। उसे संडे को ही टाइम मिलता था। जब भी उसे लगता कि आज मैं फ्री हूँ, वह चला जाया करता था। एक दिन युवक ने पूछा, दादाजी आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात से मिलती है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तुम यहाँ आते हो तो मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। उस दिन युवक को समझ आया कि मैं भी बुजुर्ग बनूंगा, और कभी-कभी किसी को दिया गया समय सबसे बड़ा उपहार होता है। बुजुर्ग पेड़ की छाया की तरह होते हैं, जिनके रहते जीवन की धूप कम चुभती है। बड़ों का आशीर्वाद वह पूंजी है जो जीवन भर साथ रहती है। दोस्तों, बुजुर्ग हमारे अतीत की विरासत और भविष्य के मार्गदर्शक हैं। उनका सम्मान करना केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों का मान रखना भी होता है। तो आइए संकल्प लें कि हम अपने घर, परिवार, समाज के प्रत्येक बुजुर्ग का सम्मान, प्रेम और अपनापन देंगे। वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों के जीवन में खुशियों की रोशनी पहुंचाने का कम से कम एक प्रयास तो कर सकते हैं। जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वही समाज वास्तव में सभ्य और समृद्ध कहलाता है। तो लीजिए दोस्तों, बातें तो हम और भी करेंगे, बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में युवाणी कार्यक्रम का अगला फिल्मी गीत।

दोस्तों, शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर दे, जीवन को नई दिशा दे। भारत एक युवा राष्ट्र है जहाँ विकास की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी हमारे देश में लाखों बच्चों ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधा से वंचित है। ऊंची ऊंची इमारतों और आधुनिक शहरों के बीच बसी ये बस्तियां हमें यह याद दिलाती है कि विकास तभी सार्थक

होगा जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित और जागरूक होगा। लीजिए बात करते हैं एक ऐसे विषय पर झुग्गी झोंपड़ियों में शिक्षा प्रसार, ईच वन टीच वन कार्यक्रम। जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। उनके सामने रोजी रोटी कमाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में बच्चों को शिक्षा अक्सर प्राथमिकता नहीं बन पाती। परिणाम स्वरूप उनके बच्चे बाल श्रम, अशिक्षा, गरीबी और सामाजिक पिछड़ेपन जैसी समस्याओं से जूझते चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में टीच वन ईच वन यानी एक बढ़ाओ कार्यक्रम आशा की एक नई किरण बनकर सामने आता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति कम से कम एक अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित करने का संकल्प ले। यदि देश का हर पढ़ा लिखा नागरिक यह जिम्मेदारी निभाए तो शिक्षा का प्रकाश समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकता है। दोस्तों, आज के युवाओं के लिए यह केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का अवसर है। युवाओं की ऊर्जा, युवाओं का उत्साह और सामाजिक चेतना झुग्गी झोंपड़ियों में शिक्षा की क्रांति ला सकते हैं। शिक्षा केवल अक्षर का ज्ञान नहीं दोस्तों, यह व्यक्ति के सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकास करती है। मनुष्य को सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। दोस्तों, जब कोई बच्चा शिक्षित होता है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज का भविष्य बदल जाता है। शिक्षा गरीबी दूर करने, सामाजिक असमानता कम करने और राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। दोस्तों, हमारे देश में अधिकांश महानगरों और बड़े शहरों में झुग्गी झोंपड़ियाँ देखने को मिलती है। दुनिया भर में हर शहरों में मिल सकती है आपको। वहाँ रहने वाले लोग दिहाड़ी मजदूरी, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक या छोटे व्यवसाय से जुड़े होते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यवसाय छोटा या बड़ा नहीं होता, बस ज़रूरत होती है मेहनत करने की। और इन बस्तियों में कुछ समस्याएं होती हैं जिनमें गरीबी, अशिक्षा, बाल श्रम, सामाजिक जागरूकता का अभाव या फिर विद्यालयों से दूरी। इन परिस्थितियों में बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है और अनेक बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या फिर कभी-कभी स्कूल जा ही नहीं पाते। झुग्गी झोंपड़ियों में शिक्षा की चुनौतियां हैं आर्थिक तंगी, बाल श्रम, अभिभावकों की शिक्षा, संसाधनों का अभाव। दोस्तों, किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म, डिजिटल संसाधन ये सभी उपलब्ध नहीं हो पाते तो बच्चे कैसे स्कूल जा सकते हैं? शिक्षा का प्रसार क्यों जरूरी है? यदि झुग्गी झोंपड़ियों में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तो गरीबी और शिक्षा का चक्र चलता ही रहेगा, चाहे वह हमारा भारत हो या फिर पूरी दुनिया। शिक्षा बच्चों को बेहतर रोजगार, बेहतर जीवन, बेहतर अवसर प्रदान करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना स्वतंत्रता के समय था। दोस्तों, ईच वन टीच वन कार्यक्रम क्या है? इट मीन्स एक व्यक्ति कम से कम एक अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित करे। यह कार्यक्रम समाज में शिक्षा के प्रसार को जन आंदोलन बनाने का प्रयास है। इसका उद्देश्य हर शिक्षित नागरिक शिक्षा की जिम्मेदारी को केवल सरकार पर न छोड़े बल्कि स्वयं भी अपना योगदान दे। यदि एक बच्चा एक दूसरे बच्चों को पढ़ाए और वह बच्चा आगे किसी अन्य बच्चों को पढ़ाए तो शिक्षा की यह श्रृंखला निरंतर आगे बढ़ती चली जाएगी। ईच वन टीच वन

कार्यक्रम के उद्देश्यों में निरक्षरता समाप्त करना, शिक्षा को जन आंदोलन बनाना, समाज में जागरूकता बढ़ाना, गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना और राष्ट्र निर्माण में अपनी जन भागीदारी बढ़ाना। दोस्तों, हमारे देश की लगभग आधी आबादी तो युवा ही है, इसलिए शिक्षा के प्रसार में युवाओं की भूमिका बहुत ज़रूरी है। तो युवा क्या कर सकते हैं, अपने कुछ टाइम में से 1 घंटा बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पुरानी पुस्तकें दान कर सकते हैं, निःशुल्क कोचिंग करा सकते हैं या फिर डिजिटल शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं जो निःशुल्क हो, अभिभावकों को जागरूक कर सकते हैं। एक कॉलेज छात्र प्रतिदिन अपने घर के पास स्थित झुग्गी बस्ती से गुजरता। उसने देखा कि कई बच्चे दिन भर खेलते हैं और स्कूल नहीं जाते। उसने सप्ताह में 5 दिन 1-1 घंटे पढ़ाने का निर्णय लिया। शुरुआत केवल 5 बच्चे आए थे, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और बच्चे करीब 50 के लगभग हो चुके थे। दोस्तों, कुछ वर्षों बाद उन्हीं बच्चों में से कई स्कूल में अव्वल आए, कुछ कॉलेज में और कुछ सरकारी नौकरियों में भी चयनित होते गए। दोस्तों, एक व्यक्ति का छोटा प्रयास अनेक परिवारों के जीवन में बदलाव ला सकता है। झुग्गी झोपड़ियों में लड़कियों की विशेष शिक्षा में भी महत्व रखता है। यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक महिला व्यक्ति भी शिक्षित होना चाहती है। यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। दोस्तों, हमें नहीं पता कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों में से भी कई बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे बड़े व्यक्तियों को देखकर, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उनके सपने अधूरे रह जाते हैं सिर्फ आर्थिक मजबूरियों के कारण। बस उन्हें ज़रूरत होती है सहायता की। डिजिटल माध्यमों से भी, मोबाइल और इंटरनेट ने आजकल काफ़ी आसान कर दिया है शिक्षा को। उनके माध्यम से भी युवा ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा, शैक्षिक वीडियो द्वारा, ई बुक्स और मोबाइल ऐप्स के जरिए भी सहायता पहुंचा सकते हैं। शिक्षित नागरिक जागरूक होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, सामाजिक समरसता बढ़ाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर शिक्षा की इस मिसाल को आगे बढ़ाएं, ईच वन टीच वन कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाएं। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति केवल 1 बच्चे को पढ़ाने का संकल्प ले तो कितने जीवन बदल सकते हैं। झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे भी हमारे समाज का हिस्सा बन सकते हैं, देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत।

आप सुन रहे हैं युवाणी कार्यक्रम कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित। मेगावाट 918 किलो हर्ट्स, DRM 909 किलो हर्ट्स, FM 100.1 मेगा हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।

दोस्तों, लीडर वह नहीं कि आप कितने लोगों को आदेश देते हैं, बल्कि लीडर वह होता है कि कितने लोगों को सही दिशा दिखाते हैं। आज समय तेजी से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी, शिक्षा, रोजगार और समाज, हर क्षेत्र में नए नए बदलाव आ रहे हैं। आजकल मशीनों में भी नए नए बदलाव आ रहे हैं। पहले एक छोटा सा फ़ोन चलता था, धीरे धीरे 5G, 4G, पता नहीं कौन कौन से फ़ोन, जिससे कितने सारे ऐप्स बन गए। और ऐप्स में भी आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, वॉइस चैट, वीडियो कॉल, कहीं भी आप किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं।

हर क्षेत्र में नए नए बदलाव आ रहे हैं। ऐसे समय में युवाओं के लिए केवल पढ़ाई करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सही निर्णय लेना, आत्मनिर्भर बनना और समाज में सक्रिय भूमिका निभाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। इन्हीं ज़रूरतों को समझते हुए लीडरशिप बूट कैंप जैसे कार्यक्रमों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। दोस्तों, यह एक ऐसा प्रशिक्षण मंच है जहाँ युवाओं को नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का अभ्यास कराया जाता है। लीडरशिप बूट कैंप एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम है दोस्तों, जहां युवाओं को सिखाया जाता है कि सही निर्णय कैसे लें, टीम में कैसे काम करें, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, समस्याओं का समाधान कैसे करें, समाज में जिम्मेदारी कैसे निभाएं। यह कोई सामान्य क्लास नहीं दोस्तों, बल्कि यह एक लाइफ ट्रेनिंग होती है जहाँ व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। आज के समय में हर व्यक्ति को रोज छोटे बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे कि क्या पढ़ाई चुनें, कौन सा करियर अपनाएं, समय का यूज़ कैसे करें, गलत और सही में फ़र्क कैसे करें, समाज में क्या योगदान दें। दोस्तों, अगर निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो तो व्यक्ति गलत दिशा में जा सकता है, लेकिन अगर यही क्षमता मजबूत हो तो व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो निर्णय लेने की क्षमता कैसे विकसित कर लीजिए जानते हैं। सोचने की आदत डालें, किसी भी काम को करने से पहले सोचें उस पर कि इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या यह काम सही है, क्या यह हमारे भविष्य के लिए अच्छा है, और इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। अधूरा ज्ञान दोस्तों गलत निर्णय ले सकता है, इसीलिए किसी भी विषय के लिए या फिर कोई भी काम हो, हमेशा पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उस काम को करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता दोस्तों। हाँ, लास्ट में अंतिम निर्णय खुद ले सकते हैं, लेकिन बड़ों और अनुभवी लोगों की सलाह भी बहुत ज़रूरी है। क्या पता उनकी सलाह से कुछ और अच्छा काम किया जा सके, या फिर कुछ अच्छी उनसे हेल्प मिल सकती है। गलतियां निर्णय भी हमें सिखाती है कि आगे क्या करना है, इसलिए दोस्तों गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए। लीजिए कार्यक्रम में अगला गीत सुनाते हैं, उसके बाद इसी विषय पर हम और बात करेंगे।

दूसरे गीत से पहले हम बात कर रहे थे लीडरशिप बूट कैंप के बारे में। लीजिए उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उसके बारे में कुछ और बातें। दोस्तों, लीडरशिप बूट कैंप में क्या सिखाया जाता है जानेंगे। वहाँ सिखाया जाता है खुद पर भरोसा कैसे करें, यानी आत्मविश्वास, टीम वर्क, समस्या समाधान, टाइम मैनेजमेंट और कुछ लीडरशिप स्किल्स। युवा केवल अपने लिए नहीं जीते बल्कि पूरे समाज का भविष्य होते हैं। युवा कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाई में मदद, समाज में जागरूकता फैला सकते हैं, नशा और गलत आदतों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं, असली पढ़ाई वह है जो हमें जीना सिखाए। एक अच्छा छात्र जो सही विषय चुने, समय पर पढ़ाई करे, अपनी टाइम को मैनेज करके रखे, अपने लक्ष्य को समझे और भविष्य के लिए योजना बनाए और नेतृत्व का असली अर्थ होता है दूसरों को प्रेरित करना, सही रास्ता दिखाना, मुश्किल समय में आगे बढ़ना और सभी टीम को साथ लेकर चलना। जो खुद पर विश्वास करता है वही आगे चलकर एक अच्छा लीडर बनता है। आज आप सभी युवाओं साथियों के लिए संदेश कि आज आप सभी के पास सबसे बड़ी ताकत है कि आप फिट हैं। आप एक ऐसी उम्र में हैं, ना आप बच्चे हैं ना आप बुजुर्ग हैं। आपका समय और आपकी ऊर्जा आपके पास है। अगर आप चाहें तो अपने जीवन को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। और लीडरशिप बूट कैंप हमें यही सिखाता है कि सोचो, समझो, निर्णय लो और आगे बढ़ो। आप केवल छात्र नहीं, आप भविष्य के नेता हैं।

दोस्तों, इतिहास केवल बीते हुए समय का लेखा जोखा नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण की प्रेरणा भी होता है। जो राष्ट्र अपने इतिहास को याद करता है, वही उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। लीजिए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन महाराणा उदय सिंह द्वितीय उदयपुर नगर के संस्थापक का जीवन और मेवाड़ के इतिहास में उनका योगदान। 4 अगस्त यानी आज ही के दिन के इतिहास लेखों में विशेष रूप से स्मरण किया जाता है। राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी क्षेत्र की अनेक ऐतिहासिक घटनाएं जो इस माह में घटित हुई, जिनका संबंध राजपूत शौर्य और स्वाभिमान से जुड़ा रहा है। 1984 में आज ही के दिन अफ्रीकी देश अपर वोल्टा का नाम चेंज करके बुर्किना फासो रखा गया। आज ही के दिन 1870 में ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। दोस्तों, आइए इन इतिहास की इन घटनाओं से प्रेरणा ले कि अपने वर्तमान को बेहतर बनाकर भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं हम।

लीजिए दोस्तों, आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं तक समाप्त करने की पूजा वर्मा को दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्ज पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 6 बजे हैं कार्यक्रम। विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिराय की। 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। तत्पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से रिले किए जाएंगे।

संध्या 7 बजे किसानवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर से अनुप्रसारित किया जाएगा। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। 8:15 पर कार्यक्रम सुनिएगा एक ही फिल्म से।

स्पोर्ट्स कैन रात्रि 8:30 पर यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। समाचार संध्या आप सुना करते हैं रात्रि 8:45 पर।

राजस्थानी लोकगीतों लोक भजनों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर, रात 10 बजे आपणों राजस्थान कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर से अनुप्रसारित किया जाएगा।

श्रोताओ, हमारी प्रसारण सभा का समापन होता है रात्रि 11:10 पर। प्रातः 5:50 पर सभा का शुभारंभ होता है। वंदे मातरम और प्रारंभिक उद्घोषणा के साथ मंगल ध्वनि से प्रातः 6:10 पर आप सुनते हैं भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदना। 6:45 पर आप सुना करते हैं चिंतन।

कार्यक्रम विवरण आप सुना करते हैं प्रातः 6:50 पर। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम, उनका विवरण और प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

ऑल इंडिया रेडियो दा सराइकी प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर अज तुहाडे कीते घिन की आई हाँ कुछ बातां कुछ गीत, जिस विच असां तुहाडे नाल गालां भी करेंदे हन ते पंजाबी गीत भी सुनवेंदे हन। सब तो पहला मैं तुहाकूं सुनवेंदी हाँ एक गीत, गावण वाले हन हरभजन मान।

रखो। घरों बाहर खा रहे हो वो, ता ध्यान देवो कि खाना घटिया घ्यू तेल चेता नहीं बनया है। नकली मसाले, बारिश से भिजे दाला छोले, कणक, मैला पानी रला के बनाया भोजन, ए सारा कुछ सेहत किते बहु वड्डा खतरा है। बीमारियां को बुलावा देवन आली गाल है। खेतां तो घिना के साड़ियां प्लेटां ते कण आवन आली हर शय सुरक्षित थीवनी चाहिदी है। ते हुण एक गीत सुने सा, कुलदीप माणक दी आवाज विच।

गीत तुहा को पसंद आया होसी। कलाकार हन कुलदीप माणक। सिराय की भैणो भरावो, आजकल लड़ाई झगड़े बहु वधेंदे पए हिन। आखा वेंदा कि लोगों इच धीरज कैनी, जदन के धीरज हर तकलीफ दा हल है। पर होंदा की है, लोग छोटी जही गाल ते झगड़न लग पौंदे हिन। सड़क ते जरा कु अगू टक्कर थी जावे ते लोग केड़ियां गालां कढ़ेंदे, मारण ते उतर आवंदे हिन। हुण कै को आखे इस तरह ना करो, कुछ तां धीरज रखो। कावड़ नाल दा झगड़ा बिया वधेंदा है, प्यार नाल गाल मुक वंजे तां झगड़ा होंदा ही कै नी। कावड़ तां आवदा है, पर नुकसान भी तां अपना ही होसी, के फायदा। बाबा फरीद कहंदे हिन, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग न लग गई, पल्ले सब किछ पाए। केड़ी चंगी गाल आखी है शेख फरीद ने, के कावड़ नाल रोग लगेंदे हिन। अजकल तुसा डेधे बीपी शुगर हां को लगन आले रोग, ये सारा कावड़ नाल ही थींदे पए हिन। धीरज जो कहनी, धीरज नाल प्रेम वधेंदा है, रिश्ते वधेंदे हिन। आखा वेदा कि परिवार तू घिन के पूरे संसार तीकण शांति ताही आसी, जदन धीरज होसी। ते हुण वारी है गीत दी। गीत है एक मेरी आख काशनी, दूजा रात दे उनींदरे ने मारिया, शीशे ते तरेड़ पै गई, वाल वांदी ने ध्यान जदो मारिया। गायिका हिन सुरिंदर कौर।

0: ਦਾ ਲੱਗਾ ਸਾਕੂ ਖਤ ਗਾਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिराय की। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या की 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कई बार बाधित। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 5 सालों में 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,55,00,000 से अधिक छोटे उद्यमी लाभान्वित। और उत्तरी पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। अगले 2 दिन भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर शोर शराबा किया। राज्यसभा के सभापति सीबी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते। अपनी तरफ ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, किंतु विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठा लिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू

0: चालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसमें टैक्स, डिजिटल भुगतान और निपटान प्रणाली के नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एकीकृत खुफिया आधारित प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है। सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई कानून भी नहीं था। मंत्रालय ने बताया कि 2004 से 2013 के बीच भारत औसतन हर साल केवल 4 भगोड़ों का प्रत्यर्पण कर सका, जबकि 110 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित रहे। पिछले 3 वर्षों में इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने में काफी बढ़ोतरी हुई है और 401 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार ने भारत पोल की शुरुआत की, जिसके माध्यम से 1400 से अधिक एजेंसियों को इंटरपोल से जोड़ा गया। इससे सूचना साझा करने में लगने वाला समय घटकर 3 से 10 दिन हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़े अपराधियों के मुद्दे को देश की संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 16 अगस्त को अलवर आने का कार्यक्रम है। अपने इस दौरे में श्री शाह करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सरस डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। वे अलवर मेडिकल कॉलेज के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज उन्होंने कहा कि यह योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, इससे स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने में गति मिली है। उन्होंने बताया कि 25,000 से ज्यादा केंद्रीय और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 2,18,000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस योजना के माध्यम से छोटे उद्योगों, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों, दुकानदारों, कारीगरों और उद्यमियों को बिना गारंटी संस्थागत वित्त पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 60% हिस्सेदारी के साथ इस योजना में महिलाओं की बढ़ चढ़ कर भागीदारी रही है। अब तक 1,54,00,000 से अधिक महिलाओं को 67,982 करोड़ से अधिक का ऋण मिला है। देश भर में इस साल जून महीने तक योजना के तहत 59 करोड़ से ज्यादा लोगों के ऋण मंजूर किए गए हैं। गौरतलब है कि यह योजना साल 2015 में शुरू की गई थी। इसमें लघु उद्यमों को 20,00,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इससे स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करते हुए सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए एक मजबूत माध्यम के रूप में उभरा है। उत्पादों को उनके मूल स्थान से जोड़कर जीआई टैग पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते

0: हैं, दुरुपयोग को रोकते हैं और उपभोक्ता के विश्वास को बढ़ाते हैं। राजस्थान में 24 विभिन्न उत्पादों को GI टैग्स मिल चुके हैं। पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालेया गाजी की एक रिपोर्ट।
1: GI टैग कारीगरों, बुनकरों, किसानों और उत्पादक समूहों को बेहतर बाजार पहचान हासिल करने और प्रीमियम बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करते हैं। जोधपुरी मोजड़ी, नागौरी अश्वगंधा, कैर सांगरी, बीकानेरी भुजिया, ब्लू पॉटरी, कठपुतली और कोटा डोरिया सहित राजस्थान के कई ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग मिल चुका है। GI टैग प्रोडक्ट की पहचान को मजबूती देता है, साथ ही कानूनी सुरक्षा देता है और ये भी बताता है कि उसकी खासियत मूल इलाके से जुड़ी है। सरकार की पहल, वित्तीय सहायता, निर्यात संवर्धन, पर्यटन एकीकरण और समर्पित विपणन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनका इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है। ये प्रयास GI टैग उत्पादों को ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और निर्यात आधारित विकास के वाहकों के रूप में बदल रहे हैं।
0: और अब मौसम। राज्य के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर परिसंचरण तंत्र में बदल गया है। इससे अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का अलग अलग रूप देखने को मिल सकता है। कहीं मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं तो कहीं उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। इसके असर से भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। वहीं 6 से 8 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान में नए परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने से मध्यम से तेज बरसात के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और फलौदी में बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। इससे उमस भरी गर्मी बनी रह सकती है।
2: 6-7 अगस्त को एक नया परिसंचरण तंत्र पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बनने की संभावना है। इससे एक नया बारिश का स्पेल जो है वो 7-8 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में फिर से शुरू होगा। 7-10 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर के अलावा अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं भारी और एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं इसके अनुसार आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। वही पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में आगामी 3-4 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना।
0: हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पाली के भावरी गांव के खेल मैदान में सघन पौधारोपण किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए हैं और उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया है। उधर जैसलमेर को हरा भरा बनाने के मकसद से नाचना ग्राम पंचायत में हरियाला सावन अभियान का शुभारम्भ किया गया। इसके तहत अब तक 1,000 पौधे लगाए गए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे ईंधन में मिलावट के दावों का खंडन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियां नियमित रूप से ईंधन की गुणवत्ता की निगरानी करती हैं। मंत्रालय ने कहा कि पहले से लागू उन्नत और विस्तृत परीक्षण प्रोटोकॉल के अतिरिक्त 87,000 से अधिक आउटलेट्स में दिन में लगभग 8 से 12 बार जल रिसाव परीक्षण सहित अतिरिक्त जाँच शुरू की गई है। मंत्रालय ने बताया कि क्लोराइड और सल्फाइड के लिए 2,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिनमें से अब तक पूरे देश में केवल 2 मामलों में क्लोराइड मिलावट पाई गई है और उन पंपों से बिक्री तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी खुदरा आउटलेट में संदूषण या मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि OMC को पूरी ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी संभावित मिलावट का पता लगाने के लिए सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कई बार बाधित। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 5 सालों में 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,55,00,000 से अधिक छोटे उद्यमी लाभान्वित और उत्तरी पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। अगले 2 दिन भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन

0: समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण कुमार शर्मा ने तैयार किया है। समूचा जिला इन दिनों धार्मिक रंग में रंगा हुआ है। श्रावण मास के दौरान जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था देखने को मिल रही है। सुबह से देर शाम तक मंदिरों में पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। घरों और प्रतिष्ठानों में भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच मॉनसून की बेरुखी और कम सक्रियता किसानों की चिंता का कारण बनी हुई है। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई तो कर दी है, लेकिन अभी भी अच्छी वर्षा का इंतजार है। कृषि विभाग भी मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसानों को आवश्यक सलाह दे रहा है। आकाशवाणी बीकानेर क्लस्टर के उप महानिदेशक RL असवाल ने आकाशवाणी चूरू केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र पर किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग से आकाशवाणी के कार्यक्रमों को अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता है। इस अवसर पर आकाशवाणी चूरू के कार्यक्रमों और नई योजनाओं की जानकारी दी गई। परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया तथा नव निर्मित वॉलीबॉल कोर्ट का शुभारंभ भी हुआ। जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में रोजगार विभाग की ओर से युवा संबल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 727 युवाओं का पंजीयन हुआ, जिनमें से 541 युवाओं ने विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को साक्षात्कार दिया। चयन प्रक्रिया के बाद 283 युवाओं का रोजगार के लिए चयन किया गया। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मेले का उद्घाटन करते हुए युवाओं से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उद्यान विभाग जिले में फलोद्यान विकसित करने के लिए किसानों को अनुदान उपलब्ध करा रहा है। जिले के अनेक किसान इस योजना का लाभ लेकर पारंपरिक खेती के साथ फल बगीचे विकसित कर रहे हैं। विशेष रूप से तारानगर क्षेत्र के किसानों को इससे आय बढ़ाने में मदद मिली है। विभाग किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों के बारे में भी जानकारी दे रहा है। उधर कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से जिले के 50 किसानों का दल गुजरात के कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों के अध्ययन भ्रमण पर रवाना किया गया है। किसान वहां आधुनिक खेती, जल प्रबंधन और कृषि नवाचारों की जानकारी लेकर जिले में नई तकनीकों को अपनाने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चूरू में गंग नहर स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि गंग नहर केवल सिंचाई परियोजना नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास का आधार रही है। उन्होंने जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन पर भी बल दिया। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। जिला जन अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक हाल ही में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े जनहित के मामलों पर सुनवाई की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में प्राप्त अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे परिवादियों को राहत मिली। करगिल विजय दिवस पर जिले में विभिन्न स्थानों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। चूरू मुख्यालय के शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जबकि सादुलपुर में भूतपूर्व सैनिक संघ की ओर से वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। सादुलपुर क्षेत्र के मुंदीताल गांव में धानक समाज ने सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समाज ने मृत्यु भोज की परंपरा बंद करने का संकल्प लिया है। समाज के लोगों ने इस निर्णय को सामाजिक जागरूकता और अनावश्यक खर्च रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। जिले के लंबोर खेड़ी गांव के निवासी और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में अरुणाचल प्रदेश में तैनात जवान का ड्यूटी के दौरान हादसे में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। गांव में इस अवसर पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इसी के साथ चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंझा भगतरा प्रादेशिक।

0: प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार। संसद रा दोनों सदना री कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा सदस्यों रा हंगामा रे कारण कई दफा रोकी जी। गृह मंत्रालय कयो लारला पांच साल में 36 देशों 274 भगोड़ा अपराधियों ने पाछा लाई जिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे तहत प्रदेश में अजय ताई 2,55,00,000 बत्ती छोटा उद्यम ने फायदो मिलियो और उत्तरी अगुणी राजस्थान एर आर्य सारेरा हल्का में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। आवता दो दिन भरतपुर बीकानेर और जयपुर संभाग में हल्काओं मजला दर्जारी बिरखारा आसार। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। संसद रा दोनों सदना री कार्यवाही विपक्ष रा हंगामा रे कारण रोकी जी। विपक्ष रा दला नीट मुद्दा माथे पडेसरा रा विरोध प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित कार्यवाही समेत कई मुद्दा माथे शोर शराबो करियो। राज्यसभा रा सभापति सीपी राधाकृष्णन विपक्ष रा हंगामा रे बीच शून्यकाल शुरू करियो। विपक्ष रा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या राम मंदिर रो कथित चढ़ावा चोरी रो मुद्दो उठायो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो कि अयोध्या में राम मंदिर री खिलाफत करण वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभय चंदा री कथित चोरी ने लेर नाटक करने जनता ने गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। अपनी तरफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में हंगामारी हालत देखने मिली। सवारा सदन री कार्यवाही शुरू होने माथे अध्यक्ष ओम बिरला प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश करी पर विपक्ष रा सदस्य पडेसरा रा विरोध प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित कार्रवाई रो मुद्दो उठा दियो। विपक्ष रा सदस्य ई मुद्दा माथे गृह मंत्री अमित शाह रा बयान री मांग कर रिया हा। श्री बिरला सगला सदस्यों सदन ने सुचारू चलावण में मदद करने री अर्ज करी।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें। लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में कराधान और दूजा कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश करया। इनमें टैक्स डिजिटल भुगतान और निपटान प्रणाली रा नियमा ने सरल बनावण रो प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय कहो है कि भारत भगोड़ा अपराधियों निपटन सारू खुफिया आधारित प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित करियो है। मंत्रालय बतायो कि साल 2021-2026 रे बीच 36 देशों भगोड़ा अपराधियों ने पाछा लाई जिया है। सरकार साल 2018 भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू करियो है। साल 2014 पहला भारत रो फगत 37 देशों रे साथ प्रत्यर्पण समझौतो हो और आर्थिक भगोड़ाओं निपटन और वारी जायदाद जब्त करण सारू कोई कानून नहीं हो। मंत्रालय बतायो के साल 2004-2013 रे बीच भारत औसतन हर साल फगत 4 भगोड़ा रो प्रत्यर्पण कर सक्यो जबकि 110 प्रत्यर्पण अनुरोध विचारू रिया। लाड़ला 3 साल में इंटरपोल कानियों रेड कॉर्नर नोटिस काढ़न में घनी बदवार भी है और 401 भगोड़ा अपराधियों के खिलाफ नोटिस जारी करी जा है। सरकार भारत पोल री शुरुआत करी है जिनरी मार्फत 1,432 एजेंसियां ने इंटरपोल जोड़ी जा है जिनू जानकारी साझा करण में लागण वालों भगत 3-10 दिन रो वह गयो है। गृह मंत्री अमित शाह भगोड़ा अपराधियों रा मुद्दा ने देश री संप्रभुता आर्थिक स्थिरता कानून बंदोबस्त और राष्ट्रीय हिफाजत रा रूप में जोड़ियो बतायो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो 16 अगस्त ने अलवर आवण रो कार्यक्रम है। आपरा ई दौरा में श्री शाह कोई 250 करोड़ रुपया री लागतों बनन वाला सरस डेयरी प्लांट री नींव धरेला। वे अलवर मेडिकल कॉलेज रा नुआ भवन रो ही उद्घाटन करेला। गृह मंत्री रा प्रस्तावित दौरा ने लेर आज वन मंत्री संजय शर्मा री सदारत में एक समीक्षा मीटिंग भी।

0: मीटिंग में जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान और पुलिस प्रशासन राठावा एहलकारा केंद्रीय गृहमंत्री रा दौरारी तैयारियां ने लेर बतल करी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी कहो है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 19 लाख बत्ती परिवारों रो बिजली बिल शून्य वे गयो है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज वणा कहो कि आ योजना नागरिका ने मजबूत बना रही है, इनो स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य कानी बदन में गति मिल रही है। वणा बतायो कि 25,000 बत्ती केंद्रीय और 81,000 बत्ती राज्य सरकार री इमारतों री छत माथे सोलर सिस्टम लगाई गया है। ऐसा समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर में प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अजय ताई 2,55,00,000 बत्ती लाभार्थियों ने कोई 2,18,000 करोड़ रुपया का कर्ज मंजूर कर लिया है। ये योजना की मार्फत छोटा उद्योगों, रेहड़ी पटरी माथे सामान बेचने वाला दुकानदार, कारीगर और कारोबारियों ने बिना गारंटी संस्थागत रोकड़ मदद मुहैया कराई जावे। कोई 60% हिस्सेदारी रह साथ है। ये योजना में महिलाओं की बढ़ चढ़ने भागीदारी री है। अजे ताई 1,54,00,000 बत्ती महिलाओं ने 67,982 करोड़ बत्ती रा कर्ज मिलिया है। देश भर में इस साल जून महीना ताई योजना के तहत 59 करोड़ बत्ती लोगों ने कर्ज मंजूर कर लिया है। ध्यान जोग है कि आ योजना साल 2015 में शुरू करी जी ही। इनमें लघु उद्यमा ने 20,00,000 रुपया ताई रा कर्ज दिया जावे है। इनु स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता ने बढ़ावा मिलो है। भौगोलिक संकेत जीआई टैग स्थानीय समुदाय सारू माली हालात पैदा करण रा मौका देवता सांस्कृतिक विरासत री रक्षा सारू एक मजबूत जरिया रा रूप में उभरियो है। उत्पादन ने वारा मूल ठोड़ू जोड़ ने जीआई टैग पारंपरिक ज्ञान ने संरक्षित करे है, दुरुपयोग ने रोके है और उपभोक्ताओं रा भरोसा ने बढ़ावे है। राजस्थान में 24 न्यारा न्यारा उत्पादन ने जीआई टैग मिल चुको है। पैसे न्यूज डेस्क को हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजीरी रिपोर्ट।
1: जीआई टैग कारीगरां, बुनकरां, काश्तकारां और उत्पादक समूहां ने चोखो बाजार री पहचान हासिल करण और प्रीमियम बाजारा तक पहुंच बनावण माय मदद करे है। जोधपुरी मोजड़ी, नागौरी अश्वगंधा, कैर सांगरी, बीकानेरी भुजिया, ब्लू पॉटरी, कठपुतली और कोटा डोरिया समेत राजस्थान रा कई उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग मिल चुको है, जो इनरी पहचान ने और मजबूती देवे है। जीआई टैग प्रोडक्ट री पहचान ने कानूनी हिफाजत देवे है और ओई बतावे है किवारी खासियत मूल इलाका से जुड़ी है। सरकार री पहल रोकड़ मदद, निर्यात संवर्धन, पर्यटन एकीकरण और समर्पित विपणन प्लेटफार्मा री मार्फत इनरो आर्थिक सिस्टम मजबूत हो रियो है। आकोशिश जीआई उत्पादा ने ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और निर्यात आधारित विकास रा संचालन रा रूप माए बदल रहा है।
0: जानिया मानिया शिक्षाविद और त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल रा पहली रा राज्यपाल डॉक्टर डी वाई पाटिल आज देवलोक वे गया। वे 90 साल रहा। वणा महाराष्ट्र रा कोल्हापुर में आपरा रहवास माथे आखिरी सांस ली। डॉक्टर पाटिल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं रा पसारा सारू महताऊ योगदान दियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वारा देवलोक होण माथे शोक जतावता आपरा संदेश में लिखियो के श्री पाटिल ने गरीबा रा जीवन ने अच्छो बनावण सारू काम करियो। गृहमंत्री अमित शाह वारे परिवार जनारे प्रति शोक जतायो है। अठीने राज्यपाल हरिभाव बागड़े वारे देवलोक होण माथे शोक जतायो है। अरबे मौसम राज्य रे ऊपर बण्यो कम दबाव रो हल्को, अबे उत्तर अगुणी राजस्थान में परिसंचरण तंत्र में बदल गयो है। इणु आवता कुछ दिन ताई प्रदेश रा न्यारा न्यारा हल्का में मौसम रो न्यारा न्यारा रूप देखण ने मिल सके है। कठई मझलाऊ तेज बिरखारा आसार है और कठई उमस भरी गर्मी लोगारी परेशानी बढ़ा सके है। मौसम महकमा मुजब उत्तर अगुणी राजस्थान और आर्य सारे रा हल्का माए चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। इनरा असरों भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग माए कठई कठई हल्काऊ मझला दर्जारी बिरखा होण रा आसार है। भरतपुर संभाग माए कुछ थोड़ा गरज और तेज हवा रह साथ है भारी बिरखाई दर्ज वह सके है। वठई 6-8 अगस्त रे बीचे अगुणी राजस्थान में नुआ परिसंचरण तंत्र रे सक्रिय होवणु मझलाऊ तेज बिरखारी आस है। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के आथुणी राजस्थान रा बाड़मेर, जैसलमेर

0: आलोतरा और फलोदी माए बिरखरी गतिविधियां माए कमीरा आसार है। इणु उमस भरी गर्मी बनी रह सके है।
1: 6-7 अगस्त को एक नया परिसंचरण तंत्र पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बनने की संभावना है। इससे एक नया बारिश का स्पेल जो है वो 7-8 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में फिर से शुरू होगा। 7 से 10 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान की तरह जयपुर के अलावा अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं भारी और एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल तो परिस्थितियां हैं इसके अनुसार आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में आगामी 3-4 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना।
0: हरियाणो राजस्थान अभियान रे तहत पाली जिलारा भावरी गांवरा खेल मैदान माए सघन पौधरोपण करी जियो। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल माए भांत भांतरा पौधा रोपी जा है और वारा संरक्षण रो संकल्प ली रिजियो। जैसलमेर ने हरो भरो बनावण रा मकसद नाचना गांव पंचायत माए हरियाणो सावण अभियान शुरू हुई हो। इन रे तहत अजे ताई 1,000 पौधा लगाई जा है। न अबे आखिर माए खास समाचार आप एक फिर सुन ले रहो। संसद रा दोनों सदना री कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा सदस्यों रा हंगामा रे कारण कई दफा रोकी जी। गृह मंत्रालय कयो लारला 5 साल माए 36 देशों 274 भगोड़ा अपराधियों ने पाछा लाई जिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे तहत प्रदेश माए अजे ताई 2,55,00,000 छोटा उद्यमियों ने फायदो मिलियो। और उत्तरी अगुणी राजस्थान एर आरएसआर रा हल्का माए चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। आवता 2 दिन भरतपुर बीकानेर और जयपुर संभाग माए हल्काओं मजदा दर्जारी बिरखारा आसार। नईन साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन सवारा 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.5 और FM बैंड 101.5। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली छिकाया, करे जो मेहनत कदे लालच में न आया, बे टूटिया छप्पर में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है यह आपना किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनबाड़ा सगला काश्तकार भाया ने बहना ने चंचलो ने भरियो मीठो मीठो राम राम, और सगला बड़ा बूढ़ा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ताऊ ताई मामा मौसी बहन भुआ भाईली सब ने ढोगर जैसा, और महेश भाई आपने भी घने मानू राम राम सा।
7: राम राम चंचल बहन आपने, और जो अपना काश्तकार भाई लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं।

0: भी घणी मोकली राम राम सा।
1: देखो रामा श्यामा आपा करा हाँ, ढोक देवा हाँ, और आपा जाना हाँ कि अपना जो श्रोता है, अपना जो काश्तकार भाई बहन है, वह बहुत ही मुस्तैदी सु इंतजार करे है अपना कार्यक्रम रो, क्योंकि आपा न सिर्फ खेती बाड़ी की बात करा हाँ, बल्कि खेती बाड़ी से जुड़ोड़ा जो नवाचार है, जो जानकारियां हैं, वहां तक पुगावा हाँ, और कोशिश करा हाँ कि ज्यादा से ज्यादा अपना जो काश्तकार है वह जागरूक हो सके।
0: बिल्कुल, देखो जो एक परंपरागत खेती है, बतो किसान भाई बहुत समस्याओं करता आ रहे हैं, पर नवाचार इसी चीज़ें जिन्हें अपना के देखो एक नए तरीके से खेती करा, एक वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है बिना अपना के और खेती कमाए, कौन कौन सा जगह नया प्रयोग हो रहे हैं, कौन कौन सी जगह खामे ही माने दूर करके अपना किसान भाई आगे बढ़े।
1: खामियां की जब आप बात करो महेश भाई, एक खामी जो नजर आवे बा है खेती कर ली, फसल मिल गई, बी के पाछे कहीं जो फसल का अवशेष बच जावे है वह एक सिरदर्दी बन जावे है। बाड़ा तो भाई जो अपनी वायु है प्रदूषित हो जावे, अठीने बठीने फेंका तो भी कचरो फैले, तो करा काई।
0: भाई देखो किसान भाई जका फसल कटाई के बाद में जका फसल अवशेष बच जाए ही, तो इसे हम देखें कि भी एक तो देखो मजदूरी महंगी होगी समय के साथ और ट्रैक्टर को खर्चो भी ज्यादा, तो फसल अवशेष ने निकालना थोड़ा महंगो लगा है, तो यह सोचा कि भी अब अगली फसल की बुआई करनी है तो लो भी फसल अवशेष ने जला देवा, पर फसल अवशेष जिया आप जड़ावा तो धुओं धप्पड़ हुए और जो जकी गैस ही जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड है जकी जहरीली गैस ही वह वायुमंडल में मिल जाए और वायुमंडल प्रदूषित हुए और जका श्वसन संबंधी रोग ही वह आप देख रहे हैं कि जका शहरा कमाए कतरा ज्यादा बढ़ता जा रही जका संपर्क में आवे जी अपने फसल अवशेष जराने से।
1: जी, अब ई में आपा काई कर सका हाँ कि आपा जो फसल अवशेष है, जो बचोड़ी आपने कचरो जी ने आपा समझा, बीसों भी आमदनी कर सका हाँ। अशा अशा नवाचार हो गया, जी पराली की बात करा, इन्हें आप मशीना के द्वारा एकटो करो हो, दबाओ हो और बिने छोटो कर लियो हो, अभी के बाद में बन जावे एक केक जैसी आकृति। अब वह काम में आवे है आपके मशरूम उत्पादन में एक बेड की तरह। तो हो गया ना कि जो आपा सोच रहा है कि यह तो कोई काम की चीज को नहीं, बेकार है, बीसू भी आपा बेचर आमदनी कमा सका हाँ।
0: बिल्कुल, और फसल अवशेष कमाए जी आप देखा हाँ कि जब फसल अवशेष बच जाए ही तो जकी केंचुआ की खाद है यानी कि वर्मी कंपोस्ट बहुत ही फसल के लिए उपयोगी खाद है, तो फसल अवशेष कमाए जब आपा गोबर के साथ में केंचुआ छोड़ देवा तो जकी वर्मी कंपोस्ट खाद है बिने केंचुआ तैयार कर दी और अतरी चोकी खाद है जकी फसल ने पोषण देवे और किसान भाई के लिए लाभकारी, तो यह भी बन
1: बिल्कुल।
0: सके है।
1: और जी यहाँ आपा बात करा केला की फसल, कई लोग उद्यानिकी में लेवे है, अब केड़ो तो एक बार फसल देवे है, फल दिया बेकार, अब कहीं करा काट और इन्हें फेंक दिया, पर अगर आप इन्हें अइया ही फेंक दो ला तो आप नुकसान उठा जाओ ला, क्योंकि केला का जो तना है ए जैविक खाद, लिक्विड तरल खाद और बहुत सारा ऐसा उत्पाद बना बा के काम में आवे है। केला का तना से निकल वालो जो रेशो है एक मजबूत धागा का रूप में काम में आवे है, केला का पत्ता पैकिंग करवा के काम में आवे है, और कई तरीका के जो भोज्य पदार्थ की टोकरियां बने हैं जो भाप पर रखी जावे बी में भी यो काम में आवे, और औषधीय गुण तो इका है ही है साहब।
0: और देखो एक जकी किसान भाइयों के लिए एक चारे की समस्या है कि गर्मियाँ के माए तो को हरे चारे की समस्या आवे, पर अबार हरे चारे खूब हो जाए, पर पशु ने हरे और सूखो दोनों प्रकार को चारों चाहिए पौष्टिक आहार के रूप में,
1: जी
0: तो अबार क्योंकि देखो ज्वार बाजरे की कड़बी के साथ में आपा जिया की गेहूं को भूसो बच रहे धान की पराली बच रही है, तो बिना बरसीम के साथ में मिला के पशुओं ने खिलावा तो बहुत ही चोखो आहार बने मिल सके।
1: बिल्कुल
0: ज्वार बाजरे की कड़बी और गेहूं को भूसो धान की पराली ने बरसीम के साथ में मिला के खिला सका।
1: बिल्कुल। और अब बाता चीता तो बहुत होगी, अपना पावना भी आवाड़ा है, बांसू भी बाता चीता आपा कर शा, पर जब तक वे आवे है बाकी अगवाई में ही सही एक गीत सुना दियो सा।
0: बिल्कुल सुनाओ सर।

0: वाह महेश भाई, गीत तो बहुत चोखो संजोड़ ले आया। अब जी हाँ, गीत आप ले रहा है भैया, जानकारियां की तरफ भी माने ले चालो साहब।
1: किसान वाणी सुनवाड़ा साहब साथ ने राम राम। किसान माया अपना बीच आज मौजूद है डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा, पूर्व निदेशक छात्र कल्याण श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से आप आए हैं और आपसे आज मैं बातचीत कर सया कृषि उत्पादन का माए ड्रोन की उपयोगिता के बारे में। तो डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। राम राम।
2: राम राम।
1: डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी, कृषि उत्पादन का माए ड्रोन की काई उपयोगिता है, इस विषय पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहली तो माका जगह किसान भाई ही बना यही बताओ कि ड्रोन हो काई है।
2: ड्रोन एक मानव रहित हवाई यान होता है

0: से रिमोट कंट्रोल की सहायता से उड़ाया जाता है। कृषि में उपयोग होने वाले ड्रोन को खास तौर पर खेतों में छिड़काव और निगरानी के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें एक टैंक होता है जिसकी क्षमता 10 से 30 लीटर होती है, बैटरी सिस्टम होता है, जीपीएस और ऑटो पायलट सिस्टम होता है, स्प्रे नोजल होता है तथा कंट्रोल इसमें होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आप कृषि में ड्रोन की उपयोगिता की बात कर रहे हैं, तो खेती के माय जो ड्रोन है बिको कई उपयोग है, किस प्रकार से यो काम आ सके?
0: किसान भाई खास तौर से ड्रोन का उपयोग फसल छिड़काव पर के लिए करते हैं। कृषि ड्रोन का उपयोग उर्वरक छिड़काव, कीटनाशी एवं फफूंदनाशी रसायनों के छिड़काव एवं अन्य अनुमोदित रसायनों के छिड़काव हेतु किया जाता है। इसमें समय की बचत होती है। इसके साथ ही फसल के स्वास्थ्य की जांच, मिट्टी एवं खेतों में लगाई गई फसलों के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए लगातार सर्वेक्षण आवश्यक है। मानव श्रम से इस कार्य में कई दिन लग सकते हैं, फिर भी मानवीय त्रुटि की संभावना रहती है, तो ड्रोन वही काम कुछ ही समय में कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, मौसम संबंधी जानकारी या मृदा को विश्लेषण इका माय जो ड्रोन है वो किस प्रकार से सहायता करे आपने?
0: मौसम का बेहतर पूर्वानुमान लगाने के लिए ड्रोन

0: गई फसलों के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए लगातार सर्वेक्षण आवश्यक है। मानव श्रम से इस कार्य में कई दिन लग सकते हैं, फिर भी मानवीय त्रुटि की संभावना रहती है, तो ड्रोन वही काम कुछ ही समय में कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, मौसम संबंधी जानकारी या मृदा को विश्लेषण इका माए जो ड्रोन है वो की प्रकार से सहायता करे आपने?
0: मौसम का बेहतर पूर्वानुमान लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं। इस जानकारी का उपयोग किसान भाई अपनी फसलों की बेहतर तैयारी के लिए कर सकते हैं। तूफान, बारिश या जलवायु संबंधी अन्य अवस्थाओं में कमी की पूर्व सूचना का उपयोग उस फसल की योजना बनाने के लिए किया जा सकता है जो मौसम के लिए सबसे उपयुक्त होगी।
1: जी, और डॉक्टर साहब, यदि अपना जगह किसान भाई वह खेत का माए कुछ पेड़ पौधा लगाना चाहे या पशुओं को प्रबंधन करना चाहे, तो इका माए जो ड्रोन है वो कहीं उपयोगी साबित हो सके के?
0: हाँ, ड्रोन जो है पेड़ और फसलें लगाने में मदद करते हैं। इससे श्रम तथा ईंधन दोनों की बचत होती है, साथ ही इसमें बजट भी ड्रोन के उपयोग करने पर कम आता है। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। इसके साथ साथ ही ड्रोन का उपयोग सर्वेक्षण के लिए किसान भाई न केवल अपनी फसलों पर नजर रख सकते हैं बल्कि अपने मवेशियों की गतिविधियों पर भी नजर रख सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। क्यों, ड्रोन में थर्मल सेंसर तकनीक लगी होती है, उसके द्वारा वो जानवरों को खोजने में मदद करती है।
1: डॉक्टर साहब, कृषि के माये ड्रोन की बात कर रहे हैं, हाँ, तो इसमें ड्रोन का कई कई लाभ ही कृषि के माये?
0: ड्रोन से खेती बाड़ी में बहुत से लाभ होते हैं। खास तौर से ड्रोन मैनुअल जो है छिड़काव की तुलना में 50 से 60 गुना तेजी से कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव कर सकता है। दूसरा, ड्रोन से तकरीबन 15 से 20 मिनट में ही 1 एकड़ में छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन एक दिन में 30 से 40 एकड़ में कीटनाशक छिड़काव कर सकता है और एक बार में 15 से 20 लीटर कीटनाशक एवं फफूंदनाशक आदि को लेकर उड़ने में सक्षम है। इसी के साथ साथ ड्रोन के उपयोग से 90% तक पानी और 40% तक कीटनाशक एवं फफूंदनाशक की बचत की जा सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, ड्रोन का फायदा तो आप बता रहे हो, किसान भाई ने काफी मदद भी मिला है खेती के काम में, पर किसान भाई सोच रहे हैं कि भी ड्रोन की जो कीमत है वह कतरी हो है लगभग और कतरे पैसा कमाए आ जाए?
0: ड्रोन जो है अलग अलग तरह के बाजार में मिलते हैं। खास तौर से 10 लीटर की क्षमता वाला ड्रोन जो है वो 3 से 4 लाख रुपए में आता है। इसके अलावा 20 लीटर क्षमता वाला ड्रोन 5 से 7 लाख रुपए उसकी कीमत होती है और 30 लीटर वाले बड़े ड्रोन की कीमत 7 से 10 लाख रुपए तक होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, जो का कृषि उपकरण हुए वहाँ पर सरकार सब्सिडी देवे है, किसान भाई ने सहायता देवे है, तो ड्रोन यदि किसान भाई खरीदना चाहे तो कहीं ई पर भी कुछ सरकार सब्सिडी देवे?
0: हाँ, भारत सरकार जो है कृषि ड्रोन को खरीदने पे सब्सिडी देती है। किसानों को 40 से 50% तक सब्सिडी मिलती है। कृषक उत्पाद समूह और कृषि संस्थाओं को भी अधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी सहायता दी जाती है। इससे छोटे किसान भाई ड्रोन की सेवाएं ले सकते हैं।
1: जी, और डॉक्टर साहब, हर किसान भाई कन देखो ड्रोन उपलब्ध कोनी होगा कई बार, पर यदि कोई सक्षम किसान भाई ड्रोन ले आके यदि दूसरे किसान भाई ने उपलब्ध कराना चाहे तो ई प्रकार को जो व्यवसाय है बिना की प्रकार से कर सके?
0: किसान भाई अपनी क्षमता के अनुसार ड्रोन को खरीद कर इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसान भाई कृषि ड्रोन से बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से प्रशिक्षण लेना होगा। इसके साथ ही ड्रोन खरीदना होगा, गांव में अपनी सेवा का प्रचार प्रसार करना होगा और ड्रोन सेवा शुल्क प्रति एकड़ ₹300 से लेकर ₹600 तक ले सकते हैं। इससे सीजन में अच्छी कमाई संभव है। एक ड्रोन से महीने में 1-2 लाख रुपए तक कमाई संभव है। ये सीजन पर निर्भर करती है। अनुमानित है जो ड्रोन होता है वो एक दिन में 20 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव कर सकता है और उसकी कीमत ₹400 प्रति एकड़ होती है छिड़काव की, और साथ ही कुल जो है ₹8,000 प्रतिदिन उससे हम कमा सकते हैं। सीजन में पूरे महीने में ड्रोन जो है 20 दिन काम में लिया जा सकता है, जिससे ₹1,60,000 प्रति माह की इनकम किसान भाई कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जो अपना किसान भाई ड्रोन को उपयोग कर रहे हैं और कृषि कार्य कर रहे हैं खेत का माए, तो कौन कौन सी सावधानियां हैं, कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जो कि ड्रोन के इस्तेमाल में किसान भाइयों ने ध्यान रखनी चाहिए?
0: किसान भाइयों का को ड्रोन का प्रयोग करते समय बहुत सी सावधानियां रखना जरूरी है। खास तौर से जब तेज हवा चल रही हो, बारिश आ रही हो या तूफानी मौसम हो रहा हो, उस समय ड्रोन की उड़ान नहीं करें। बैटरी जो है पूर्व में चार्ज रखें। इसके अलावा सही मात्रा में दवा का घोल बनाएं उसमें, और सुरक्षा उपकरण पहने तथा स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेवें। हमेशा प्रमाणित ड्रोन एवं प्रशिक्षित पायलट का उपयोग करें। खेत का पहले निरीक्षण करें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। साथ ही ड्रोन की नियमित मेंटेनेंस भी करवाते रहें।
1: जी डॉक्टर साहब जो अपना किसान भाई ड्रोन से कीटनाशी रसायन

0: को स्प्रे करें खेत का माए तो स्प्रे करवा को सही समय काई है की टाइम करना चाहिए।
1: किसान भाइयों को ड्रोन से स्प्रे करते समय खास तौर से सुबह के समय 6 से 10 बजे का समय और शाम के समय 4 से 7 बजे तक का समय बहुत ही उपयुक्त रहता है, क्योंकि इस समय में हवा की गति जो है बहुत कम होती है और दवा का प्रभाव जो है बेहतर तरीके से होता है।
0: जी डॉक्टर साहब, आप ड्रोन का बहुत सारा फायदा बताया और ड्रोन जो है किसान भाई को खेती में समय भी बचावे है, बिना कई प्रकार से सहायता भी मिले है और तकनीक जो है धीरे धीरे बदलती जा रही है, किसान भाई भी नवाचार कर रहे हैं, तकनीक के माध्यम से जो है खेती के माय आगे बढ़ता जा रहे हैं, तो ड्रोन का भविष्य ने आप की प्रकार से देखो वो कई संभावना ही।
1: किसान भाइयों, ड्रोन का आगे भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत में जो कृषि है वो तेजी से डिजिटल होती जा रही है। ड्रोन तकनीक आगे चलकर इन क्षेत्रों में भी उपयोगी होगी, जैसे फसल में लगे रोग की पहचान करने के लिए, मिट्टी का विश्लेषण करने के लिए, सटीक पोषण प्रबंधन करने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फार्म ऑटोमेशन के लिए, जलवायु आधारित खेती करने के लिए जो है ड्रोन का उपयोग बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और भविष्य में ड्रोन केवल स्प्रे तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम का हिस्सा बनेगा, अतः ड्रोन का भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल है।
0: जी डॉक्टर साहब, आपा स्प्रे की तो बात करिया, पर ड्रोन का माध्यम से जगह दानेदार उर्वरक हो बाको भी छिड़काव किया जा सके की।
1: हाँ, दानेदार उर्वरकों का भी छिड़काव किया जा सकता है ड्रोन के माध्यम से। कुछ विशेष प्रकार के मॉडल्स आते हैं जिनमें ड्रोन के जिनमें ग्रेनुल स्प्रेडर अटैचमेंट होता है, लेकिन अधिकतर ड्रोन तरल उर्वरक और कीटनाशक के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। तो किसान भाइयों से ये मेरी सलाह है कि वो अपना अगर वो दानेदार उर्वरक छिड़कना चाहते हैं तो विशेष प्रकार का मॉडल ही काम में लेवे उसके छिड़काव के लिए।
0: जी और डॉक्टर साहब, कौन कौन सी इसी फसलें हैं जहाँ का ड्रोन ज्यादा उपयोगी साबित हुए?
1: खास तौर से ड्रोन का उपयोग किसान भाई धान की फसल में, गेहूं में, कपास में, मक्का में, गन्ना में, सोयाबीन में, सब्जियों में कर सकते हैं। विशेष रूप से बड़े खेतों में जहाँ पर फसल की जो क्षेत्रफल ज्यादा होता है और फसल बड़ी होती है, उनके लिए जो है किसान भाई ड्रोन का उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और फायदे के साथ कर सकते हैं।
0: और अब चलता जगह मक्का किसान भाई ने ड्रोन के बारे में यदि और कोई जानकारी या कोई जरूरी बात आप बताना चाहो तो आप बता सको।
1: देखो किसान भाइयों, आजकल जो है मशीनी युग का जमाना है और खास तौर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेष जोर दिया जा रहा है, तो आप लोग जो है ड्रोन के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करें और उसका प्रयोग जो है आवश्यकता अनुसार करते रहें। और आप ड्रोन के माध्यम से अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप ड्रोन खरीद कर अन्य किसान भाइयों को उसको किराए पर दे सकते हैं और उससे अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों, यही जानकारी कृषि उत्पादन का माय ड्रोन की उपयोगिता के बारे में और यह जानकारी आपने दी डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, पूर्व निदेशक छात्र कल्याण श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से आप आया और किसान भाइयों ने अतिरिक्त चौकी और उपयोगी जानकारी दी, इसके वास्ते डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
1: राम राम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गो से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: भाई महेश भाई, बहुत सांतरी जानकारी दिला दिया आप तो, और जो अपना कैलाश चंद शर्मा जी पावना आया भाई, बहुत चौकी जानकारी दिया भी।
0: किसान भाई सुनिया और बहुत आनंद भी लिया जानकारी को।
5: और देखो नवाचारा की आपा बात करी रहा है, और नवाचारी एक जो ड्रोन प्रक्रिया है वाकई काम आवेली और काम आ रही है, बहुत सा काश्तकार काम में ले भी रहा है। और जिका नहीं जान रहा छा भाई, आज कार्यक्रम सुनर जाने गया वेला, तो आप दोनों ही बधाई का और धन्यवाद का पात्र हो। और चूंकि धन्यवाद को रोको नहीं देवा, तो मुझे चौपाल के रीत सुना दिया था ना एक गीत।
0: बिल्कुल सुना सर।

0: हाँ तो चंचल बहन
1: जी
0: देखो, पहली तो हमारे पास सुना काले वो बैल किनारे चले छोटू राम पार्टी की आवाज में लोकगीत,
1: बिल्कुल,
0: और अब आप सुना महारा छेल भंवर का अलगोजा आली जा की आवाज में चोखो सो लोकगीत आप सुनाया, बहुत ही चोखो लगे
1: बिल्कुल। और जब सुनबा सुनावा की बात आवे है तो अब थोड़ी सी आपने मंडी भाव की तरफ भी आपा चाला और सुना दिया काई मंडी को भाव रहे हो आज को।
0: बिल्कुल,
1: तो साहब से पहली बात करा सरसों की। डीक की मंडी में सरसों रो भाव रहे हो 8,140 रुपया प्रति क्विंटल। जयपुर की मंडी में सरसों को भाव 8,500 रुपया। भरतपुर की मंडी में सरसों को भाव 8,000 रुपया। खैरतलरी मंडी में सरसों को भाव रहे हो 8,000 रुपया। और सीकरी डीक की मंडी में सरसों को भाव रहे हो 7,620 रुपया प्रति क्विंटल। बठई बात करा गेहूं की तो श्री डूंगरगढ़ की मंडी में गेहूं को भाव 2,575 रुपया। कपासन की मंडी में गेहूं को भाव 2,600 रुपया। बस्सी की मंडी में गेहूं को भाव 2,600 रुपया। और ओसियन मथनिया की मंडी में गेहूं को भाव रहे हो 2,500 रुपया प्रति क्विंटल। जठेताणी बात है तारामीरा की। डेगाना की मंडी में तारामीरा रो भाव 6,000 रुपया प्रति क्विंटल। मेड़ता की मंडी में तारामीरा रो भाव रहे हो 5,250 रुपया प्रति क्विंटल। सादलपुर की मंडी में ग्वार की अगर बात करें तो भाव रहे हो 5,500 रुपया प्रति क्विंटल। ग्वार को भाव दौसा की मंडी में 5,640 रुपया प्रति क्विंटल को रहे हो साहब।
0: और चलता चलता जयपुर के मौसम को हाल भी बता देवा।
1: बिल्कुल साहब, गजब ही कर रहे हो मौसम।
0: पिछले 24 घंटा का मायन जयपुर को न्यूनतम तापमान रहे हो 27 डिग्री, अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस। अगला 24 घंटा का मायन जयपुर को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा की, और मेछाट हो सका है क्योंकि बरसात को समय। तो यह है मौसम की संभावना।
1: बिल्कुल साहब, और अब संभावना यह है कि घड़ी आंखियां कार्डर कह रही है बहुत होगी बातचीत, आप चालो पिटारी ने समेट लो किसान वाणी सु ले लो आज्ञा और करो राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
3: प्रधानमंत्री किसान।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।

0: रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: किसान भाइयों का किसान वाणी कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 7:30 हुए हैं। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम चौपाल।

0: ચોપાલ કાર્યક્રમ સુનનીય સગલા પરિવારને ગુરુભાઈ કી ઘણી ઘણી રામ રામ, મોકલી મોકલી રામ રામ,
1: અરે
0: આજ તારે શ્રીપાલ ભાઈ રામ રામ સા,
1: રામ રામ ગુરુભાઈ કાર્યક્રમ સુનનીય સગલે પરિવારને આજ શ્રીપાલ કા ભી મોકલા મોકલા રામ રામ સા,
0: આજ તો બિરખા કે સાગે શ્રીપાલ ભાઈ હે.
1: बिल्कुल गुरु भाई, बात थे बिरखा की करी दी तो खेतीबाड़ी की जी आप बात करा. अभी मैं खेता का नूँ आयो तो जी बरसात है, राम जी राजी है, चारा कने फुहार पड़न लाग रही है. सावण को महीनो अभी यहाँ लागे है कि सावण आयो है, सावण सो लागे. तो खेता के माँ जी फसलां देखा और देखा तो आजकल की है इन्हें बिना आप खेतीबाड़ी के माँ देखने लाग रहे हैं कि जेका रासायनिक खादा को जो उर्वरक को उपयोग है गुरु भाई, वो बहुत ही बढ़न लाग रही है. बिल्कुल है, आ थारी शाव साची बात है. साके ज़्यादा खादा को रासायनिक उर्वरक को प्रयोग करांगा तो बिंगो असर कटे न कटे आपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल पड़ेगो. तो आज आप बात करा कि किसान भाइयों थे भी जानकारी दो कि जो रासायनिक खादा को जो प्रयोग है वो कम किया कर सका आप, जैविक खाद के बारे में जानकारी किसान भाइयों ने भाभी थे दो सा.
0: बिल्कुल जानकारी देश है श्रीपाल भाई, पर अपनी बातचीत में यह ना बोला. अब आप पहल पुत तो आपने किसान बयान सुनाओ भजन यार, फिर कर सा बात.
1: हाँ मन ठाओ, भजन सुने बिना तो थे आगे बड़ो ही कोनी.
0: बिल्कुल
1: सुनो सा.

0: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: सुनवायो गुरु भाई भजन,
2: बड़ो बढ़िया भजन सुन
1: कालूराम प्रजापति साथियों की आवाज में
2: बात करा आपा फसला में जैव उर्वरकों की। तो इन उपयोग से सबसे बड़ो तो लाभ क्या है, अपनी माटी नहीं हुआ है।
1: बिल्कुल,
2: क्या माटी जी की है बा बिंगी उपजाऊ की जी की शक्ति है बा बढ़ जाए, सागे बुनटन जी को प्रकृति के रूप पोषण जी को है वो बढ़िया मिलन लाग जाए। और भी प्रकृति जब बिंगो पोषण करे तो श्रीपाल जी अपन जाने यहाँ की पैदावार बदेगी, बदे
1: बिल्कुल पैदावार में बढ़ोतरी होगी।
2: रासायनिक खादांगी जे अपन जरूरत की बात करा तो अपन 20-25% तक कम जरूरत पड़न लाग जाए अगर आप जैव उर्वरकों को उपयोग करा। और सागे की सागे सब बड़ो जी को लाभ हो सी अपन वो उसी के पर्यावरण जी को है वो सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल,
2: अपनो स्वास्थ्य जी को है वो सुधरेगो और खेती की लागत भी घट जाएगी।
1: बिल्कुल गुरु भाई, देखा नहीं के आज के समय के माँ रासायनिक खादा है, यूरिया है, DAP है, तो एक होड़ सी मच रही है। कहला मैं भी हूँ ज्यादा रेड़ू, मैं एक कट्टे भी गए हूँ, मैं दो कट्टा
2: बात धारणा गलत है। तो
1: बिल्कुल हाँ,
2: इनमें क्या है कि प्रकृति के जी कह नहीं, प्रकृति के ना आपका पोषक तत्व है श्रीपाल जी, माटी

0: परमात्मा जी का पोषक तत्व है जिसका अघुलनशील है। जब आप रासायनिक खादान छोड़ के जो जैव उर्वरक का उपयोग करांगा तो जिया फास्फोरस ने ले लियो, फास्फोरस जी को है नहीं, वो अघुलनशील है, अपनी भूमि में मौजूद है।
1: अच्छा,
0: बिन है वो जैव उर्वरक जी को है वो घोल के एर बुनते तई पुगा देवे सागे की सागे जी को हवा के अंदर नाइट्रोजन हुआ है बिन लेके एर बिन भी जमीन में पुगा दे। जब हम यूरिया की अपन जरूरत जी की है वह कम पड़ेगी,
1: हाँ
0: यूरिया की जरूरत कम पड़ेगी तो आपनों खर्चो जी को है वो कम लगेगा।
1: बिल्कुल, नाइट्रोजन की जकी बा यूरिया की पूर्ति है बा वो कर
0: बिल्कुल,
1: दे।
0: और जी का सूक्ष्म जीव है ना अपनी भूमि का माँ बिंग सक्रियता बढ़ा देगो,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि रासायनिक उर्वरक तो के हुआ के बे जी का सूक्ष्म जीव है वह आपकी सक्रियता बढ़ा कौन सके बट तो काम करे रसायनी, लेकिन
1: बिल्कुल
0: जब जैव उर्वरक आप गला तो वह सूक्ष्म जीवांगी जी की सक्रियता है बिन बढ़ा दे, सागे भूमि की जी की संरचना है और भूमि के अंदर पानी रोकने की जी की क्षमता है बा बढ़िया हो जाए, बींग माँ पानी जी को है नमी बनाए रखे आपकी,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और इन फसलान बहुत लाभ मिला है श्रीपाल जी।
1: बिल्कुल
0: बूंटे की जी की जड़ें है बांगो विकास ते जीव होने लग जाएगो,
1: अच्छा
0: जो बूंटो मजबूत हो सी फसलों में बीमारियां कम लगेगी क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, और जे सूखो पड़न लगे माँ आप देखा यहाँ कई के बार यहाँ
1: हाँ,
0: पानी जी
1: पानी की
0: को है
1: दिक्कत आ
0: हाँ
1: जाए।
0: उपलब्धता नहीं हुआ तो सूखे ने भी वो आपकी पानी जी को रोकने की जी की क्षमता है भी शू फसल ने कौन मरण दे,
1: बिल्कुल सीधे शब्द में आप
0: भी
1: बात करा तो
0: परिस्थिति ने भी झेलन की जी की है ताकत जी की है बस जैव उर्वरक दे देवे
1: ज्यादा देवे
0: और
1: प्रभु।
0: उत्पादन में वृद्धि आप बात करी ली, बिंग अलावा गुणवत्ता भी फसल की जी की है सुधर जाए, लागत कम हो सी, प्रदूषण मुक्ति मिल जी सी, और आप जे बात करांगा नहीं कि आज ही ताजी खावा तो ठंडी करके खाने वाली बात हो नहीं बी साहब, लंबे समय के बाद में इनको लाभ जी को है वो आपने बड़ो बढ़िया मिले क्योंकि भूमि की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए और बस सालों साल जी को है बा ताकतवर ही रहे और पूरी आपने उपजाऊ देवे
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: फसल जी की है ना बा आपने उत्पादन बढ़िया देगा क्योंकि भूमि जी की है बा ताकतवर रहेगी,
1: बिल्कुल है थे
0: तो ए
1: बढ़िया
0: लाभ है जैव उर्वरक का।
1: बढ़िया जानकारी किसान भाई अंदीर सागे सागे जो की बात रही थे बताई नहीं कि भाई आपां जैविक खेती करा या जैविक खाद देवा और करा तो इंगो जो को रिजल्ट है वो एकदम ही कोनी आवे, धीरे धीरे जो को है
0: बिने
1: वो
0: हाँ लंबे टाइम चलानो पड़ सी, और
1: हाँ
0: मैं भी कर सका नहीं आप भाई अपनो बैतरो जो मान लो मर बैग है
1: हाँ
0: तो आप
1: हाँ
0: 5 बीघा में शुरू
1: पांच
0: कर
1: पांच बीघा करके जैविक खेती की शुरुआत कर
0: बिल्कुल
1: सका।
0: लाभ 100% हो सी,
1: बिल्कुल बड़े इंतजार को फल के हुए मिठो हुए।
0: अब बातें कर सो कोई गीत ही सुना जो
1: हाँ ना, थारू गीत को इंतजार भी पूरा कर सा, सुनो सा वो गीत।
0: सुनाओ।

0: वाह
1: देखो, बिरखा बरसीर, बिरखा को गीत था ना सुना दिया।
0: वाह साहब, मैं भी आई को कह आज बिरखा के सागे बिरखा को गीत सुना दियो। और अभी बिरखा के सागे कोई कीड़ा कांटा भी आसी फसल
1: हाँ,
0: भी जेड़ी है।
1: बिल्कुल।
0: तो आपनो जी को उबरानी क्षेत्र है जो टिब्बा बेल्ट आप कह दिया
1: बिरानी कह दियो, चाहे नहरी बिरानी, रलेड़ो मेलेड़ो कह दियो,
0: हाँ जटे मूंगफली की भी जानता है।
1: हाँ
0: भट्टे श्रीपाल जी के रह गो अब इस समय के अंदर भी समसामयिक जी को करेगी आप बात करा कि इन समय के अंदर आपने के कुछ ध्यान में रखनो चाहिए और के तरीके से फसल जी को है बस सामनी चाहिए इन पर प्रकाश थे डालो दिखाने।
1: बिल्कुल है। देखो बातड़ी तो थे चौकी पूछी है कि ई समय के माँ अब जी मूंगफली की खेती है, एक तो किया गया पानी की बहुत जरूरत थी या नहरा ही पानी देना है या जका किसान भाई
0: जदि तो कहा राम राजी हो गयो।
1: हाँ इन्हीं राम राजी के।

0: तो आ एक बहुत अच्छी बात होगी कि बरसात होगी, पर बरसात के सगे सगे मूंगफली की खेती के माँ जबकि ध्यान रखने वाली बात है किसान भाइया ने, वह यह है कि एक तो समय के ऊपर मूंगफली की फसल के माँ जो खरपतवार हुआ है जो निंदान का वहाँ आप कचरो है और है, तो वो जो मूंगफली की फसल ने और फसलों की तुलना में ज़्यादा नुकसान पहुँचा हुआ है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि मूंगफली जबकि वह बात नीचे लगे जड़ गए माँ लगे तो जो खरपतवार हुए दूसरों कचरो हुए तो वो जगह बैठे घेर लेगा तो वो मूंगफली फाल कम देवेगी, लाग कम लगेगी, उत्पादन कम होगा। तो इन वास्ते सारा जरूरी जो काम है अब तक मारो वो निनाण है। तो निनाण काटता आजकल की है कि थोड़ा सा दोहरा हुआ है, निनाण दोहरो लगे क्योंकि और काम धंधा जो है नहीं, मैं तो मशीन हो जाए और निनाण जो है कचरो जो है वो हाथों, और मूंगफली की फसल में तो खास करके बहुत जुगती हूँ काटना पड़े कि जी आप नरमे की फसल भी जड़ी हुए तो भी हम सेलर मार लिया ट्रैक्टर आप जी खरपतवार है वह निकाल सका तो ज़्यादा जोर को नहीं हो। मूंगफली की फसल में तो बहुत ध्यान हो हाथों निकालना पड़े कशियों निकालना पड़े तो एक तो वो काम है जो बहुत जरूरी है। जबकि अगेती बिजाई करी है किसान भाइयों की मूंगफली की तो बिंगो आज के दिन या 30-30 दिन हो गया 50-50 दिन हो गया या अप्रैल मई के माँ जबकि मूंगफली की बिजाई करी है अगत जबकि देसी मूंगफली आप जबकि बोला तो बिंगो फैलाव भी खूब हो गया आज के दिन। तो बिंगे माँ खास करके जब आप खरपतवार निकाला कचरो निकाला तो खास करके वो ध्यान रखना चाहिए कि कचरो निकालते समय मूंगफली को जो जगह पांसु हुआ जगह जड़ जकी हुआ है अंदर जिया जावे जब मूंगफली बननी शुरू होगी तो वह पट्टी जैन है कम कम इन चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो आप भी बहुत सावधानी
1: रसायन को प्रयोग भी हो गए
0: रसायन को प्रयोग हुए लेकिन इन वास्ते आजकल के किसान भाई भी समझदार है और दवाइयाँ जकी है भाई सी आ रही है कि पहला मूंगफली की बिजाई करना हो पहला जमीन को जो भूमि उपचार
1: अच्छा भूमि उपचार कर
0: तो सारा हूँ जकी ज़्यादा दिक्कत आवे आजकल खेती के माँ फसल के माँ बात दिक्कत एक नंबर के ऊपर है फंगस की। तो फंगस ट्यूबवेल के पानी में बढ़े रासायनिक आप उपयोग ज़्यादा करा भी फंगस को प्रयोग कई बार आप देखा कि ज़्यादा बढ़ जाए तो फंगस के कंट्रोल खातर नियंत्रण खातर सारा पहला तो भूमि को उपचार हुआ है जहाँ ट्राइकोड्रमा है और है तो इन तरह का जगह अभी जहाँ थे बात बताई किसान भाइयों ने जानकारी दी जैविक खेती की तो बहु भी आप फंगस को है जो परमानेंट उपचार जो है वो कर सका और बिंगे बाद में बीज आप जहाँ बीजा तो बी टाइम ही
1: बीज
0: को भी आप उपचार कर सका बायोस्टिन वगैरह या और बहुत सारे का इन तरह का आजकल ट्रीटमेंट आवे जो बीज को उपचार कर गए और बीज आप बीज दें तो भी फंगस को आप कंट्रोल कर सका। बिंगे बाद में दूसरी समस्या जबकि देखने में आवे कि जब आप मूंगफली की बिजाई करा और वह फसल 15 दिनांगी 20 दिनांगी या 30 दिनांगी हो जाए तो बी समय के माँ ज़्यादातर जड़ गलन को जो आप प्रकोप देखा मूंगफली की फसल के माँ तो बिंगो भी आप रोकथाम कर सका दवाई वगैरह घेर गए और फंगस वास्ते आप जगह फंगीसाइड जकी भी पाउडर है दवाई है बिंगो भी आप उपयोग कर सका। फंगस को अगर अपन प्रकोप दिखे तो आप खेती के माँ देखो मूंगफली के माँ मिट्टी के माँ मिला गए और फंगस की जकी दवाई है
1: बगास का
0: हाँ बिंगो भी आप छिड़काव कर गए
1: कुल मिला के कीड़ा कांटा को ध्यान में रखना यार अब फसल बंटवार का नहीं है
0: बिल्कुल बिल्कुल बात हरी साची है
1: सुना दे कोई गीत
0: लो सुनो सा

0: किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: तो गुरु भाई, सुनवायो गीत है अब है। कई मंडियां का बाजार भाव आपने ताई पूछे गंगानगर मंडी के माँ कणक बिकी 2611 रुपया ले गए 2638 रुपया एर 1482 गेहूं का भाव रहा 2830 रुपया ले गए 2943 रुपया चनो बिक्यो 5601 रुपया 5725 रुपया सरसों का भाव रहा 7691 ले गए 7985 रुपया ग्वार का भाव रहा 54

0: रुपया हूँ ले गए, 5,916 रुपया जो भी क्यों, 2,442 रुपया हूँ ले गए, 2,500 रुपया कुंटल। और मूंगा भाव रहा 6,300 ले गए, 6,565 रुपया कुंटल। सूरतगढ़ मंडी के माँ कणक का भाव रहा 2,571 रुपया हूँ ले गए, 2,585 रुपया। सरसों बिकी 7,501 रुपया हूँ ले गए, 7,520 रुपया कुंटल। और ग्वार बिको 5,752 रुपया कुंटल। इस तरह ही जैसर मंडी के माँ सरसों का भाव रहा 7,686 रुपया हूँ ले गए, और 2,700 रुपया कणक का भाव रहा। और
1: बाजार भाव मेरे को नहीं पुगता है अनूपगढ़ मंडी का।
0: अनूपगढ़ मंडी वाला थे बांस दो
1: सरसों आज अनूपगढ़ मंडी में नीचे में तो रही श्रीपाल जी 7,321 रुपया, ऊपर में बिके 7,781 रुपया। कणक बिकी है 2,535 ले गए 2,600 रुपया तय। ग्वार बिको 5,300 ले गए 5,750 रुपया तय। और जौ का भाव रहे आज 2,450 रुपया।
0: तो अबे चला
1: चलो साहब,
0: राम
1: राम
0: राम
1: राम
0: साहब,
1: साहब,
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।
1: संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जाँच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है, उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिए जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में

विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है, ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था, जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में ये आंकड़ा क्रमशः 72.5% था, जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो। ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध

किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है, ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किराएदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश

निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध एफडीआई वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध एफडीआई प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों एसईजेड से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि एसईजेड की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं

आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8:15 हुए हैं, आइए सुने कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज श्रीपाल शर्मा का। श्रोताओं, आज हम आपको सुना रहे हैं फिल्म पड़ोसन के कुछ गीत। साथियों, आज दिनांक 4 अगस्त 2026। आज के दिन यानी 4 अगस्त 1929 को भारतीय सिनेमा के एक महान मशहूर पार्श्व गायक समुदाय में रहने वाले अभिनेता के रूप में जाने जाने वाले और साथ ही अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माता और एक उम्दा किस्म के कलाकार यानी किशोर कुमार, जिनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, जब भी इस गीत को हम सुनते हैं, एक हास्य भाव जो है वो उभर कर सामने आ जाता है। फिल्म पड़ोसन सन 1968 में बनी हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक थे ज्योति स्वरूप, निर्माता महमूद और एनसी सिप्पी। इस फिल्म के लेखक थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे आरडी बर्मन यानी राहुल देव बर्मन। फिल्म में मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाने वाले, किरदार निभाने वाले कलाकार थे सुनील दत्त, शायरा बानो, किशोर कुमार, महमूद, मुकरी, राजकिशोर और केशटो मुखर्जी। साथियों, पड़ोसन फिल्म एक लोकप्रिय हिंदी हास्य संगीत में फिल्म है। ये फिल्म सन 1952 की बंगाली फिल्म पेशरबारी का रीमेक है, जो अरुण चौधरी की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म का संगीत और हास्य आज भी बेहद लोकप्रिय है। इसमें किशोर कुमार और महमूद की कॉमेडी जोड़ी और कई यादगार गीत दर्शकों के बीच आज भी प्रसिद्ध है।

소도 सिली फीचर फिल्म साउंडट्रैक के बैनर तले बनी फिल्म प्रोडक्शन सारेगामा इंडिया रिकॉर्ड कंपनी के बैनर पर बनी थी। पड़ोसन फिल्म का संगीत हिंदी सिनेमा के सबके अधिक लोकप्रिय और कालजयी संगीत एल्बमों में गिना जाता है। गीत जो अभी आपने सुना था, एक चतुर नार, आज भी बेहद लोकप्रिय माना जाता है। इसके अलावा पड़ोसन फिल्म का गीत कार्यक्रम के आखिर में हम आपको जो सुनवाने जा रहे हैं, मेरे सामने वाली खिड़की में, यह गीत भी बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इस गीत को आवाज़ दी किशोर कुमार ने।

किशोर कुमार एक तरह का था, उन्होंने हर किसी को अपनी मज़ेदार आवाज़ के साथ घुमाया और यहाँ तक कि उसके चारों ओर हर किसी को हमेशा खुश कर दिया। वह संगीत उद्योग के लिए

असली मणि थे। मैंने हमेशा उनके साथ काम करने का आनंद लिया। आज किसी के लिए यह स्थान लेना वास्तव में असंभव है, यह बात आशा ने कही। और इसी के साथ आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम समाप्त करने की श्रीपाल को इजाज़त दीजिए। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। डूरंड कप फुटबॉल के रोमांचक मुकाबले में एसी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को हराया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को भी खेल मंत्री ने सम्मानित किया। पुनीत मनोहर ने अंडर 14 टेनिस मास्टर्स डबल्स का खिताब जीता और अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से अमेरिका के यूजीन में शुरू। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां आज खिलाड़ियों का जो है प्रदर्शन मिला जुला रहा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है मिला जुला भी रहा और कई खिलाड़ियों ने क्वालिफायर्स में तो कई अन्य खिलाड़ियों ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मुकाबला किया है। आज कल भी भारत के कई खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशाल शर्मा। विशाल, लगातार एक के बाद एक बैडमिंटन टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं, ऐसे में कई युवा प्रतिभाओं को अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका भी मिल रहा है। कोरिया मास्टर्स भी एक ऐसा ही मंच है जहां भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग में प्रतिस्पर्धा की। तो विशाल, कैसा रहा आज का दिन खिलाड़ियों का?
1: जी प्रशांत, आपने सही कहा कि युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के लिए कोरिया मास्टर्स का मंच बेहद अहम है। प्रशांत, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का दिन मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में कृष्ण प्रसाद गारगा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी चेलोमपोन चेरोन कितामोन और वोरापोल थोंगसा एनगा को सीधे गेम में हराकर उलटफेर करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। प्रशांत, भारतीय जोड़ी ने अपने से बेहतर रैंकिंग वाली जोड़ी को सिर्फ 42 मिनट में 21-16, 21-18 से हराया और अब कृष्ण प्रसाद और पृथ्वी अगले दौर में जुनसुके कुबो और जिया हाओ होविन वोंग की सिंगापुर की जोड़ी तथा यंग यू किम और तेई योंग शिन की कोरिया की जोड़ी के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से भिड़ेंगे।
0: जी विशाल, ये तो आज का मुकाबला हुआ जिसमें आपने पुरुष डबल्स के बारे में बताया, इसके अलावा और अलग अलग वर्ग में आज कैसा किया खिलाड़ियों ने प्रदर्शन?
1: प्रशांत, पुरुष डबल्स में कृष्ण प्रसाद गारगा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय को मिली जीत आज के दिन की एकमात्र जीत रही। अन्य मुकाबलों की बात करें तो आज भारत को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में अच्युतादित्य राव डोडावारप्पू और अर्जुन रेड्डी पोचाना की भारतीय जोड़ी को कोरिया के सोल ग्यू चोई और मलेशिया के वी शेम गोह की जोड़ी के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में 3-21, 10-21 से हार झेलनी पड़ी। और महिला डबल्स की बात करें तो प्रिया कोजिंग बाम और श्रुति मिश्रा को भी रेरिना हिरामोतो और कोकोना इशिकावा की जापान की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी के खिलाफ 15-21, 13-21 से हार का मुंह देखना पड़ा। और प्रशांत, पुरुष सिंगल्स क्वालिफायर के पहले दौर की बात करूं तो भारत के तुषार सुवीर ने कनाडा के शौर्य गुलाइया को 21-15, 21-12 से हराया, लेकिन अगले दौर में जापान के शोगो ओगावा के खिलाफ 10-21, 17-21

0: हार गए और प्रतियोगिता से बाहर हो गए।
1: विशाल, कृष्णा और पृथ्वी ने तो इस प्रतियोगिता में आगाज कर दिया है और विशाल कल भी कई खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे, किन खिलाड़ियों पर नजरें होंगी विशाल?
0: प्रशांत, तन्वी ने पिछले ही रविवार को ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता था और इस प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व भी कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है सबकी निगाहें एक बार फिर तन्वी शर्मा पर हैं। इसके अलावा अलग अलग वर्ग में खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर पुरुष सिंगल्स की बात करें तो सनीथ दयानंद जापान के युदाई ओकिमोतो से खेलेंगे, वहीं थारून मन्नेपल्ली का मुकाबला कोरिया के यो तेई बिन से होगा। रौनक चौहान भी कल कोर्ट पर खेलते नजर आएंगे, रौनक कोरिया के जियोन योग जिन से खेलेंगे, वहीं अनुभवी किदाम्बी श्रीकांत इसराइल के डेनिल डुबो वेंको से मुकाबला करेंगे और किरण जॉर्ज कोरिया के पार्क सेंग यांग से खेलेंगे। पुरुष सिंगल्स के अन्य मुकाबले में मिथुन मंजुनाथ और चीन के झू स्वान चेन कोर्ट पर आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स की बात की जाए तो प्रशांत कल एक ही मुकाबला होगा जिसमें विश्व तेज गोबुरु और भार्गव राम एरिगेला की भारतीय जोड़ी चीन की अरुणताई और आरुंचिया से खेलती नजर आएगी।
1: विशाल, ये तो हुई पुरुष वर्ग की बात, महिला वर्ग और मिक्स डबल्स में कौन कौन से खिलाड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं कल?
0: जी प्रशांत, कल के मुकाबले में ताइपे ओपन विजेता तन्वी शर्मा पर सबकी निगाहें होंगी। महिला सिंगल्स में कल तन्वी शर्मा का मुकाबला चीन की युआन आन शी से होगा, सभी प्रशंसकों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी होंगी। इसके अलावा महिला वर्ग में ईशा रानी बरुआ का मुकाबला कोरिया की ली सो यूल से होगा और तान्या हेमनाथ जापान की हिना आकेचाई से खेलेंगी। रक्षिता श्री रामराज कोरिया की ए योन यू और मानसी सिंह कोरिया की किम जो युन से खेलती नजर आएंगी। अब मिक्स डबल्स का जहां तक बात है तो ईशान भटनागर और श्रुति शर्मा की जोड़ी सात्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा से खेलेगी, वहीं एक अन्य मुकाबले में ध्रुव रावत और मनीषा की जोड़ी मलेशिया की लू बिंग कुन और नूरा किला मायसरा से मुकाबला करेंगी। जी प्रशांत, फिलहाल तो यही जानकारी।
1: विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत जानकारी के लिए। चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। डुरंड कप जो कि रांची में खेला जा रहा है, रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए डुरंड कप मुकाबले में रोमांचक खेल देखने को मिला। हमारी रांची संवाददाता ने बताया कि जमशेदपुर एफसी ने शुरुआती बढ़त बनाई लेकिन दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।
2: डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में एससी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराकर 3 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने पहले हाफ में बढ़त बनाई। टीम के खिलाड़ी सनन ने गोल कर जमशेदपुर एफसी को 1-0 से आगे कर दिया। हाफ टाइम तक जमशेदपुर एफसी की बढ़त कायम रही। दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने आक्रामक खेल दिखाते हुए शानदार वापसी की। नामते ने लगातार 2 गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की पिछड़ने की स्थिति से 2-1 की बढ़त दिला दी। निर्धारित समय तक एससी दिल्ली की बढ़त बरकरार रही और टीम ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। नामते के 2 गोलों की बदौलत एससी दिल्ली ने डुरंड कप में अहम 3 अंक दर्जित किए। स्पोर्ट्स कैन के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
3: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया के दिए गए आश्वासन पर खुशी व्यक्त की।
4: काफी अच्छा लग रहा है, हमारे एयरपोर्ट पे इतना अच्छा स्वागत किया है और अभी आज हम मनसुख मांडविया सर से भी

0: हैं, आगे के लिए भी उन्होंने पूरा सपोर्ट करने के लिए बोला है। तो जब एक एथलीट ऐसा सुनता है एक सपोर्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, तो हमारा अंदर से ही रहता है कि नहीं, हमें और आगे अच्छा करना।
1: जैस्मिन ने ओलंपिक 2028 को अपना प्रमुख लक्ष्य बताया।
0: मेन टारगेट तो वही है, लेकिन बीच में जितने भी हमें कॉम्पिटिशन मिलेंगे वो भी काफी अच्छे हैं उस प्रिपरेशन के लिए, और बिल्कुल हम सब हर कॉम्पिटिशन में हर चीज को ये उठा के चलते कि हाँ ये पर्टिकुलर है, इसमें अपना बेस्ट देना है, यहाँ से सीखना है, और जो चीज हमने सीखी है वो यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। तो मेन तो हमारा LA 20 है।
1: उधर खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले युवा खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अनाहत सिंह और कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष जूनियर टीम के आर्यवीर दीवान, युशान नफीस और गुरविंद सिंह को सम्मानित किया। 18 वर्ष की अनाहत पिछले सप्ताह कैनेडा में वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ये अनाहत का विश्व चैंपियनशिप में दूसरा पदक है। उन्होंने पिछले वर्ष काहिरा में कांस्य पदक जीता था। डॉक्टर मांडविया ने युवा खिलाड़ियों से बातचीत करके एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 के लिए प्रोत्साहित किया। अनाहत को उनकी इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि उनकी ऐतिहासिक जीत लाखों युवा भारतीयों को स्क्वाश खेलने के लिए प्रेरित करने वाली है। स्वदेश लौटने के बाद अनाहत ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के साथ खेलने से आत्मविश्वास बढ़ता है।
2: दिस टूर्नामेंट हैजंट ऑलवेज बीन द बेस्ट फॉर मी फॉर द लास्ट 4 इयर्स दैट आई प्लेड इट, एंड आई हैव ऑलवेज एंडेड अप बीइंग रियली क्लोज टू इट बट नॉट नो ओवरटर्निंग इट, सो या आई एम रियली ग्लैड दैट आई वाज एबल टू डू इट दिस ईयर। ग्रोन अप प्लेइंग इजिप्शियंस फॉर सिंस आई स्टार्टेड प्लेइंग स्पोर्ट्स, सो इट डजंट रियली अफेक्ट मी सो मच व्हेन आई गो इनटू कोर्ट, इट्स जस्ट लाइक प्लेइंग अनदर ओपोनेंट नो मैटर व्हाट द नेशनलिटी इज, बट या आई मीन डूइंग इट एंड गेटिंग क्लोज टू डूइंग इट आफ्टर जोशना, like you said she's growing up like looking at her playing the tournaments and you know watching her play squash, and I've really been inspired by her, so I think just getting to do it after is something that I'm really happy talking to my coaches about it and seeing you know playing more of the senior events now because I'm not a junior anymore, so I think just going and doing that and getting more experience and traveling around the world and playing the top players. I have 2 events in the PS in the professional circuit before I go for the Asian Games, so I think I'm just focusing on that right now, but of course Asian Games has been in the picture since the last one ended, so just focusing on that and building up to it as well.
1: और श्रोताओं, अभी अभी हमें जानकारी मिली है कोलकाता में डूरंड कप के मैच में मोहन बगान सुपर जायंट्स का मुकाबला साउथ यूनाइटेड एफसी से हो रहा है। नवीनतम समाचार के अनुसार मैच में मोहन बगान ने 4-0 की बढ़त बना ली है।
3: इन अ डूरंड कप ग्रुप स्टेज मैच एट द विवेकानंद जुव भारती क्रीड़ांगण इन कोलकाता टुडे मोहन बगान सुपर जायंट फेस साउथ यूनाइटेड एफसी। मोहन बगान होल्ड्स अ 4-0 लीड विथ मनवीर सिंह स्कोरिंग 2 गोल्स व्हाइल अल्बर्टो रॉड्रिगेज एंड राहुल बेके एडेड 1 गोल ईच। कल्याण लाहा, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। पुनीत मनोहर ने जर्मनी के ड्यूरेन में आयोजित 49वें इंटरनेशनल डाइचे टेनिस मिस्टर शाफ्टन अंडर 14 में डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस इवेंट को टेनिस यूरोप सुपर कैटेगरी के 5 बहुप्रतिष्ठित सुपर कैटेगरी इवेंट्स में से एक माना जाता है।
4: साउथ कोरिया के मिंजी योन चोई के साथ जोड़ी बनाकर पुनीत ने इस बड़े टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल जीता। राउंड ऑफ 32 से आगे बढ़ने के बाद इस जोड़ी ने राउंड ऑफ 16 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड के पुन्नापत निम्नु आंकुल और कोरिया के हिम वोंग को सीधे सेटों में 6-3, 6-1 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने कोलम्बिया के मैथियास लानोस अस्टुडिलो और अर्जेंटीना के मैनुअल पनियागुआ एलेक्सी निसेर की कड़ी चुनौती को पार करते हुए 6-4, 6-2 से जीत हासिल की। इसके बाद इस जोड़ी ने सेमीफाइनल में इटालियन जोड़ी यूलिस बारी और रुगेरो कोंडोरेली के खिलाफ 6-4, 6-2 की शानदार जीत के साथ चैंपियनशिप मैच में अपनी जगह पक्की की। ग्रैंड फिनाले में इस जोड़ी का मुकाबला मैक्सिको के पैट्रिसियो अल्वारे शावेज और ब्राजील के विटोर मार्केस मोरेस से हुआ। पुनीत और मिंजियोन ने आक्रामक शुरुआत की और पहले सेट में 1-0 की बढ़त बनाकर मैच पर शुरुआती पकड़ बना ली थी, तभी उनके प्रतिद्वंदियों को खिताबी मुकाबले से हटना पड़ा। इसी के साथ पुनीत और मिंजियोन की जोड़ी ने खिताब अपने नाम किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और चलते चलते बात एथलेटिक्स पर भी कर लेते हैं। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से अमेरिका के यूजीन में शुरू हो रही है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 36 सदस्यीय दल भेजा है। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 23 पुरुषों और 13 महिलाओं की टीम की घोषणा की है, जो हेवर्ड फील्ड में 5 दिनों तक चलने वाले 18 ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा

0: स्पर्धा करेंगी। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत स्प्रिंट, मध्यम दूरी की स्पर्धाओं, बाधा दौड़, कूद, थ्रो, रेस वॉक और रिले स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्सटेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
1: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है। पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की

0: एक्स्ट्रा कांग्रेस पार्टी की।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
3: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर्ड करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देश भर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा।

AIR पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुने राजस्थानी लोकगीतों लोक भजनों का फरमाइशी कार्यक्रम गौरबंद।

गोरबंद कार्यक्रम सुनिए सगळे परिवाराने आज श्रीपाल रा मोकळा मोकळा राम राम सा ई बात रे सागे के सावण आयो हे सखी पियो बसे परदेश। सावण आयो हे सखी पियो बसे परदेश, काग उड़ाऊं खड़ी खड़ी पैर सुरंगो बेस। के अब तो पिवजी आवजो घणी करूं मनुहार, अब तो पिवजी आवजो घणी करूं मनुहार, पाछो न जावे पिवजी बणू हिवड़ेरो हार।

सुनो सा गीत ऐरे थारा कग दिया थारी मेल जकी है मैं अपने कने पूछन लग रही है लगो लगे ऐरे फरमाइश आपने ताई पूछी है दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ छू हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नोखेलाल वर्मा लिखे के कार्यक्रम में सुन लाग रहा सीमा मिश्रा हो गीत बिल्कुल सिरसला चूरू राजस्थान छू संदीप सिंह सोनग्रा प्राची सोनग्रा सोमल सोनग्रा कार्तिक सोनग्रा एर आंगो पूरो परिवार आ फरमाइश अपने ताई पूछी है पटेरा पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश छू बरजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा सोनल विश्वकर्मा एर आशीष विश्वकर्मा की एर कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ के में सुन लाग रहा चकचौदा PSB छू कुलदीप सिंह राजविंदर कौर संदीप सिंह जसकरण सिंह हरदीप सिंह एर मनराज विरक रामा श्यामा के सागे लिखे के कार्यक्रम माने चोखो लागे आदर्श नगर मलोट पंजाब छू राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मेंडी शर्मा सरोज शर्मा साइना शर्मा निवान शर्मा एर पलारी छत्तीसगढ़ छू नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग टेलर पूना राम देवांगन कृष्णा देवांगन राजस्थानी भाषा माने मीठी लागे चक 78 NP रायसिंह नगर छू सुल्तान राम मलखट सरस्वती देवी हरबंस लाल बनवारी लाल गोपी राम ललित कुमार नरेंद्र कुमार मीनाक्षी एरे मोनिका मलखट रंग सागे गीतांजलि मलखट सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली छू गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप येले एर अशोक येले रामा श्यामा के सागे आपने फरमाइश भेजी है गांधीपुर गुजरात छू सुरेश राठौड़ मंजुला राठौड़ विशाल एनिशा गांव बनवाला हनुमंता फाजिल का पंजाब छू विनोद माइल सीमा लक्षिता यशिका एर माता विद्या देवी एरंग पूरे परिवार का लोग सीमा मिश्रा के गीत की यहाँ फरमाइश लिखी ऐसा एर सरगांव छत्तीसगढ़ छू दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति एर शिवांश वर्मा कोई भी गीत थे माने सुनाई हो रिंगणी छत्तीसगढ़ छू दिनेश वर्मा करुणा वर्मा को आपने ताई ओ फरमाइश पूछी ऐसा एर भोपालगढ़ राजस्थान छू धर्मेंद्र छिपा कपिल छिपा ईशान छिपा एर पूजा परिहार नरगोड़ा छत्तीसगढ़ छू महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी योगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी अदिशा गोस्वामी कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया छू ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय एर AP राय गांव घमंडिया छू जगदीश डूकिया प्रमिला डूकिया ज्योति शिवम डूकिया सरिता सचिन अमना तमना साइना विष्णु डूकिया एर दोहिती इवादारिया लिखा के गौरबंद पेश करने वाला ने मोकली मोकली रामा श्यामा एर आज घमंडिया में कह अच्छी बारिश हुई है माने कोई मानजीरो भजन सुनाइयो बिल्कुल थारी फरमाइश पूरी पूरी बिल्कुल करांगा सा अरे आज थारे में वीडियो जना तो फिर जरूरी ऐसा करनी अली का डब्बा वाली छू रूप सिंह लाखोत्रा करमजीत लाखोत्रा सरबजीत लाखोत्रा रानी सोनू रजनी ग्राम हिंगड़ी आलोट रतलाम मध्य प्रदेश छू जगदीश धाकड़ नायमा ए श्रीमती रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह धाकड़ एर शिवांगी धाकड़ गो वो अपने ताई संदेश पूछो ऐसा मजनू का टीला छू कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा उमंग मलिक आकांक्षा मलिक माही मलिक एर चौकुंटी बुलंदशहर छू मोहम्मद सईद अबासी निगत परवीन अबासी शाहनवाज अबासी सरफराज अबासी एर फरदीन सुहान अरजान एर अबान अबासी गो अमरावती महाराष्ट्र छू परवीन होगोणे योगिता होगोणे कुमारी प्रियाली होगोणे पार्थ होगोणे एर अंगे परिवार का लोग सुनो सा थारे सगलांगी पसंद को ओ भजन।

सुनो सा हनुमान जी को ओ भजन एर मेल भी देखो थारा अपने ताई पहुँचे है एर संदेश जेका व्हाट्सएप वाला वे भी अपने ताई पहुँचे सा गोरबंद कार्यक्रम मने बहुत ही अच्छो लागे गीत थे मने जरूर सुनाइयो डाणी लाल खां सू जावेद खां अरमान खां इमरान खां एर सीमा बानू विनोद खां गाँव फ्रांसी हिसार सू राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी पुष्पेंद्र कुमार डूडी एर आंगा साथी गांव नोला रामपुरा चूँ सुरेंद्र डीडन सकीला डीडन संदीप अनवर अकू बावरा मुमताज डीडन कोई भी गीत कथे मैंने सुनाइयो एर नमस्कार आदाब गसागे ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिर राही में राजा आजाद नगर लक्सर हरिद्वार चूँ अपन संदेश भेजे सा एक रिश्ता रेडियो सोता संग अम्भई सिलोड संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के वैशाली गौड़ अनिल प्राजक्ता घोड़के वैष्णवी घोड़के गायत्री घोड़के अरे यज्ञेश घोड़के गोरबंद कार्यक्रम नमस्ते कोई भी गीत थे माने सुनाइयो बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान संक्रांति चौहान रितेश कुमार राजेश्वरी अरे उत्कर्ष चौहान गो वो संदेश आपने ताई पहुँचो हनुमानगढ़ फाजिलका सू रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा एर मदन लाल वर्मा को संदेश अपने ताई पूछो के धन्य है इन गोरबंदरा युड़ा ने जको अपनी धोरा री धरती री खुशबू मारा लोकगीत एर माटी री साख ने आखा जगत में चमकावे ओ कार्यक्रम नी ओ तो राजस्थानी अणक एर साख रो जीव तो जाग तो मेलो है गाँव खारिया सरसा चो आपूटरी सी बात अपन लेकर भेजी है प्रताप जिनागल इंद्रा मुकेश दिनेश अंशु एर बलदेव।

कटारिया गीत कोई भी सुनाती हो। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सानी, पिंगा वाला चौक, गोराया जलंधर चुमापा ने वो संदेश भेजे सा, कोई भी गीत कहते मैंने सुनाई हो। हितेंद्र दास आसाम से अपन हो संदेश भेजे सा। ए देखो हिराली वाला आ गया, फाजिलका पंजाब से हूँ, सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पारुती, हिमांशु गोदारा, सरवण रेणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल, सुरेंद्र बादो, क्या राम राम शास्त्रीपाल जी, गोरबंद कार्यक्रम में आई बारी सुना, लारलो कार्यक्रम वो भी माने बहुत ही अच्छो लाग्यो। एर आज सावण को कोई गीत बिल्कुल देखो सा शुरुआत ही आप थारी पसंद करिए। जलालाबाद वेस्ट छो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी, एर निमित्त आहू जागो संदेश आपने ताई पहुँचो। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से हूँ, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष, अरे वो संदेश आपने ताई पहुँचो है कि कोई भी राजस्थानी भजन में, शिव जी के भजन में बिल्कुल थे मारो मेल शामिल करियो। उनेल जिला उज्जैन से हूँ, बैरूलाल कावतरिया, धाड़क बोलाराम कावतरिया, प्रवीण कावतरिया, रियांश कावतरिया, एर प्रतीक कावतरिया, वाकतरिया, मापी चावासा वाकतरिया ने कावतरिया बोल दीजिए, क्यों देखो वाकतरिया है। ए आपन उज्जैन से हूँ ओ मेल मांडियो ऐसा। एर गंज डुंडवारा से हूँ, मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेबी हाशमी, मोहम्मद तोसीफ हाशमी, एर मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी, शुक्रिया के सागे मेल मंडियो, बस इतो ही लिखो शुक्रिया। वासा गौरबंद राजस्थानी कार्यक्रम श्रीपाल जी ने राम राम सा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छी बात लिखी है। रामा श्यामा कबूल करो सा, हमारे एरिया में आज बरसात हुई है, मौसम ठंडो हो गयो, ठंडी ठंडी पून चाले, एर गौरबंद को लाइव आनंद लेवा में चक 15 PSU सरवजीत सिंह जोशन, सरवजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल सिंह जोशन, मेलबर्न रोबिन सिंह जोशन, वैंकूवर, अहमदगढ़, मंडी, पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, परवीन, आफिया, आसमा, हिना, शकीला, जस्मीन, रजिता, रजिया सुल्ताना, अख्तर अंसारी। देखो सा संदेश कोई भी भेजो तो पूरो नाम जो कोई नहीं वो सागे सागे, अब एक आधो नाम मार दियो, आधी तीजी गया बीच में छोड़ दी तो पूरो ओ पढ़ने में के सूत कौन बैठे, तो थोड़ो सो बढ़िया अरे कोशिश करे करो के राजस्थानी नहीं तो हिंदी में तो लिखा ही लिखा कमो कम, आपने राजस्थानी भाषा को कार्यक्रम है इंगमा, कोशिश करो कि हिंदी में तो लिखो, राजस्थानी नहीं लिख पाओ तो। राम राम सा आज सुना देना सीमा मिश्रा का घूमर, थैंक यू नेम अनिल गौरव, मानसी कविता अरोड़ा, न्यू दिल्ली मोती नगर से, थोड़ा फूटरो लिखो हिंदी में लिखो, पढ़ने में भी सोरो लागे और बाँचने में भी सुनो लागे सा। नाम शामिल करो सा रामदेव रश्यू, दिनेश चौहान डांगरी सू, बाबू राम जयपाल और खलीफा की बावड़ी सू, खुदा बख्श खलीफा। गौरबंद प्रोग्राम के माने अच्छो लागे, हनुमानगढ़ टाउन से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान, तहसील बादरा नूप सैर सू, गजानन सारसो, डॉक्टर ताराचंद सारसो, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, मुरारी लाल शर्मा, मदन लाल शर्मा, ममता, मीतू, कीनू, महावीर लोहरा, पूसाराम मील, अरे परिवार का लोग के गौरबंद माने अच्छो लागे, कोई भी गीत में थे मरो मेल शामिल करियो। अमरपुरा जालू खाट से जगदीश चंद्र प्रजापति, बिमला प्रजापति, सोनू प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, एर अनिकेत दले, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, एर हनुमानगढ़ नाईवाला तहसील टिब्बी से राणा सिंह कंडियारा, डॉक्टर गौरव कंडियारा, मन्नू कंडियारा, लड्डू कंडियारा, मितो कंडियारा, नलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, एर राजेंद्र चड्ढा। तो सुनो सा थारे सगलों की पसंद पर ओ गीत।

0: जगत सोए गोरी।
1: चंपा मेथी अरसातियारी आवाज़ में वो गीत थे सुनो सा फरमाइश आपने ताई पहुँचिए चक 6 MSR अनूपगढ़ रमेश कुमार पारुल अंशुमन समीर रामदेव पुन राम जी मेरडा को के भजन थे माने कोई जरूर सुना सा पाकुन झारखंड छूँ उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत की सुतासु अर्णव आनंद हर सत्यमानंद सांगली शहर सूँ अल्ताफ उजरे सैफुल्ला इबाहत किरत उजरे एर रेहान शेख भोपाल मध्य प्रदेश सूँ मनीष श्रीवास्तव हर्षिता लाली श्रीवास्तव विमल श्रीवास्तव आशा राधिका एर

श्रीवास्तव परिवार, गांव भागसर सादुल शहर से हूँ। मन्नत राम धींगड़ा, सुमन संजना, सचिन कुमार धींगड़ा, हनुमानगढ़ टाउन से हूँ। सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी, एरांगा साथी, पटेल नगर मलोट पंजाब से हूँ। डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, एर गुड्डू कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से हूँ। गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश, एर ऋषिता, आपन ओ संदेश भेजो ऐसा। एर नलेश्वर नगर नरवेल से हूँ। पी एस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर, एरांगा साथी। उत्तम नगर दिल्ली से हूँ। बोधराज खोरवाल, कमला रानी, एर भानु प्रकाश। ग्वालियर से हूँ। सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्य खुराना, आरव खुराना, मेघा, आशीष, अनुज छोटू, एर एस के पप्पी। कोई भी लोकगीत कथे माने सुनाइयो। बठिंडा रोड डब्बा वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, एतानिया नारंग। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हूँ। पुखराज बड़ गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का, एरांगा साथी। सीमा मिश्रा के गीत की फरमाइश करिए, बिल्कुल पूरी करांगा सा। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन के कार्यक्रम गौरबंद पेश करने वाला ने सहप्रेम नमस्कार। गांव निम्नाबाद जिंद हरियाणा से हूँ। जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, एरांगा साथी। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हूँ। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य राजा, चैतन्य मस्कीन, मेगा मस्कीन, राहुल खुराना, रचिता खुराना, एरकेशु रिदान खुराना। व्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान से हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार सानी, एर मिसेज संतोष सानी, राजश्री, गौरव, शशि। लोकगीत सुना दियो कि सीमा मिश्रा को गाइडो, बिल्कुल सुनाऊंगा सा। श्यामलाल, राजपाल, जयपाल, संदीप कुमार, चिमनलाल, मंडी केसरी सिंहपुर से हूँ। कोई भी गीत थे मैंने बिल्कुल सुना सा। छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी से हूँ। प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, एर सदानंद, विराज स्वीट, अंशुमन बेबी, ओबी। कस्बा गुन्नौर यूपी से हूँ। फारूक अली खान, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, एर ताहिरा को आपने ताई संदेश पहुँचो ऐसा। जिला खरगोन सनाउद मध्य प्रदेश से हूँ। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुष वर्मा, एर रमेश चंद्र वर्मा। भोला कॉलोनी धरौंदा करनाल हरियाणा से हूँ। विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल, एर वाणी जयजान। कोई भी गीत कथे मने बिल्कुल जरूर सुना सा। एर कागदिया एर थारा मेल भी आपने ताई पहुँचे ऐसा। वो मेल आपने ताई पहुँचो है। कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से हूँ। रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरु कीरत राहुल, गुरशबद सिंह राहुल। एर अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हूँ। रिजवाना खान, रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस, एर रेहानगो। वो मेल आपने ताई पूछो। ग्राम पंचायत बठिना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, मुरली शिवम वर्मा। बुंदेलखंड महोबा यूपी से हूँ। नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, एर दर्श राजपूत को मेल आपने ताई पूछो ऐसा। मेल मांडे आपने 16 एमओडी मंडी गोलूवाला से हूँ। हरि सिंह, राजपाल, रामस्वरूप, बलवीर, विजय, जतिन, राहुल, एर अभिजीत। लिखा है कि सीमा मिश्रा को गाइडो कोई गीत थे माने सुनाओ, तो सुनो सा वो गीत।

सुनो सा चौमासे को गीत। ऊन मंडी बीकानेर सू जितेंद्र कुमार रिंटोड़ एर आंगे परिवार का लोग। मेल आपने ताई पहुंचो है। सुरेंद्र संधू, सुनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू एर शिक्षा संधू, प्रीतेश संधू एर मैक्स। कोई भी गीत में थे मारो मेल शामिल करियो। नवास नगर पंजाब से अपन उमेल मंडे। लखवाली हेड से मास्टर भवन लाल, कृष्णा स्वरूप, विशाल, ममता, राजबाला, नव्या, लक्षिता, मोहम्मद रफीक, महावीर, लोरा, संगरिया से मुकनाराम, सावणगी, शुभकामनावा। हाँ लिखी ऐसा लिखे कि गोरबंद मारे हिवड़े को हार है। लाइव सुनन लाग रहे मन बहुत ही अच्छा लगे। चक तेरा SPD तहसील पीली बंगा से संत रामदेव शंकरलाल स्वामी सावण को गीत कथे मन कोई भी सुनाइयो। सब्जी मंडी बुडलाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मज्जू बाबा, आयजा अनम एर मुदस्सिर हुसैन आपन उमेल मंडे सा राम राम सा करबन गौरबंद कार्यक्रम में सुन लाग रहा लाइव मन बहुत ही अच्छो लागे। एर शुरुआत की जिकी लाइन है वह मन बहुत ही अच्छी लगी। गांव गोविंद गंडमांझी वाला श्री कर्णपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुश दिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जिन्नू मन्नू शिव सेट्टी कर्णपुरी, पाल मिस्त्री कर्णपुरी, इस्माइल टुटेजा, पवन गुज्जर एर गाँव 34 STG पीलीवंगा से प्रेमी बिशन लाल मेहरा, अमन समीर ए रितु मेरा, चाल कला पंजाब से अमरजीत बंगा, परमिंदर बंगा, राजा बंगा, कुलिंदर कौर, अंबा चायल। एर ओ मेल आपने ताई पहुँचो है तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विशाल, मानस एर गंगा देवी विश्वकर्मा। गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम, संतोष, शुभम एर यश कुमार मेल मांडे सापन। आकाशवाणी सूरतगढ़ से गौरबंद कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला ने महाराज हिवड़े से घना घना राम राम खमा घनी आप री कार्यक्रम री उड़ीक री कला माने चोखी घनी लागे सा। राजस्थानी भाषा में

आपरो प्रोग्राम सुना तो पूरो घर सगलो परिवार आपरी मीठी बोली राजस्थानी लोक गीता लोक भजना ने सुनने रेडियो रेडियो सामने बैठ जावा और घनी उड़ीक रह सागे गोरबंद कार्यक्रम में सुना कोई भी गीत कथे माने सुनाइयो। मेल मंडन आला है कृष्ण कुमार डाबी भूपत राम डाबी राधा तंवर विक्रम अर्चना एर साक्षी डाबी गांव टूकिया तहसील सिंधरी बालोतरा राजस्थान से आपने वो मेल मंडवैसा। सवण सिंह गांव दोलेवाला जिला मोगा पंजाब से मेल मंडवैसा। गोरबंद कार्यक्रम लाइव सुना मीठी मीठी बातों के दिल ने छूजे। मेल अपन लिखे सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्य मल्होत्रा सुचा सिंह पाठक अनारकली बाजार जगराम से बागपति यूपी से संजय डिंगिया नमन डिंगिया अपार डिंगिया एर पद्मा टोकी नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रकाश शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि शाह स्विन शाह मंगलाबेन शाह राजेंद्र जी शाह। मेल अपने तय पूछो बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम कुसुम नेतानगो हांडीखेड़ा से राधेश्याम शर्मा इंदिरा शर्मा सार्थक शर्मा को मेल अपने तय पूछो ऐसा गांव जाखोद राजस्थान से संबुदयाल खटक विमला देवी अमरजीत खटक सुंदरलाल योगेश कुमार दीपक कुमार कुमारी पूजा खटक एर गांव चौधरी वास से वो मेल आप शामिल कर लियो। गांव खोखराम वाली हरियाणा से खोखराम वाली श्री गंगानगर से वो मेल अपने तय पूछो है लिखे कि श्रीपाल जी ने घना घना राम राम गोरबंद हर मंगलवार ने मैं सुना फूटो लागे लोक गीत भजन हांसड़ियाँ माने चोखा लागे एर सावण को महीनो चाले सा ज़्यादा सुन ज़्यादा सावण का गीत देखो सा चौमास का सावण का गीत आप सुने खोखरा वाली शू विनोद बारा सा विशाल बारा सा विकास बारा सा रोशनी बारा सा सगुन बारा सा को मेल अपने ताई पूछो है सा। सात जड शू ओम ओझा कांता ओझा राज लक्ष्मी ओझा एर शक्ति ओझा। मेल मांडे के कार्यक्रम में सुना चोखो लागे सा ऐसा के गांव दस जड शू बानी राम जी किशन जी दीपू राकेश रूहानी एर विराट संजना ए भी कार्यक्रम सुने। कलरखेड़ा पंजाब से लालचंद संतोष ओझा इया कमलेश रत्नेश भावित आनव दिवाकर के आपरी आवाज़ में बहुत ही मीठा सा मायड़ भाषा की आज की बोली यानी आमाने बहुत ही अच्छी लगे। आपरो प्रोग्राम दिन दूनी रात चौगणी तरक्की करतो रहे कार्यक्रम में लगो लग सुना एरो मेल अपने ताई पूछो गांव फेफाणा से लालचंद ओझा ओम ओझा राजेंद्र ओझा दलीप ओझा प्रदीप ओझा ब्रजमन ओझा एर के में सगला बैठ के कार्यक्रम सुना हुआ सा। गंगानगर से ललिता ओझा इंदू रुचि सुनीता जयदीप सिद्धार्थ एर रियांश लिखे के मारो नाम थे जरूर बोलियो बिल्कुल सा थारू नाम नहीं बोल से तो किरो बोल से हैं। चौटाला से दारा पंडित संजय शर्मा प्रियंका शर्मा पुनित पंचारिया राम कुमार भादु माणकसर से महेंद्र अरे गुड्डू शेखावत के गर्मी बेजा पड़े है आज तो बट्टी कटा दियो देखो मैं आसी बरसात आसी उड़ीक रखो मन साफ रखो अरे बरसात री उड़ीक रखो तो बिल्कुल बरसात आवे लिसा। मैसूर कर्नाटक से देखो कितनी दूर से आप कार्यक्रम सुन लाग रहे हैं ओ वे प्रेम रेडियो के प्रति आपने कार्यक्रम के प्रति सुनने वाला कौन है। मेल अपने मंड है सुमन जोशी मनोज जोशी पलक जोशी नयन जोशी काजल जोशी अरे वैंकुवर बेंगलुरु कर्नाटक से निरंजन ओझा नेहा ओझा चीकू ओझा अर्जुन सर से संदीप ममता संजय ज्योति गजानंद नीतू वंश एर पार्थ अपन मेल मांडे सा। और गंगानगर से पवन कुमार शर्मा भावना शर्मा भास्कर अंजलि ज्योति आरती स्वाति प्रभात मानवी लिखे के कार्यक्रम सुना अरे महाराज नाम डाते जरूर बिल्कुल थारा नाम बांच दिया नहीं देखो अरे भाई गीत भी सुना

देखो सा कग दिया मेल तो थारा घना ही है, पर देखो समय है नहीं, बहुत थोड़ो है। आपने ताई फरमाइश आप रे पूछी है। चंडीगढ़ से हूँ सतीश अनेजा एर बिमला अनेजा, गांव रघुनाथपुरा से हूँ लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित एर खुशी गोस्वामी एर। मारो मेल कहते शामिल कौन करो, बिल्कुल करांगा सा चालता चालता ऐरसा के बातड़ियाँ लिखिए के किरतार थाने राजी खुशी है निरोगा रखे। सावण आयो झूम तो मे बरसे गणगोर, धापू नाचे धोरा पर मन रम गयो चमोर। रिम जिम बरसे अंबर जीणी धार, हरियाली धरती सुए सोनो लागे थार। नीम तले पींग पड़ो मे बरसे गणगोर, ऐर झूले साजन री सकी हरसे मन चहूँ ओर। नई वाला हनुमानगढ़ सू वेद मिड्डा एर अलका मिड्डा एर अबे श्रीपाल ने चालता चालता ई बात रह सके सीख देव सा के चंदा न दिखे चालता अर बदती न भी दिखे बेल। चंदा न दिखे चालता अर बदती न दिखे बेल, के संत न दिखे सिंवरता ए कुदरत का खेल। राम राम सा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गौरबंद। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि की 10 बजने वाले हैं। अब हमारा अगला कार्यक्रम आपनों राजस्थान आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

कुण कहवे माइड भाषा में गीत गोरी अर साजन राई होवे। कुण कहवे गीत तीज अर त्योहार राई होवे। कुण कहवे गीत सिंगार राई होवे। कुण कहवे गीत सावन भादवे राई होवे। आ मायड़ भाषा है, इनमें गीतारी इत्ती लूठी परंपरा है कि इनमें न्यारा न्यारा पंछीड़ा ने भी घने मान संगीता में गाई जिया है। मायड़ री ई मिठास रो करा काई बखान। मायड़री ई मिठास रो करा काई बखान। सगड़ा रिल मिलने सुना आपनो राजस्थान। मायड़ भाषारी स्तुति करता थका आपने बतायो के वो कार्यक्रम है आपनो राजस्थान। और आ प्रस्तुति है आकाशवाणी जोधपुर री। कार्यक्रम लेन हाजिर है कल्याण विश्नोई। आपने निजर करा कार्यक्रम रो पहलो गीत।

श्रोतावा उड़ती कुर्जा रे संग साजन ने संदेश भेजन री रीत मायड़ भाषा में है। तो कागला रे बोलने ने मेहमान रे आवन रो संकेत मान्यो जावे। गोरी कागा ने उड़ावती कहवे, कागा तू जा अर म्हारे साजन ने घर आवन रो बुलावो दे।

सावन रो महीनो झमाझम बरसात एकली गोरड़ी अरे एड़े में मोर यारो बोलनो कालजा में कटार सो कम कोनी एकली गोरड़ी मोरिया ने ओलबो देवे तो मोरियो भी गोरड़ी ने गीत गाओ तो पड़ुतर देवे मायड़ भाषा रे गीता में पंछीड़ा सु संवाद री रीत घणी पुरानी है।

मायड़ भाषा और आम बोली चाली में मोर और पपैयरा नाम एक साथ ही लिया जावे। कबूतरी जो ही पपैयो भी परदेसी री खबरां लावण वालो पक्षी है। तो आओ आपा सुना के मायड़ रे गीता में पपैया ने की कर गाई जे।

श्रोतावां जितनी मिठास मायड़ भाषा री है उत्ती मिठास कोयल री बोली री भी है। अरे मिठास रो नाम ही है आपनो राजस्थान। श्रोतावां आज आपां सुना हां मायड़ भाषा रे गीता में पंछीड़ा रे बखाण रा गीत। कोयल सु इतो हेत है के सासरे जावती बेटी ने भी कोयलड़ी कहवण रो रिवाज है। तो आओ आपा सुना ओ प्यारो सो गीत।

गांव गवाड़, घर आंगन में आखे दिन फुदकती रहन वाली चिड़कली ने हिंदी भाषा में गोरैया कहवे। चिड़कली सु इतरो लगाव है के इनरे बिना आंगनो सुनो लागे। बाग बगीचार खेतारी शोभा बढ़ावन वाली चिड़कली ने भी गीता में गाई जे है।

यूं तो घना ही पंछी है, अरे घना ही गीत है, पण आओ आपा चालता चालता सुना कार्यक्रम रो आखिरी गीत। गीत है सुवटियो। सुवटियो आपरे हरे रंग अर प्यारी बोली दी खातिर आपरी न्यारी पिछाण राखे। अर इन पिछाण रे साथे ही गीता में इनने गोरी रो एक प्यारो साथी मान्यो है। तो आपने निजर करा ओ गीत।

0: श्रोतावां ओहो कार्यक्रम आपनो राजस्थान आकाशवाणी जोधपुर री प्रस्तुति और मैं हूं आपरे सागे कल्याण विश्नोई। तो अबे दिराओ सीख राम राम।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। रात के 11 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे।

0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम

0: 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the Upper House, which aims to amend the Registration of